सुप्रभात। एफएम 102.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है। आज दिन सोमवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ माह के तिथि 15, तदनुसार 6 जुलाई सन 2026। सुबह के 5:59 होने ही वाले हैं। अब आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

0: FM 102.4 MHz पर आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है। सुबह के 6 बजने ही वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। पहले चरण में श्री मोदी आज इंडोनेशिया पहुंचेंगे। ये प्रधानमंत्री की चौथी इंडोनेशिया यात्रा है। मई 2018 में दोनों देशों के संबंधों के व्यापक रणनीतिक भागीदारी तक पहुंचने के बाद से शीर्ष नेतृत्व के बीच पहली द्विपक्षीय वार्ता होगी। प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी की प्रगति की समीक्षा करेंगे। श्री मोदी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक नगर योग्यकार्ता भी जाएंगे। योग्यकार्ता में वे प्रबन्नन मंदिर जाएंगे। भारत और इंडोनेशिया मिलकर इस मंदिर का संरक्षण कार्य पूरा करेंगे। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। इस दौरान मंदिर को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा होगी। ये बैठक पहले दोपहर 3 बजे मणिराम छावनी में होनी थी, लेकिन अब ये राम मंदिर परिसर में ही होगी। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। ये समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर श्री शाह कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इनमें 232 अनाज भंडारण गोदामों का उद्घाटन, सहकार वन का भूमि पूजन, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में टिश्यू कल्चर सुविधाओं का भूमि पूजन, राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस NCD और जियो टैग मोबाइल एप्लीकेशन तथा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के दुग्ध आपूर्ति समीक्षा डैशबोर्ड।

विश्व शर्मा ने बताया कि सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले अनेक विधेयकों को भी स्वीकृति दी गई है। इनमें असम सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम स्थापना और परिचालन सुविधा विधेयक 2026, असम जन विश्वास विधेयक 2026, असम पर्यटन विकास और पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 और असम व्यापार सुगमता संशोधन विधेयक 2026 शामिल है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती आज मनाई जा रही है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से कोलकाता में विशेष कार्यक्रम का आयोजन करेगा। ये कार्यक्रम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के 2 वर्षीय आधिकारिक समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 7 विकेट से पराजित किया। इंग्लैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 150 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने 17 ओवर और 1 गेंद में 3 विकेट के नुकसान पर 153 रन बनाकर मैच जीत लिया। बेथ मुनी को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में नॉर्वे ने बड़ा उलटफेर करते हुए 5 बार की विश्व चैंपियन ब्राजील को 1-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। स्टार स्ट्राइकर एर्लिंग हालंद ने 2 शानदार गोल कर नॉर्वे को मजबूत बढ़ा दिलाई। ब्राजील की तरफ से एकमात्र गोल नेमार जूनियर ने किया। फ्रांस और मोरक्को के बाद क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली नॉर्वे तीसरी टीम है। विंबलडन टेनिस में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने रूस के रोमन सफियुलिन को हराकर पुरुष एकल क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। ऑल इंग्लैंड क्लब में जोकोविच की ये 106वीं एकल जीत है। उन्होंने विंबलडन पुरुष एकल में 105 जीत का रोजर फेडरर का कीर्तिमान भी तोड़ा। इस चैंपियनशिप में केवल मार्टिना नवरातिलोवा ने ही 120 एकल मैच जीते हैं। वहीं महिला एकल में कैरोलिना मुचोवा ने पूर्व चैंपियन बारबोरा क्रेस्चिकोवा को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

खेती की बातें कार्यक्रम सुनने वाले सभी ग्रामीण श्रोता मित्रों को प्रवीण सेठी का जोहार। श्रोता मित्रों, आज हम कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं खरीफ के मौसम में पशु चारा की बुआई के संबंध में। जी हां, खरीफ मौसम यानी जुलाई से अक्टूबर के महीने को हम खरीफ के मौसम की श्रेणी में लाते हैं। इस मौसम में पशुओं के लिए ज्वार, बाजरा, मक्का और लोबिया जैसे पौष्टिक हरे चारे की बुआई की जाती है। बुआई मानसून की पहली बारिश के बाद शुरू हो जाती है। अच्छी गुणवत्ता और दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए दलहनी लोबिया और गैर दलहनी की अगर हम बात करें श्रोता मित्रों, तो मक्का या ज्वार चारे को मिलाकर बोना सबसे अच्छा माना जाता है। श्रोता मित्रों, पशुओं के लिए प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से भरपूर चारा सुनिश्चित करने के लिए कुछ फसलें इस प्रकार उगाई जाती है। जैसे अगर हम मक्का की बात करें तो यह बहुत तेजी से बढ़ता है और सुपाच्य होता है, पशु इसे बहुत चाव से खाते हैं। अगर हम किस्मों की बात करें तो श्रोता मित्रों, अफ्रीकन टॉल इसकी प्रमुख चारा किस्म है। ज्वार की बात करें श्रोता मित्रों, तो इसे चारे का राजा भी माना जाता है। इसकी बहु कटाई वाली किस्में जैसे CSV 33 MF या पूसा चरी काफी लोकप्रिय है। बाजरा कम पानी और शुष्क क्षेत्रों में भी अच्छी उपज देता है। कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होने के कारण या साइलेज के लिए बेहतरीन माना जाता है। तो श्रोता मित्रों, कहने का मतलब है कि खरीफ की प्रमुख चारा फसलें मक्का, ज्वार, बाजरा और लोबिया भी है। यह एक दलहनी फसल है। इसे मक्का या ज्वार के साथ मिलाकर बोने से चारे की पौष्टिकता बढ़ जाती है, यानी प्रोटीन की मात्रा काफी अधिक हो जाती है। श्रोता मित्रों, अगर हम बुआई के समय

की बात करें तो खरीफ चारे की बुआई मध्य जून से मध्य जुलाई यानी मॉनसून आने के बाद की जाती है। बीज दर की अगर हम बात करें तो सर्वप्रथम हम मक्का और ज्वार की बात करते हैं। मक्का और ज्वार में 35 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर का अनुपात होना चाहिए। बाजरा में 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का अनुपात होना चाहिए। और लोबिया की अगर हम बात करें श्रोता मित्रों, अगर आप लोबिया अकेले बो रहे हैं, ध्यान देंगे लोबिया को किसी अन्य फसल के साथ नहीं, यानी अकेले आप उपजाएंगे, तो अकेले बोने पर अनुपात बीज दर का 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होना चाहिए। बुआई कतारों में 25 से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और आप छिटकवा यानी छिड़क कर विधि से भी आप बुआई कर सकते हैं। श्रोता मित्रों, खेत की तैयारी की अगर हम बात करें तो खेत की एक से दो बार जुताई करके पाटा लगाकर मिट्टी को समतल और भुरभुरा आप बना ले। बुआई के समय खेत में 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर की दर से सड़ी हुई गोबर की खाद अच्छी तरह मिला दे। अच्छी बढ़वार के लिए मिट्टी परीक्षण के आधार पर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश का उपयोग करें। आमतौर पर 80 किलो नाइट्रोजन और 40 किलो फास्फोरस प्रति हेक्टेयर दिया जाता है। खरीफ की फसलें मुख्य रूप से बारिश पर निर्भर होती है, लेकिन बारिश नहीं होने की स्थिति में आवश्यकता अनुसार सिंचाई कर ले। ज्वार, बाजरा और मक्का की कटाई फूल आने से लेकर दूधिया अवस्था यानी लगभग 50 से 65 दिन के बीच करनी चाहिए। बहुत छोटी अवस्था में ज्वार नहीं खिलानी चाहिए, इसमें हानिकारक तत्व HCN हो सकते हैं। यदि आप अपने दुधारू पशुओं के लिए साल भर हरा चारा उपलब्ध कराने की योजना बना रहे हैं तो इसके लिए साइलेज बनाना सबसे अच्छा विकल्प होता है। तो श्रोता मित्रों, अभी आप सुन रहे थे खरीफ के मौसम में पशु चारा की बुआई इस संबंध में। हम फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में ढेर सारी जानकारियों के साथ। तो मुझे यानी प्रवीण को दीजिए अनुमति। जोहार।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें। FM 102.4 MHz पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से, और अब सुनिए आज का चिंतन। निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करने से जो आत्मसंतुष्टि मिलती है, वो व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास करती है। स्पष्ट है कि जो लोग भेदभाव की नीति बरतते हैं, उनके हृदय की कलुषता नहीं मिट पाती और पूर्ण आध्यात्मिक उन्नति से वे वंचित रह जाते हैं। इसलिए कहा गया है कि सच्चे हृदय से की जाने वाली क्षण भर की समाज सेवा का महत्व किसी व्यक्ति द्वारा महीने तक की गई समाज सेवा से कम नहीं है, क्योंकि जिससे जितना संभव हो सका उतना उसने काम किया। ये था चिंतन।

आज के वंदना कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं देश वंदना से।

आप सुन रहे थे भजन, कलाकार थे अनूप जलोटा। इसी के साथ भक्ति गीतों का ये कार्यक्रम वंदना यही संपन्न होता है। FM 102.4 MHz पर आप हैं आकाशवाणी की जमशेदपुर केंद्र के संग और अब प्रस्तुत है रामचरितमानस।

परशुराम और लक्ष्मण के वाक युद्ध से स्थिति बिगड़ती देख श्री राम ने ऋषि की क्रोधाग्नि को शांत करने के लिए क्षमा याचना की। बालक यदि चपरता भी करते हैं तो गुरुजन तथा माता पिता के हृदय में आनंद उत्पन्न होता है, अतः समदर्शी सुशील धैर्यवान तथा ज्ञानी मुनि होने के नाते उन्हें इस अबोध दुधमुहे बच्चे को क्षमा कर देना चाहिए। किंतु तभी लक्ष्मण ने मुनि को एक बार फिर छेड़ा। खड़े खड़े मुनिवर के चरण दुग गए होंगे, सो उन्हें क्रोध त्याग कर बैठ जाना चाहिए। यदि टूटा हुआ धनुष उन्हें इतना ही प्रिय हो तो किसी गुणी को बुलवाकर उसे जुड़वा देने का उपाय करना चाहिए। स्थिति गंभीर होते देख राजा जनक समेत उपस्थित जन आतंकित और भयभीत हो गए। श्री राम के शीतल वचन सुनकर परशुराम जी ने कहा, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूं, किंतु ये मन का मैला और शरीर से वैसा ही सुंदर है जैसे विष से भरा सोने का कलश। श्री राम ने एक बार फिर उनका क्रोध शांत करने के उद्देश्य से उन्हें सच्चाई से अवगत कराया कि वो नाहक ही उस बालक पर क्रोध कर रहे हैं, वास्तविक दोषी तो स्वयं राम है, और जिस प्रकार भी मुनि का क्रोध समाप्त हो वो सभी उपाय करने को तत्पर हैं। किंतु मुनि का क्रोध दूर भी हो तो कैसे, लक्ष्मण तो अब भी उन्हें टेढ़ी दृष्टि से ही ताक

आप सुन रहे थे रामचरितमानस। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 MHz पर।

सुबह के 7 बजने ही वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। पहले चरण में श्री मोदी आज इंडोनेशिया पहुंचेंगे। ये प्रधानमंत्री की चौथी इंडोनेशिया यात्रा है। मई 2018 में दोनों देशों के संबंधों के व्यापक रणनीतिक भागीदारी तक पहुंचने के बाद से शीर्ष नेतृत्व के बीच ये पहली द्विपक्षीय वार्ता होगी। प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी की प्रगति की समीक्षा करेंगे। श्री मोदी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक नगर योग्यकार्ता भी जाएंगे। योग्यकार्ता में वे प्रम्बनन मंदिर जाएंगे। भारत और इंडोनेशिया मिलकर इस मंदिर का संरक्षण कार्य पूरा करेंगे। जकार्ता में प्रधानमंत्री भारतवंशियों को भी संबोधित करेंगे। भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन ने 6 से 8 जुलाई तक इस सत्र का आयोजन किया है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि सत्र में सदस्य देश, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, शिक्षाविद और अन्य हितधारक उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। इस दौरान मंदिर को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा होगी। ये बैठक पहले दोपहर 3 बजे मणिराम छावनी में होनी थी, लेकिन अब ये राम मंदिर परिसर में ही होगी। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। ये समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर श्री शाह कई

0: से शुरू हो रहा है। इससे पहले कल गुवाहाटी में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में आपात सेवाओं में मजबूती लाने, औद्योगिक विकास को बढ़ाने और शासन में सुधार के लिए कई नीतिगत फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने बताया कि सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले अनेक विधेयकों को भी स्वीकृति दी गई है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती आज मनाई जा रही है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से कोलकाता में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन करेगा। ये कार्यक्रम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के 2 वर्षीय आधिकारिक समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में नॉर्वे ने बड़ा उलटफेर करते हुए 5 बार की विश्व चैंपियन ब्राजील को 1-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। स्टार स्ट्राइकर एर्लिंग हालैंड ने 2 शानदार गोल कर नॉर्वे को मजबूत बढ़त दिलाई। ब्राजील की तरफ से एकमात्र गोल नेमार जूनियर ने किया। ब्राजील की हार के बाद नेमार जूनियर ने संन्यास की घोषणा कर दी। फ्रांस और मोरक्को के बाद क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली नॉर्वे अब तीसरी टीम है। ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 7 विकेट से पराजित किया। इंग्लैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 150 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने 17 ओवर और 1 गेंद में 3 विकेट के नुकसान पर 153 रन बनाकर मैच जीत लिया। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हिंदी में समाचार अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है।

हम आपको बता दें श्रोताओं, सुबह 7:10 पर कार्यक्रम जरा सुनिए में आज आप सुनेंगे एआई और हमारा जीवन। इस विषय पर एक जानकारी देंगी सॉफ्टवेयर इंजीनियर नेहा भारद्वाज। 7:20 पर लोक गीतों के कार्यक्रम में आनंद लेंगे मैथिली लोक गीतों का कलाकार होंगी शारदा सिन्हा। सात बजकर 7:35 पर बांग्ला गीतों के कार्यक्रम सुरांजलि में सुनेंगे आधुनिक गान, कलाकार होंगे राघव चट्टोपाध्याय। 7:50 पर कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में सुनेंगे डॉक्टर बीर भजन सिंह से राजेश कुमार की बातचीत, मुंह में दुर्गंध कारण और निदान इस विषय पर। सुबह 8:45 और 10:20 का समय होगा फिल्म संगीत के कार्यक्रम का।

9:05 पर होगा कार्यक्रम सुरंजना। 9:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आनंद लेंगे ख्याल गायन का। राग होगा श्रीमत भैरवी, कलाकार होंगे पंडित जितेंद्र अभिषेकी। दिन की 11:05 पर सुनना ना भूलें कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर।

दोपहर 12:05 पर होगा कार्यक्रम भावगीत या शीर्षक गीत। 12:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आनंद लेंगे ख्याल गायन का। कलाकार होंगे पंडित राजन मिश्र और पंडित साजन मिश्र। राग होगा मुल्तानी।

दिन के 1:20 और 2:30 का समय होगा फिल्म संगीत के कार्यक्रम का। दिन के 3 बजे सुनना ना भूले NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। 3:30 पर उपशास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आनंद लेंगे दादरा और टप्पा का कलाकार होंगी विदुषी सिद्धेश्वरी देवी।

0: FM 102.4 MHz पर आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है और प्रस्तुत है कार्यक्रम जरा सुनिए।
1: जरा सुनिए,
2: जरा सुनिए,
1: जरा सुनिए।
2: समस्या है तो समाधान भी, जहाँ चाह वहाँ राह, बात बन जाएगी।
1: जरा सुनिए,
2: सुप्रभात श्रोताओं, कार्यक्रम जरा सुनिए की आज के सफर में मैं अंजला, नमस्कार और आप सभी का बहुत स्वागत। श्रोताओं, 21वीं सदी की शुरुआत सूचना प्रौद्योगिकी में तेज बढ़ोतरी से हुई। कंप्यूटिंग की क्षमता में लगातार बढ़ोतरी और ज्यादा सुनिश्चित करेगी कि नई और बेहतर तकनीक हमारी जिंदगी में पिछले दशकों के मुकाबले इस वक्त और ज्यादा तेजी से उभरेगी या फिर हमें निराश करेगी। AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बौद्धिक क्षमता, श्रोताओं इसका शोर इन दिनों हर तरफ है। कंप्यूटर जगत में ये अपने पांव तेजी से पसारता दिख रहा है। आज हर किसी के जिह्वा पर इसकी चर्चा है। क्या है ये AI? इसकी बढ़ती रफ्तार क्या बदलाव ला सकती है एक आम आदमी के जीवन में? इसी विषय पर हमारा आज का कार्यक्रम केंद्रित है। श्रोताओं, इस विषय पर जानकारी हासिल करने के लिए हमने आमंत्रित किया है एक खास मेहमान को। इनसे बातचीत कर रहे हैं हमारे सहयोगी विवेक आदित्य।
3: धन्यवाद अंजला जी। अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले स्वागत करते हैं हमारे आज के मेहमान का। नमस्कार, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले आप हमारे श्रोताओं को अपना परिचय दीजिए।
4: नमस्कार, मेरा नाम नेहा भारद्वाज है। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं और मैं AI के प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूं।
3: और नेहा जी, जैसा कि आपने बताया कि आप AI के प्रोजेक्ट पे काम भी कर रही हैं, आज के हमारे कार्यक्रम का यही विषय भी है। तो सबसे पहले हम हमारे श्रोताओं के लिए यह जानना चाहेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में AI भी कहा जाता है, यह क्या होता है?
4: AI का मतलब होता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही जो आजकल की नई चीजों के बारे में जानना, नई चीजों के बारे में समझना। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही एक ऐसा टेक्निक है जिससे कि कंप्यूटर या मशीन जो है वो इंसान की तरह सोचना, समझना और डिसीजन लेने लगता है। जैसे हम एक्सपीरियंस से सीखते हैं, वैसे ही जो AI है वो डेटा से सीखता है। तो जो काम पहले सिर्फ इंसान करता था, अब कुछ काम AI भी कर सकता है।
3: हाँ जी, बिल्कुल सही बात है ये कि आजकल कुछ काम AI के द्वारा भी संपन्न किए जा रहे हैं। तो अगर AI के फायदों की बात की जाए तो आम जिंदगी में AI का प्रयोग कहाँ कहाँ हो रहा है या हो सकता है?
4: देखिए, आम जिंदगी में कहीं ना कहीं AI हर कोई यूज कर रहा है, भले आपको पता हो या ना हो, आप भी किसी न किसी प्रकार से AI को यूज कर ही रहे हो। जैसे कि आप अपने फोन को ही देख लो, जितने भी लोग हैं, हर कोई फोन चलाता है और सबके फोन में AI का यूज होता है। जैसे कि आप गूगल मैप का यूज करते हो, आप शॉपिंग वेबसाइट्स पे ऑप्शंस आते हैं आपके रिकमेंडेड फॉर यू, तो आपका पसंद नापसंद ये सब AI डिसाइड करता है। क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा था, AI डेटा बेस्ड होता है, डेटा के हिसाब से चलता है। तो वैसे उसके पास आपका डेटा है, वो आपकी पसंद नापसंद सबका ख्याल रखता है और AI ही डिसाइड करता है कि चैटबॉट्स हो गए, वॉइस असिस्टेंट्स हो गए। वॉइस असिस्टेंट्स भी आजकल बहुत सारे लोग यूज करते हैं, जैसे एलेक्सा, सीरी। तो इन सारी चीजों में AI का ही यूज होता है। तो आप तरह तरह के वीडियोस भी देख लो, बच्चे हैं यूट्यूब देखते हैं, आप नेटफ्लिक्स देखते हो, तो इन सारी चीजों में जो आपके हिसाब से होगी चीजें वो आपको सजेस्ट किया जाएगा, वो सारी चीजें AI के द्वारा ही होता है। सोशल मीडिया पे आजकल हर कोई एक्टिव होता है, तो आप सोशल मीडिया के जैसे इंस्टाग्राम जैसे एप्लीकेशन यूज करते हो, फेसबुक यूज करते हो, तो उसपे भी अब आपको ऑप्शंस अलग अलग दिखेंगे कि ये क्या, ये वीडियो में आप इंटरेस्टेड हो या आपको ये वीडियो इंटरेस्टेड नहीं लगा, तो आप वो ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। तो AI के थ्रू आपको उसी टाइप के वीडियोज दिखाएंगे वो एप्लीकेशन।
3: बिल्कुल सही बात है कि जैसा हम देखना चाहें AI के जरिए हम उस चीजों को हम केवल देख सकते हैं। और नेहा जी, आज

0: कल बातें हो रही हैं, जैसे कि एआई एक क्रांति के रूप में हमारे समक्ष उपलब्ध है, तो एक बात इससे एक नुकसान के रूप में इसको देखा जा रहा है कि एआई के आने से आम लोगों की नौकरियां या जॉब खतरे में है, तो ये बात कितनी हद तक सही है?
1: देखिए, एआई चर्चे में है कि मैंने भी सुना बहुत जगह कि एआई के आने से लोगों के जॉब खतरे में पड़ जाएंगे, पर ऐसा नहीं है। एआई बहुत इजी बना सकता है आपके कामों को। एआई कुछ ऐसे ऑटोमेशंस कर सकता है जो कि रिपीटेटिव कामों को खत्म कर देगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों के जॉब चले जाएंगे। हाँ, बहुत सारे ऐसे काम जैसे कि आप पहले कॉल सेंटर पे कॉल कर रहे हो तो उसमें एक असिस्टेंट आता है, आपसे बात करता है, वो उसका जॉब है, वो कर रहा है, लेकिन अब एआई के आने के बाद वो काम एआई असिस्टेंट करने लगा। तो अब उस टाइप के जो जॉब्स हैं वो खतरे में हो सकते हैं, लेकिन उनके अलावा जैसे नए टेक्निक्स आए तो हमारे पास नए अपॉर्चुनिटीज भी आते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे नए जॉब अपॉर्चुनिटी भी आए हैं। आप ML, मशीन लर्निंग जैसी चीजें, रोबोटिक्स जैसी चीजें सीख सकते हो और उसमें अपना करियर बना सकते हो। तो हमेशा जो नई टेक्निक्स होते हैं उसको सीखना और उसको आगे बढ़ने में कोई बुराई नहीं है। तो ये अच्छी चीज है कि आप नए टेक्निक्स को सीख रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। पुरानी चीजों को कभी ना कभी छोड़ना होता है हमें और आगे की तरफ देखना होता है।
0: नेहा जी, आपने बिल्कुल सही बात कही है कि अगर हम अपने स्किल को इन्हेंस कर सकें तो एआई से हमें डरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसका फ़ायदा हम अपने लिए भी कर सकेंगे। अगर हम बातें करें कि एआई के जरिए या एआई के फील्ड में कोई इंसान कैरियर बनाना चाहे तो किस तरह की तैयारी उसे करनी चाहिए ताकि वो भी एआई एक्सपर्ट हो सके?
1: बिल्कुल, जैसा मैंने बोला, एआई में करियर बनाना बहुत इम्पोर्टेंट हो गया आज के ज़माने में, जैसे कि ये ट्रेंडी में चल रहा है। तो आप आजकल के ज़माने में क्या, एआई सीखना पहले से बहुत आसान हो गया है। जो छोटे शहर के लोग हैं जिनके पास सुविधाएं नहीं है, तो वो लोग भी ChatGPT जैसे एप्लीकेशन का यूज़ करके सीख सकते हैं। ChatGPT एक ऐसा ऐप है जो आपको बहुत सारी चीज़ों को आपके तरीके से समझाने की कोशिश करता है। अगर आपको ज़रूरत हुआ तो वो एनिमेशन के थ्रू भी आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई करता है। और उसके अलावा और भी बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेस अवेलेबल हैं। आप यूट्यूब, कोर्सेरा, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के बिगनर कोर्सेस हैं, वहाँ से भी कर सकते हो। मैथ्स कोडिंग और लॉजिकल थिंकिंग भी हेल्पफुल होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जहाँ से आप सीख सकते हो एआई के बारे में।
0: यानी कि एआई के फील्ड में करियर बनाने के लिए हमारे सामने कई ऑप्शन खुले हुए हैं, बस हमें उसका सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। नेहा जी, अगर बातें करें कि एआई से क्या क्या लाभ हो सकता है, क्या क्या बेनिफिट्स आम इंसान को हो सकता है, तो उसके बारे में भी आप हमारे श्रोताओं को बताएं।
1: मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि एआई से डरने की जरूरत नहीं है, एआई समझने की जरूरत है। आप जितना समझेंगे उतना बेहतर यूज कर पाएंगे। टेक्नोलॉजी हमेशा इंसान के कंट्रोल में होनी चाहिए। तो एआई के बेसिक्स को समझिए। नए नए टूल्स हैं, बहुत सारे नए टूल्स आए हैं, वो हमें एक्सप्लोर करना चाहिए और हमें नए जमाने, नए टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा तैयार होना चाहिए।
0: ये बातें तो हो गई एआई से होने वाले फायदों की। एआई से क्या किसी को कोई नुकसान भी हो सकता है? अगर किसी को कोई नुकसान हो सकता है तो क्या उसे सावधानियां रखनी चाहिए?
1: जैसा मैंने बोला था कि एआई के बहुत सारे नुकसान भी हैं। जैसे आजकल लोग क्या करते हैं, डीप फेक वीडियोस बना लेते हैं, किसी के भी चेहरे को लेके कहीं भी लगाना और कहीं भी यूज करना। तो इसके बारे में हमने पहले भी बात की कि हमें जो हमारी डेटा होती है उसके प्राइवेसी को लेकर के थोड़ा है कि हम जब भी कुछ एआई पे डालते हैं हमें, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी का आना युवाओं में बहुत इंटरेस्ट पैदा करता है, तो उन्हें नई नई चीज़ों को सीखना और नए नए चीज़ों को बनाना बहुत अच्छा लगता है। तो वो हर तरह की चीज़ों को ट्राई करते हैं। तो उसमें कई बार हम जैसे डीप फेक जैसे वीडियोज़ का भी इस्तेमाल करने लगते हैं। तो इन चीज़ों से हमें थोड़ा बचना चाहिए, हमें एआई को अच्छी वे में यूज़ करना चाहिए। और एआई पे हम जब भी जो डेटा प्राइवेसी की चीज़ होती है, जब हम एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, तो उस टाइम मेक श्योर कि हम अपनी कोई पर्सनल डेटा उस पर नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी बताया था कि एआई आपके डेटा को स्टोर करके रखता है ताकि वो आपके पसंद और नापसंद का ख्याल रख सके। तो इस तरह की जो चीजें हैं उसका थोड़ा ध्यान रखना चाहिए।
0: हाँ, बिल्कुल सही बात है ये। अगर हमारे देश की बात की जाए तो हमारा देश भारत अभी एक विकासशील अवस्था में है, और या यूं कहें कि विकसित भारत बनने की ओर हम आगे बढ़ चुके हैं, और अभी हम विश्व में चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, और एक फायदा हमें अपना पॉपुलेशन डिविडेंड का भी मिलता है। तो अगर इन सारी चीजों को देखें तो हमारे देश भारत में एआई का क्या फ्यूचर हो सकता है?
1: इंडिया में एआई का फ्यूचर काफ़ी प्रॉमिसिंग है। सरकार भी अभी एआई पे फोकस कर रही है। अलग अलग फील्ड्स हैं जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर या गवर्नेंस में एआई का यूज़ बढ़ रहा है। फार्मर्स के लिए भी जैसे कि वेदर प्रोटेक्शन के लिए या फिर टीचर्स के लिए जो स्मार्ट लर्निंग टूल्स होते हैं, ये सब एआई का ही पार्ट है। हम लोग सिर्फ यूज़र नहीं, हमें

0: क्रिएटर भी बनना चाहिए, तो हम यूज़ करके नई नई चीज़ों को क्रिएट भी कर सकते हैं। तो हमारी सरकार भी एआई को इसी तरह से चीज़ों को सरल बनाने के लिए एआई का इस्तेमाल कर रहा है। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे यहाँ, हमारे हिंदुस्तान में, जैसे अभी अभी आपने कुंभ का देखा होगा, तो जो भीड़ मैनेजमेंट का काम होता है वो भी एआई के थ्रू किया जा सकता है। हमारे पास हम ड्रोन रख सकते हैं जो एआई की मदद से आपको भीड़ मैनेज करने में आपकी हेल्प करेगा। तो जो इस तरह की चीज़ें होती है उस पर भी हमारे जो भारत सरकार है वो फोकस कर रही है अभी।
1: हाँ बिल्कुल सही बात है नेहा जी कि हमारे देश भारत में एआई का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है। और अंत में चलते चलते एक आखिरी सवाल हम आपसे करना चाहेंगे कि हमारे श्रोताओं को एआई के बारे में आप क्या सलाह देना चाहेंगी?
0: एआई आप यूज़ कीजिए, टेक्नोलॉजी हमेशा इंसान के कंट्रोल में होना चाहिए। एआई के बेसिक्स को समझिए, नए टूल्स को एक्सप्लोर कीजिए और तैयार रहिए नए ज़माने के लिए। जैसा मैंने पहले भी कहा था, बुरी चीज़ों से बचते रहिए और आगे नई नई टेक्निक, नई नई चीज़ें सीखते रहिए, नए नए ऐप्स को एक्सप्लोर करते रहिए।

0: श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में आपने सुनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक खास बातचीत सॉफ्टवेयर इंजीनियर नेहा भारद्वाज से। इनसे बातचीत कर रहे थे हमारे सहयोगी विवेक आदित्य। उम्मीद है श्रोताओं, आपके लिए जानकारी लाभदायक सिद्ध होगी। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी अन्य विषय के साथ। फिलहाल इस कार्यक्रम से दीजिए अनुमति अंजला को नमस्कार।
1: जरा सुनिए,
2: जरा सुनिए,
1: जरा सुनिए।
2: समस्या है तो समाधान भी, जहाँ चाह वहाँ राह, बात बन जाएगी।
1: जरा सुनिए,
3: आप सुन रहे थे कार्यक्रम जरा सुनिए। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है और आपने ट्यून किया है FM 102.4 MHz पर। और अब लोकगीतों के कार्यक्रम में आनंद ले मैथिली लोकगीतों का कलाकार है शारदा सिन्हा।

आप सुन रहे थे मैथिली लोकगीत, कलाकार थी शारदा सिन्हा। इसी के साथ लोकगीतों का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र के संग, और अब बांग्ला गीतों के कार्यक्रम सुरांजलि में सुने आधुनिक गान। कलाकार हैं राघव चट्टोपाध्याय।

0: आप सुन रहे थे आधुनिक गान, कलाकार थे राघव चट्टोपाध्याय। इसी के साथ बांग्ला गीतों का ये कार्यक्रम सुरांजलि यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है और हम आपके साथ बने हैं FM 102.4 MHz पर। और अब कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में सुने मुंह में दुर्गंध कारण और निदान, इस विषय पर डॉक्टर बीर भजन सिंह से ली गई भेंट वार्ता। भेंट करता है राजेश कुमार।
1: श्रोताओं, अक्सर लोग मुंह की दुर्गंध होने की बात करते हैं और उन्हें काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वो किसी से बात करने में हिचकिचाते हैं। मुंह की दुर्गंध होने का क्या कारण है और इससे फिर हम कैसे बच सकते हैं? स्वास्थ्य चर्चा के आज के अंक में बातें इसी विषय पर। इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर बीर भजन सिंह। डॉक्टर साहब, हमारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: थैंक यू।
1: डॉक्टर साहब, मुंह में जो दुर्गंध होता है उसका क्या मुख्य कारण होता है?
2: मुंह में बहुत सारे प्रॉब्लम्स की वजह से होते हैं, जैसे दो तरीके से होते हैं। एक होता है कि इंट्रा ओरल प्रॉब्लम्स की वजह से होते हैं, फिर एक्स्ट्रा ओरल प्रॉब्लम्स की वजह से होता है। जिसमें से इंट्रा ओरल प्रॉब्लम में से आप देख सकते हैं कि जैसे फॉल्टी डेंचर्स हो, उसमें काफी ज्यादा गंदगी फंसा हो, या फिर बहुत लोग डेंचर्स लगाते हैं और वो लोग निकालते नहीं और साफ सफाई प्रॉपरली नहीं हो पाता है, तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं खाना जाके कहीं भी फंसा हो या कुछ रह गया इम्प्योरिटीज, तो वो साफ सफाई ठीक से नहीं हो पाते, उसकी वजह से भी आता है। और सबसे बड़ी वजह से होती है वो है कैलकुलस। एक्चुअली जो दांतों के बीच में काफी ज्यादा गंदगी फंसे रहते हैं और जो कि दिखता है बट येलो कलर का परत रहता है, जो कि एक तरह से वो कैल्सिफाइड मांस हो जाते हैं और वो पूरा बैक्टीरिया का घर है एक्चुअल में। तो बैक्टीरिया का घर, जहां भी बैक्टीरिया रहेगा वो तो महकेगा ही। फिर बहुत सारे केसेस में होते हैं कि दांतों के बीच का हड्डी में गल जाने की वजह से वहाँ खाना बहुत ज्यादा फंसते हैं, और जब बहुत ज्यादा खाना फंसेगा तो ऑटोमेटिकली वो सड़ने के भी, अगर वो नहीं निकाला गया तो सड़ेगा और सड़ेगा तो बदबू आएगी। फिर होते हैं कि जीभ में भी काफी लोग जीभ भी नहीं करते हैं ठीक से, या प्रॉपरली सफाई नहीं हो पाती है, जीभ के ऊपर से भी काफी ज्यादा गंदगी रहते हैं, तो उसकी वजह से भी बहुत सारे बदबू आते हैं। प्लस में मसूड़े में देखिएगा कि काफी ज्यादा हद तक ब्लीडिंग आना, कैलकुलस आना, वो एक्चुअली में कैलकुलस की वजह से ही होता है, और जिसके वजह से काफी ज्यादा बदबू आते हैं। बहुत लोगों का दांतों हिलने में स्टार्ट हो जाता है ड्यू टू पेरोडेंटल प्रॉब्लम्स, जिसको पेरोडोंटाइटिस एक्चुअल में कहा जाता है। लोग सोचते हैं कि पायरिया, जिसको हिंदी में पायरिया आप उसको समझाने के लैंग्वेज में बोल सकते हैं। फिर सिस्टमेटिक प्रॉब्लम की वजह से भी आता है, जिसको एक्स्ट्रा ओरल कहा जाता है, जैसे किसी का थ्रोट और माउथ में कुछ प्रॉब्लम्स हो, उसकी वजह से हो,

0: गैस की वजह से, गैस्ट्राइटिस जिसको बहुत ज़्यादा है उनके वजह से भी आता है।
1: कैसे स्वास्थ्य प्रभावित होता है इससे?
0: देखिए पहली बात यह है कि बॉडी के कोई भी पार्ट्स हो या कुछ भी हो, सब ब्लड स्ट्रीम्स कहीं ना कहीं फॉलो अप रहते हैं। आप एक जरा सोचिए कि मसूड़ के अंदर में भी ब्लड स्ट्रीम फ्लो करते हैं, और काफी हद तक बैक्टीरिया इतने ज्यादा मुंह में रहते हैं हम लोगों को अंदाजा नहीं होता है। एक कहीं ना कहीं मुंह में बहुत ज्यादा बैक्टीरिया होता है, दूसरे प्यूबिक एरिया में बहुत ज्यादा होते हैं। चूंकि हम लोग मुंह के बारे में हम लोग को पता रहता है कि यहाँ गंदगी है, फिर भी हम लोग सोचते हैं कि ब्रश से ही निकाल लें, बट ऐसा है नहीं। अब क्या होता है कि वो बैक्टीरिया मसूड़े के अंदर में है, अब वो ब्लड स्ट्रीम्स के थ्रू ही आपके बैक्टीरिया भी जाते हैं और बहुत सारे हेल्थ इश्यूज करते हैं। जैसे बैक्टीरियल इंडोकार्डाइटिस एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स होते हैं, जो हार्ट प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ये होता है, लेकिन रेयरली बहुत लोग इसको नजरअंदाज करते हैं। बट देखा गया है कि एक बैक्टीरियल इंडोकार्डाइटिस करके एक प्रॉब्लम्स आते हैं जो कि हार्ट के वॉल्व्स में ये होता है, जो कि वो कहीं ना कहीं उसी के थ्रू जाते हैं। सो प्रॉपर क्लीनिंग और प्रॉपर ओरल हाइजीन मेंटेन करने से सब चीज सॉर्ट आउट किया जा सकता है।
1: तो आप हमारे श्रोताओं को क्या सलाह देना चाहेंगे ताकि वो अपनी जो मुंह है या फिर मुंह के अंदर जो दांत है, सारी चीज का देखभाल किस तरह से करें ताकि मुंह के दुर्गंध से वो बचे रहें?
0: देखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक यूज करें, जो कि दो टाइम है, खासकर रात को सोने से पहले। सुबह तो उठने के बाद है ही, वो तो लोग करते ही हैं, लेकिन रात को सोने से पहले तो एकदम मस्ट है कि करना ही करना है। 6 से 7 महीने या 8 महीने में एक बार डेंटिस्ट को जरूर विजिट करें, बिकॉज आपके मुंह में 32 दांत है। ठीक है, जितने भी मैक्सिमम लोग को जो ब्रशिंग देखता हूँ मैं, वो लोग आगे की तरफ पे ज्यादा ध्यान देते हैं, पीछे की तरफ भूल जाते हैं। और कैलकुलस दो जगह पे सबसे ज्यादा होता है, एक पीछे की तरफ में और एक दांत के नीचे की तरफ में। ठीक है, जहां पर आपके डक्ट्स निकलते हैं, जहां से सलाइवा का निकलता है वहां पर। तो खासकर आपको इतना याद रखना है कि मुंह में स्टेन और कैलकुलस ये सब चीज़ ना रहे, रहे तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें, आसपास के जितने भी डॉक्टर्स हैं जो भी आपके अगल बगल हैं उनसे कंसल्ट करें, स्केलिंग प्रॉपरली करवाएं।
1: तो श्रोताओं, आपने सुना कि मुंह की दुर्गंध है तो जरूर समस्या, लेकिन यदि आप उस पर ध्यान नहीं देंगे तो ये शायद आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा और दुष्प्रभाव उसका आपके शरीर में दिखने लगेगा। डॉक्टर साहब ने जैसा बताया उनकी बातों पर यदि आप अमल करेंगे तो निश्चित तौर पर आप मुंह की दुर्गंध से तो बचेंगे ही, साथ ही उससे होने वाले दुष्परिणामों से भी बचेंगे। डॉक्टर साहब, आपने काफ़ी उपयोगी और महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, उम्मीद है मैं आशा का लाभ जरूर उठाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में आप सुन रहे थे मुंह में दुर्गंध कारण और निदान, इस विषय पर डॉक्टर बीरभजन सिंह से ली गई भेंट वार्ता।

0: हेलो डॉक्टर,
1: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम
0: हेलो डॉक्टर।
1: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-2960-445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657-2960-445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ।
0: हेलो डॉक्टर,
2: हेलो मनभावन, आप सुनेंगे नए अंदाज में मेरे यानी निमिषा के साथ। प्रत्येक रविवार दिन के 11 बजे आकाशवाणी जमशेदपुर के विविध भारती केंद्र से 100.8 मेगाहर्ट्ज पर। आपके फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक बुधवार दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे के

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। भारत ब्रिक्स की अपनी अध्यक्षता में केरलम के कोच्चि में आज से शुरू हो रही महिला कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर समग्र राष्ट्र की भावभीनी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत उदाहरण बताया। और फीफा विश्व कप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील की नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। पहले चरण में श्री मोदी आज इंडोनेशिया पहुंचेंगे। ये प्रधानमंत्री की 4थी इंडोनेशिया यात्रा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मई 2018 में दोनों देशों के संबंधों के व्यापक रणनीतिक भागीदारी तक पहुंचने के बाद से शीर्ष नेतृत्व के बीच ये पहली द्विपक्षीय वार्ता होगी।
3: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियंतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग

0: प्रयासों में सहयोग कर रहा है, जो दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित करता है। जकार्ता से संदीपन दासगुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीषा।
1: भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के नवे सत्र की अध्यक्षता करेगा। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन ने 6 से 8 जुलाई तक इस सत्र का आयोजन किया है।
2: उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि इस सत्र में सदस्य देश, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, शिक्षाविद और अन्य संबंधित पक्ष उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति से जुड़े उभरते मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। उपभोक्ता मामले विभाग की सचिव निधि खरे इस सत्र की अध्यक्षता करेंगी। वह 3 दिन तक चलने वाले इस सत्र में विचार विमर्श का संचालन करेंगी। सत्र के दौरान उपभोक्ता जानकारी और शिक्षा, टिकाऊ उपभोग, वैश्विक बाजारों में उपभोक्ता संरक्षण कानून के प्रभावी क्रियान्वयन और सीमा पार उपभोक्ता संरक्षण जैसे विषयों पर चर्चा होगी। भारत वाई द प्रिंसिपल मैटर विषय पर आयोजित उच्च स्तरीय फायरसाइड चर्चा में भी भाग लेगा। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स महिला कार्य समूह की 2 दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। केरलम के कोच्चि में आज से शुरू हो रही बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे।
3: विभिन्न क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण और महिला नीति विकास से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विचार होगा। साझा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी बातचीत होगी। इस बैठक से सदस्य देशों को महिला नीति विकास के लिए सहमति बनाने का अवसर मिलेगा। ब्रिक्स महिला कार्य समूह ने 4 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है। इनमें शासन और नेतृत्व में महिलाओं की भूमिका, डिजिटल और वित्तीय गतिविधियों में उनकी समावेशिता, महिला उद्यमिता और कौशल विकास तथा जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा और पोषण में महिलाओं की भूमिका शामिल है। यह बैठक 8 और 9 जुलाई को होने वाले ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय सम्मेलन की आधार भूमि तय करेगी। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
1: भारत असम के गुवाहाटी में 2 दिन की ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसी प्रमुखों की बैठक की मेजबानी करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि आज से शुरू हो रही बैठक का उद्देश्य संस्थागत संपर्क मजबूत करना और मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के बीच सहयोग बढ़ाना है।
4: बैठक में सिंथेटिक ड्रग्स और प्रिकर्सर रसायनों की अवैध आपूर्ति पर रोक, खुफिया सूचनाओं के आदान प्रदान तथा परिचालन समन्वय को मजबूत बनाने, क्षमता निर्माण और संस्थागत सहयोग बढ़ाने जैसे विषयों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि ने साइको एक्टिव पदार्थों, डार्कनेट के माध्यम से होने वाली तस्करी, क्रिप्टो करेंसी आधारित अवैध वित्तीय लेन देन तथा प्रिकर्सर रसायनों के दुरुपयोग जैसी उभरती चुनौतियों पर भी विचार विमर्श करेंगे। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि मंदिर को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर बैठक में चर्चा होगी।
5: बैठक के एजेंडे में महासचिव चंपत राय और न्यासी डॉक्टर अनिल मिश्रा के त्याग पत्रों पर विचार विमर्श करना भी शामिल है। सदस्यों को न्यास की दान पेटियों के माध्यम से मिले दान की गणना के संबंध में सोसाइटी की अंतरिम रिपोर्ट के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। बैठक में राम मंदिर के भविष्य के प्रबंधन से संबंधित व्यवस्थाओं पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। एजेंडा का एक महत्वपूर्ण बिंदु वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आय व्यय वितरण, बैलेंस शीट और अन्य वित्तीय दस्तावेजों की प्रस्तुति और शामिल है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से कोलकाता में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि यह कार्यक्रम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के 2 वर्षीय आधिकारिक समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है।
6: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दोपहर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती समारोह में शामिल होने के लिए कोलकाता पहुंचेंगे। वे न्यू टाउन स्थित इको पार्क जाएंगे, जहां वे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की

0: 125 फीट ऊंची प्रतिमा के शिलान्यास समारोह में भाग लेंगे। दोपहर बाद भवानीपुर स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पैतृक निवास पर आयोजित कार्यक्रम में अमित शाह उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करके श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत प्रतीक बताया है। श्री मोदी ने एक आलेख में कहा है कि डॉक्टर मुखर्जी का जीवन अखंड भारत के लिए उनकी अटल प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उन्होंने विभाजन के दौरान पश्चिम बंगाल को और इसके बाद जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखना सुनिश्चित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2019 में अनुच्छेद 370 और 35 से निरस्त किया जाना उनके बलिदान के प्रति सर्वाधिक समुचित श्रद्धांजलि थी। मुंबई और तटीय महाराष्ट्र में तेज हवा के साथ लगातार बारिश हो रही है। रायगढ़ जिले में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, जहां प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों में मूसलाधार बारिश ने जबरदस्त तबाही मचाई है।
2: मुंबई, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट और रायगढ़ जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। एहतियात के तौर पर सभी तटीय जिलों और पुणे में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। मुंबई के मानखुर्द इलाके में 3 मंजिला कच्ची चौल में घरों के ढहने से 6 लोगों की मौत हो गई। रविवार को ठाणे और पालघर जिलों में तेज बारिश का कहर जारी रहा, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई और कई इमारतें ढह गईं। सिंधुदुर्ग में कई जगहों पर इमारतें ढहने से नुकसान हुआ है। मुंबई से संगीता गोडबोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: मौसम विभाग ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने फीफा विश्व कप के राउंड 16 में कल रात नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। नेमार जूनियर हमेशा ब्राजील के सबसे प्रमुख स्कोरर रहे। कल के मैच में ब्राजील के लिए एकमात्र गोल करने के बावजूद नेमार अपनी टीम को हार से बचा नहीं पाए। महाभारत के कालजयी प्रसंगों को पंडवानी में पेश करने वाली सुविख्यात लोक गायिका तीजन बाई अब हमारे बीच नहीं रही। उनके निधन से लोक संस्कृति की अपूर्णीय क्षति हुई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
3: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों की सुर्खियों में आज राम मंदिर परिसर में होने वाली न्यास की बैठक और देश के विभिन्न हिस्सों में मॉनसून की चाल से जुड़े समाचार छाए हुए हैं। साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के अन्य मुद्दों को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर चित्र सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, देश की एकता और अखंडता को समर्पित जीवन। पत्र ने श्री मोदी के इन शब्दों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। डॉक्टर मुखर्जी के जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करना था। देश के विभाजन के समय उन्होंने पश्चिम बंगाल को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुछ वर्षों बाद इसी उद्देश्य से उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर भी संघर्ष किया। अन्य राष्ट्रीय समाचार पत्रों ने भी इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश संपादकीय पन्नों पर छापा है। वहीं जनसत्ता ने ओडिशा में विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान 20 लाख से अधिक लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने के समाचार को पहले पन्ने पर प्रमुखता से छापा है। पत्र ने प्रख्यात पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन का समाचार सचित्र प्रकाशित करते हुए उनकी उपलब्धियों और योगदान पर भी प्रकाश डाला है। दैनिक भास्कर ने गैस आपूर्ति पर लगे प्रतिबंधों को हटाए जाने का समाचार हाशिए में सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। पत्र ने देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत के लिए हो रही तैयारियों की खबर को भी वरीयता दी है। वहीं इंस्टाग्राम पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कंटेंट के मामले में केंद्र सरकार की ओर से मेटा को जारी नोटिस का समाचार नवभारत टाइम्स, दैनिक भास्कर और देशबंधु सहित कई अखबारों ने पहले पृष्ठ पर दिया है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद

0: प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूजा कुमारी। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री ने धनबाद में कोयले के अवैध खनन और अनाधिकृत परिवहन पर रोक लगाने और कार्रवाई के लिए जीरो कोल लीकेज प्लान तैयार करने का दिया निर्देश। केंद्र सरकार ने झारखंड से वीबीजी रामजी योजना को अधिसूचित कर बजटीय प्रावधान करने का किया अनुरोध। राज्यों को 25,863 करोड़ की पहली किश्त जारी की। समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जयंती पर दे रहे श्रद्धांजलि। पूरे झारखंड में मॉनसून हुआ सक्रिय। अगले 4 दिनों तक बारिश, आंधी तूफान और बिजली गिरने की संभावना। कुछ जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। और रांची के खेलगांव में आयोजित तीसरी रांची जिला शूटिंग प्रतियोगिता संपन्न। अभिषेक वर्मा ने 2 अलग अलग स्पर्धाओं में जीता स्वर्ण और रजत पदक। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने धनबाद और आसपास के इलाकों में अवैध कोयला खनन और चोरी पर चिंता जताई है। वे कल नई दिल्ली में कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी के साथ अवैध कोयला खनन और कोयला चोरी के मामलों की उच्च स्तरीय समीक्षा कर रहे थे। श्री शाह ने अवैध खनन और कोयले के अनाधिकृत परिवहन पर रोक लगाने और कार्रवाई के लिए जीरो कोल लीकेज प्लान तैयार करने को निर्देश दिया। इसके साथ ही श्री शाह ने अधिकारियों को CISF की तैनाती के लिए प्राथमिकता वाली सूची में कोयला क्षेत्र को शामिल करने पर जोर दिया। उन्होंने अवैध खनन के इलाकों और उसमें शामिल लोगों की पहचान के लिए हाई रिजोल्यूशन कैमरों का इस्तेमाल करने का भी निर्देश दिया। केंद्र सरकार ने झारखंड से वीबीजी रामजी योजना को अधिसूचित कर आवश्यक बजटीय प्रावधान सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान रविवार को सभी राज्यों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वीबीजी रामजी के क्रियान्वयन की ऑनलाइन समीक्षा कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने राज्यों को इस योजना के संचालन के लिए 25,863 करोड़ की पहली किश्त भी जारी की।
1: को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है। 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई, तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गाँव का निर्माण हो जाएगा।
0: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 8 और 9 जुलाई को नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय हितधारक परामर्श सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। यह कार्यक्रम झारखंड में औद्योगिक विकास को गति देने और निवेश के अनुकूल माहौल तैयार करने का दिशा में अहम साबित होगा। 9 जुलाई को मुख्यमंत्री श्री सोरेन विशेष फीडबैक सत्र की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ राज्य में निवेश की संभावनाओं, औद्योगिक चुनौतियों और नीतियों के विभिन्न पहलुओं पर

0: चर्चा होगी। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तहत पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने पत्नी मीरा मुंडा के साथ कल स्वगणना प्रपत्र भरा। इस अवसर पर अर्जुन मुंडा ने कहा कि मतदाता सूची में सही जानकारी दर्ज कराना और उसका समय समय पर सत्यापन कराना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है।
1: 20 वर्षों में एक बार गहन पुनरीक्षण का कार्य चलता है। सभी मतदाताओं को 2003 और 2026 के बीच में ये सूचना ग्रहण करना, ये सूचना देना कि मतदाता सूची में उसका नाम रहे और जो जिनकी मृत्यु हो गई उसका नाम उससे हटे और नए जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके उसका नाम जुड़े।
0: राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य डॉक्टर आशा लकड़ा आज रांची में जामताड़ा, हजारीबाग और रांची जिले से जुड़े 14 मामलों की सुनवाई करेंगी। सुनवाई में नगड़ी में प्रस्तावित रिम्स 2 के लिए भूमि अधिग्रहण, आदिवासी भूमि विवाद, सरना स्थल, खतियान भूमि अतिक्रमण और मुआवजा सहित कई मामलों पर विचार किया जाएगा। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNewsRanchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इधर जामताड़ा जिले के कुंडहित प्रखंड मुख्यालय के डाक बंगला मैदान में कल डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का 125वां स्मरण दिवस सह कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। मौके पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और पूर्व सांसद सुनील सोरेन ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन से सीख लेने की अपील की।
2: विधायक सेना प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना और हमें 75 वर्षों तक बंगाल में सरकार बनाने में पार्टी को आई और वास्तव में बंगाल के लोगों की जो आजादी है वो 4 मई को ही जब वहाँ चुनाव का जो परिचार मई को ही बनो।
0: दक्षिण पूर्व रेलवे के आद्रा मंडल के चांडल स्टेशन पर आज से 12 जुलाई तक विकास कार्यों को लेकर कई पैसेंजर और मेमू ट्रेनों के परिचालन में बदलाव किया गया है। रेलवे ने यात्रियों से यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति की जानकारी लेकर ही सफर करने की अपील की है। राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में मॉनसून सक्रिय हो गया है। पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने कहा कि पूरे राज्य में अगले कुछ दिनों तक बारिश, आंधी तूफान और वज्रपात की संभावना बनी हुई है। वहीं कुछ जिलों में भारी बारिश हो सकती है। आज रांची, गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, लोहरदगा और गुमला में भारी बारिश की संभावना है।
3: लो प्रेशर अभी बना हुआ है और तो इसे आने वाले दिनों में झारखंड में भी बारिश आपको बढ़ते हुए देखेगी। अभी बारिश लगभग रोज देखने को मिलेगी और 2-3 दिन बाद से लगभग सभी इलाकों में आपको ठीक बारिश देखने को मिलेगी।
0: रांची के खेलगांव स्थित टिकैत उमराव शूटिंग रेंज में आयोजित 3री रांची जिला शूटिंग प्रतियोगिता संपन्न हो गई। अभिषेक वर्मा ने 25 मीटर स्टैंडिंग राइफल स्पर्धा में स्वर्ण और 50 मीटर राइफल स्पर्धा में रजत पदक जीतकर दोहरी सफलता हासिल की, जबकि मन्नत कुमारी, कीरत सिंह और रौनक राज ने अपने अपने वर्ग में स्वर्ण पदक जीते। समापन समारोह में IG प्रभात कुमार और IG अनूप बिरथरे ने विजेता खिलाड़ियों को पदक प्रदान किया। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित अधिकांश अखबारों ने धनबाद में अवैध कोयला खनन और परिवहन पर रोक लगाने को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की समीक्षा बैठक की खबर को पहली सुर्खी बनाई है। इसके अलावा प्रभात खबर ने अयोध्या राम मंदिर में चंदा चोरी के मामले में आज ट्रस्ट की होने वाली बैठक की खबर को पहले पेज पर प्रकाशित किया है। इसी खबर पर दैनिक जागरण ने लिखा है, चंपत राय के विकल्प की तलाश शुरू, आज होगी ट्रस्ट की बैठक। हिंदुस्तान ने लिखा है, राज्य में साइकिल बाइक फैक्ट्री लगाने की झारखंड सरकार की तैयारी। दैनिक भास्कर ने रांची में संघ कार्यालय पर पेट्रोल बम से हमला, आतंकी साजिश का हिस्सा होने के खुलासे को प्रमुखता दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री ने

धनबाद में कोयले के अवैध खनन और अनाधिकृत परिवहन पर रोक लगाने और कार्रवाई के लिए जीरो कोल लीकेज प्लान तैयार करने का दिया निर्देश। केंद्र सरकार ने झारखंड से वीबीजी रामजी योजना को अधिसूचित कर बजटीय प्रावधान करने का किया अनुरोध। राज्यों को 25,863 करोड़ की पहली किस्त जारी की। समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जयंती पर दे रहा श्रद्धांजलि। पूरे झारखंड में मॉनसून हुआ सक्रिय, अगले चार दिनों तक बारिश, आंधी तूफान और बिजली गिरने की संभावना। कुछ जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। और रांची के खेलगांव में आयोजित तीसरी रांची जिला शूटिंग प्रतियोगिता सम्पन्न। अभिषेक वर्मा ने दो अलग अलग स्पर्धाओं में जीता स्वर्ण और रजत पदक। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: मीडियम में 546।

0: ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है और आपने ट्यून किया है FM 102.4 MHz पर।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

सुनिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश हर मंगलवार रात 10 बजे से 11 बजे तक FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। और हाँ, अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवाने के लिए हमें कॉल करें हर बुधवार दोपहर

0: 12 बजे से 1 बजे के बीच। हमारा फ़ोन नंबर है 0657-296-0445। हेलो, आपकी फरमाइश संगीत वही जो आप चाहें।
1: ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है और आपने ट्यून किया है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर और अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

लाल सिंह चड्ढा। इस फिल्म का ये गीत आपने सुना अरिजीत सिंह और शिल्पा राव की आवाजों में। संगीत निर्देशन किया था प्रीतम ने और गीत लिखा था अमिताभ भट्टाचार्य ने। इसी के साथ ही श्रोताओं, फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 MHz पर। सुबह के 9 बजने ही वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। पहले चरण में श्री मोदी आज इंडोनेशिया पहुंचेंगे। ये प्रधानमंत्री की 4थी इंडोनेशिया यात्रा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि मई 2018 में दोनों देशों के संबंधों के व्यापक रणनीतिक भागीदारी तक पहुंचने के बाद से शीर्ष नेतृत्व के बीच ये पहली द्विपक्षीय वार्ता रहेगी। भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन ने 6 से 8 जुलाई तक इस सत्र का आयोजन किया है। भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स महिला कार्य समूह की 2 दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। केरलम के कोच्चि में आज से शुरू हो रही बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। विभिन्न क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण और महिला विकास से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विचार होगा। साझा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी बातचीत होगी। इस बैठक से सदस्य देशों को महिला विकास के लिए सहमति बनाने का अवसर मिलेगा। भारत असम के गुवाहाटी में 2 दिन की ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसी प्रमुखों की बैठक की मेजबानी करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज से शुरू हो रही बैठक का उद्देश्य संस्थागत संपर्क को मजबूत करना और मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के बीच सहयोग बढ़ाना है।
1: बैठक में सिंथेटिक ड्रग्स और प्रिकर्सर रसायनों की अवैध आपूर्ति पर रोक, खुफिया सूचनाओं के आदान प्रदान तथा परिचालन समन्वय को मजबूत बनाने, क्षमता निर्माण और संस्थागत सहयोग बढ़ाने जैसे विषयों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि नए साइकोएक्टिव पदार्थों, डार्क नेट के माध्यम से होने वाली तस्करी, क्रिप्टो करेंसी आधारित अवैध वित्तीय लेन देन तथा प्रिकर्सर रसायनों के दुरुपयोग जैसी उभरती चुनौतियों पर भी विचार विमर्श करेंगे। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। मंदिर को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर बैठक में चर्चा होगी। समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से कोलकाता में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। ये कार्यक्रम डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के 2 वर्षीय आधिकारिक समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत प्रतीक बताया है। श्री मोदी ने कहा, लेख में कहा है कि डॉ मुखर्जी का जीवन अखंड भारत के लिए उनकी अटल प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उन्होंने विभाजन के दौरान पश्चिम बंगाल को और उसके बाद जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न

0: परी के आदर्श को जीवन का मार्गदर्शक सिद्धांत बनाया। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने फीफा विश्व कप के राउंड 16 में कल रात 9 बजे से 2-1 से हार के बाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। नेमार जूनियर हमेशा से ब्राजील के प्रमुख स्कोरर रहे। कल के मैच में ब्राजील के लिए एकमात्र गोल करने के बावजूद नेमार अपनी टीम को हार से बचा नहीं पाए। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हिंदी में समाचार अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 9:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरंजना।

सुरंजना कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। स्वीकार करें आपकी दोस्त नेहा का सप्रेम नमस्कार। आज है सोमवार और आज के दिन आप सुनते हैं एक ही संगीतकार के गाने। तो हमारा आज का कार्यक्रम केंद्रित है संगीतकार विशाल भारद्वाज पर। फिलहाल बातों से पहले सुने उनके संगीत निर्देशन में बना ये गाना।

विशाल भारद्वाज का जन्म हुआ था 4 अगस्त 1965 को उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के चांदपुर शहर में। उनकी माता सत्य भारद्वाज गृहिणी तो पिता राम भारद्वाज गन्ना निरीक्षक थे। साथ ही उनके पिता हिंदी फिल्मों के लिए कविताएं और गीत भी लिखा करते थे। चांदपुर से 5वीं कक्षा पूरी कर आगे की पढ़ाई के लिए वे मेरठ चले गए। यहाँ रहकर उन्होंने स्टेट लेवल पर क्रिकेट भी खेला। क्रिकेटर बनने के लिए ही वे प्रयास कर रहे थे, मगर एक हादसे ने सब कुछ बदल कर रख दिया। दरअसल एक टूर्नामेंट से ठीक पहले प्रैक्टिस सेशन के दौरान उनकी अंगूठे की हड्डी टूट गई, जिसकी वजह से वे आगे क्रिकेट नहीं खेल पाए।

एक बार फिर हम आपको याद दिला दें श्रोताओं, आज की सुरंजना कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं एक ही संगीतकार के गाने, और हमारा आज का कार्यक्रम केंद्रित है संगीतकार विशाल भारद्वाज पर।

अंगूठे की चोट के बाद पिता की सलाह पर विशाल ने संगीत की राह पकड़ ली और अपना पूरा ध्यान पढ़ाई और संगीत पर दिया। 17 साल की उम्र में विशाल ने एक धुन बनाई, जिसे सुनने के बाद उनके पिता ने संगीतकार उषा खन्ना से बात की। उषा खन्ना को भी धुन पसंद आ गई और 1985 में फिल्म यार कसम में उनकी बनाई धुन को जगह दे दी गई। अपना काम खत्म कर विशाल वापस दिल्ली आ गए और अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। शुरुआती दौर में विशाल भारद्वाज ने म्यूजिक रिकॉर्डिंग कंपनी में भी काम किया। उन्हीं दिनों उनकी मुलाकात गीतकार गुलजार से हुई और दोनों ने मिलकर कई उत्कृष्ट गाने बनाए।

विशाल ने 1995 में फिल्म अभय से संगीतकार के रूप में डेब्यू किया था, लेकिन उन्हें पहचान मिली सन 1996 में आई गुलजार के फिल्म माचिस से। इस फिल्म की अपार सफलता के बाद उन्होंने एक से बढ़कर एक कई बेहतरीन संगीत से फिल्मों को सजाया, जिनमें फिल्म चाची 420, 10 कहानियां, 7 खून माफ, सोन चिरैया, डार्लिंग्स और खुफिया प्रमुख हैं। इन सब के अलावा बतौर निर्देशक विशाल ने कमाल की फिल्में सिनेमा जगत को दी हैं, जिनमें मकबूल, ओंकारा और हैदर हैं। अपने उत्कृष्ट कार्य के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है।

और अब घड़ी की सुइयों ने इशारा कर दिया है श्रोताओं कि वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। मुझे यानी आपकी दोस्त नेहा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: सुनिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश हर मंगलवार रात 10 बजे से 11 बजे तक एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। और हाँ, अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवाने के लिए हमें कॉल करें हर बुधवार दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0657-296-0445। हेलो आपकी फरमाइश, संगीत वही जो आप चाहें।
1: ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है और आपने ट्यून किया है एफएम 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। और अब शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आनंद लें ख्याल गायन का। राग है श्रीमद भैरव, कलाकार हैं पंडित जितेंद्र अभिषेकी।

0: आप सुन रहे थे ख्याल गायन, राग था श्रीमद भैरव और कलाकार थे पंडित जितेंद्र अभिषेकी। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है। सुबह के 10 बजने ही वाले हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दिल्ली से अनुप्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार, और 10:10 पर होगा विश्व दर्पण समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर इंडोनेशिया जा रहे हैं। इस यात्रा से दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो वर्ष 2025 के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भारत आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंडोनेशिया में वे राष्ट्रपति सुबियांतो के साथ प्रम्बन्नन मंदिर जाएंगे और भारतवंशियों से भी बातचीत करेंगे। भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन ने 6 से 8 जुलाई तक इस सत्र का आयोजन किया है। भारत असम के गुवाहाटी में 2 दिन की ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसी प्रमुखों की बैठक की मेजबानी करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज से शुरू हो रही बैठक का उद्देश्य संस्थागत संपर्क मजबूत करना और मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के बीच सहयोग बढ़ाना है।
2: बैठक में सिंथेटिक ड्रग्स और प्रिकर्सर रसायनों की अवैध आपूर्ति पर रोक, खुफिया सूचनाओं के आदान प्रदान तथा परिचालन समन्वय को मजबूत बनाने, क्षमता निर्माण और संस्थागत सहयोग बढ़ाने जैसे विषयों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि नए साइकोएक्टिव पदार्थों, डार्क नेट के माध्यम से होने वाली तस्करी, क्रिप्टो करेंसी आधारित अवैध वित्तीय लेन देन तथा प्रिकर्सर रसायनों के दुरुपयोग जैसी उभरती चुनौतियों पर भी विचार विमर्श करेंगे। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत ब्रिक्स महिला कार्य समूह की 2 दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। केरलम के कोच्ची में आज से शुरू हो रही बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। विभिन्न क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण और महिला नीति विकास से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विचार होगा। असम विधानसभा का बजट सत्र आज गुवाहाटी के दिसपुर में शुरू हो रहा है। नवगठित विधानसभा के पहले बजट सत्र में 16 कार्य दिवस होंगे। वार्षिक वित्तीय विवरण बजट अनुमान 2026-27 10 जुलाई को पेश किया जाएगा। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। मंदिर को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर बैठक में चर्चा होगी। आंध्र प्रदेश में अमरावती स्थित सचिवालय कार्यालय आज से कर्मचारियों के लिए 3 दिन के विशेष गहन पुनरीक्षण शिविर का आयोजन करेगा। इसका उद्घाटन मुख्य सचिव जी साई प्रसाद और राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी विवेक यादव करेंगे। इस शिविर में मतदाताओं के ऑनलाइन जनगणना प्रपत्र जमा करने, नए मतदाताओं के नामांकन, मृत मतदाताओं के नाम हटाने और अन्य मतदाता विवरणों में सुधार किए जाएंगे। समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से कोलकाता में विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। ये कार्यक्रम डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के 2 वर्षीय आधिकारिक समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री मोदी ने एक आलेख में कहा कि डॉ मुखर्जी का जीवन अखंड भारत के लिए उनकी अटल प्रतिबद्धता का प्रमाण है। गृहमंत्री अमित शाह ने भी डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि डॉ मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक

0: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना। श्री मोदी ने कहा इस यात्रा से व्यापक रणनीतिक साझेदारी और प्रगाढ़ होगी। भारत जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। भारत ब्रिक्स की अपनी अध्यक्षता में केरलम के कोच्चि में आज से शुरू हो रही महिला कार्य समूह की बैठक की मेजबानी कर रहा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तानी रेंजर्स की गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत और कई लोगों के घायल होने के बाद तनाव बढ़ा और फीफा विश्व कप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील की नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की कर दी है घोषणा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। पहले चरण में श्री मोदी आज इंडोनेशिया पहुंचेंगे। ये प्रधानमंत्री की 4थी इंडोनेशिया यात्रा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मई 2018 में दोनों देशों के संबंधों के व्यापक रणनीतिक भागीदारी तक पहुंचने के बाद से शीर्ष नेतृत्व के बीच पहली द्विपक्षीय वार्ता होगी।
1: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियंतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। बाली, मेदान, सेमारंग, सुराबाया और जकार्ता के समुदाय सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ भव्य स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। हजारों भारतीय नागरिकों और भारतीय मूल के लोगों के जुटने की उम्मीद है, जो इस यात्रा को गर्व का विषय और अपनी मातृभूमि के साथ संबंध मजबूत करने का अवसर मान रहे हैं। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकार्ता जाएंगे। भारत इस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के जीर्णोद्धार के प्रयासों में सहयोग कर रहा है, जो दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित करता है। वार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीषा।
0: श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियंतो के निमंत्रण पर इंडोनेशिया जा रहे हैं। इस यात्रा से दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियंतो वर्ष 2025 के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भारत आए थे। इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। उनकी यात्रा प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के निमंत्रण पर हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर तथा स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारतीय दृष्टिकोण और सशक्त होगा। भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन ने 6 से 8 जुलाई तक इस सत्र का आयोजन किया है।
2: उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि इस सत्र में सदस्य देश, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, शिक्षाविद और अन्य संबंधित पक्ष उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति से जुड़े उभरते मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। उपभोक्ता मामले विभाग की सचिव निधि खरे इस सत्र की अध्यक्षता करेंगी। वह 3 दिन तक चलने वाले इस सत्र में विचार विमर्श का संचालन करेंगी। सत्र के दौरान उपभोक्ता जानकारी और शिक्षा, टिकाऊ उपभोग, वैश्विक बाजारों में उपभोक्ता संरक्षण कानून के प्रभावी क्रियान्वयन और सीमा पार उपभोक्ता संरक्षण जैसे विषयों पर चर्चा होगी। भारत वाई द प्रिंसिपल मैटर विषय पर आयोजित उच्च स्तरीय फायरसाइड चर्चा में भी भाग लेगा। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: भारत

0: भारत असम के गुवाहाटी में दो दिन की ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसी प्रमुखों की बैठक की मेजबानी करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि आज से शुरू हो रही बैठक का उद्देश्य संस्थागत संपर्क को मजबूत करना और मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के बीच सहयोग बढ़ाना है।
1: बैठक में सिंथेटिक ड्रग्स और प्रिकर्सर रसायनों की अवैध आपूर्ति पर रोक, खुफिया सूचनाओं के आदान प्रदान तथा परिचालन समन्वय को मजबूत बनाने, क्षमता निर्माण और संस्थागत सहयोग बढ़ाने जैसे विषयों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि ने साइको एक्टिव पदार्थों, डार्कनेट के माध्यम से होने वाली तस्करी, क्रिप्टो करेंसी आधारित अवैध वित्तीय लेन देन तथा प्रिकर्सर रसायनों के दुरुपयोग जैसी उभरती चुनौतियों पर भी विचार विमर्श करेंगे। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तान रेंजर्स की गोलाबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई के घायल होने के बाद तनाव और बढ़ गया है। हमारी संवाददाता ने खबर दी है कि यह घटना बुनियादी अधिकारों, आर्थिक राहत और राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग के प्रदर्शनों के बीच हुई है।
2: पूरे क्षेत्र में पाकिस्तान विरोधी प्रदर्शनों में 600 से अधिक नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। इस बीच कल लंदन में प्रवासी कश्मीरियों ने प्रदर्शनकारियों के समर्थन में रैली निकाली। दूसरी ओर पाकिस्तान में कराची के अब्बासी शहीद अस्पताल में भी विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं, जहां डॉक्टर लंबित वेतन, बेहतर सुरक्षा और सुविधाओं में सुधार की मांग कर रहे हैं। डॉक्टरों ने मांगे पूरी नहीं होने पर सेवाएं बंद कर देने की चेतावनी दी है। विश्व दर्पण के लिए मैं आशा निवेदी।
0: पुर्तगाल, ग्रीस और स्पेन में सैकड़ों दमकल कर्मी जंगल में लगी भीषण आग से जूझ रहे हैं। स्पेन और इटली ने पुर्तगाल में तीन दिन से लगी भीषण आग को बुझाने में मदद के लिए अपने अतिरिक्त दमकल कर्मी भेजे हैं।
3: ग्रीस के दूसरे सबसे बड़े शहर थेसालोनिकी के कुछ हिस्सों में अधिकारियों ने लोगों से घर के अंदर रहने का आग्रह किया है। यूरोपीय संघ की कोपरनिकस उपग्रह मानचित्रण एजेंसी के अनुसार कल तक जंगल की आग 12,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैल चुकी थी। यूरोपीय संघ के नागरिक सुरक्षा और मानवीय सहायता विभाग ने बताया कि स्पेन ने शुक्रवार को पुर्तगाल को अतिरिक्त सहायता के रूप में 120 दमकल कर्मी और 45 वाहन भेजे, जबकि इटली और स्पेन से 3 दमकल विमान भी मदद के लिए भेजे गए। स्पेन में पूर्वोत्तर गिरोना क्षेत्र में शुक्रवार से लगी जंगल की आग लगभग 2,200 हेक्टेयर क्षेत्र में फैल चुकी है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: प्रचंड तूफान बावी ने अमरीकी प्रशांत द्वीपों पर दस्तक दी है। चक्रवात और मूसलाधार बारिश से गुआम और उत्तरी मारियाना द्वीपों पर असर पड़ा है। लगभग 290 से लेकर 350 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यह तूफान प्रशांत द्वीपों की ओर बढ़ रहा है। अमरीकी राष्ट्रीय मौसम सेवा ने इससे विनाशकारी तबाही की चेतावनी दी है। इससे समुद्र में लगभग 11 मीटर ऊंची लहरें उठ सकती हैं। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। 5 बार के विश्व चैंपियन ब्राजील की राउंड 16 में कल रात नॉर्वे से 2-1 से हार और छठे विश्व कप खिताब से चूकने के कुछ पलों बाद ही उन्होंने ये घोषणा की। वे हमेशा ब्राजील के सबसे प्रमुख स्कोरर रहे। कल के मैच में भी उन्होंने ब्राजील के लिए एकमात्र गोल किया, लेकिन बावजूद इसके वो अपनी टीम को हार से बचा न पाए। उनके संन्यास से ब्राजील फुटबॉल में एक सर्वाधिक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय करियर का अंत हो गया है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना। श्री मोदी ने कहा, इस यात्रा से व्यापक रणनीतिक साझेदारी और प्रगाढ़ होगी। भारत जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। भारत ब्रिक्स की अपनी अध्यक्षता में केरलम के कोच्चि में आज से शुरू हो रही महिला कार्य समूह की बैठक की मेजबानी कर रहा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तानी रेंजर्स की गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत और कई लोगों के घायल होने के बाद तनाव बढ़ गया है। और फीफा विश्व कप में आज इंग्लैंड ने मेक्सिको को 3-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त।

0: विश्व दर्पण समाचार भी आप सुन रहे थे आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से FM 102.4 MHz पर। सुबह के 10:20 हुए हैं। फिल्म संगीत के कार्यक्रम के लिए करें जरा सा इंतजार।
1: जलवायु और ऊर्जा, यह यूनेस्को का संदेश है। जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण है मानव द्वारा किया गया जीवाश्म ईंधन का उपयोग, जैसे कोयला, तेल और गैस। सबसे ज्यादा प्रभाव कोयला डालता है और गैस व तेल भी बहुत ग्रीन हाउस गैसेस छोड़ते हैं। हालांकि अब विकासशील देशों का योगदान बढ़ रहा है, लेकिन अमीर देशों ने पहले कदम उठाने में देरी की है। आबादी के बढ़ने और आर्थिक विकास से ऊर्जा की मांग बढ़ती है। सौर, पवन, समुद्र, जैव और भूताप जैसे स्वच्छ ऊर्जा के बिना जलवायु लक्ष्य हासिल नहीं किए जा सकते हैं। यहाँ एक रोचक तथ्य है, कई देश 2030 तक जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का दुगना से भी अधिक उत्पादन करने की योजना बना रहे हैं, जो पेरिस समझौते के 1.5 डिग्री सेल्सियस लक्ष्य से अधिक है।
2: नमस्कार जमशेदपुर। नमस्कार जमशेदपुर का एक अलग अंदाज,
3: ज्ञान विज्ञान
4: इतिहास के पन्नों से,
3: सेहत और बॉलीवुड की बातें,
2: मौसम का मिजाज,
3: अपने शहर की खबरें,
4: बातों मुलाकातों के साथ
2: सुरीला मनोरंजन
3: और भी बहुत कुछ।
2: आप सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में दिन के 11:05 से 12 बजे तक
4: आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से।
5: नमस्कार जमशेदपुर।

अरमान मलिक की आवाज में आपने सुना फिल्म कबीर सिंह का ये गीत। गीत लिखा था इरशाद कामिल ने, संगीत निर्देशन किया था विशाल मिश्रा ने।

तुमको ना भूल पाएंगे, इस फिल्म का ये गीत आपने सुना अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाजों में। संगीत निर्देशन किया था डब्बू मलिक ने और गीत लिखा था सुधाकर शर्मा ने।

प्यार किया तो डरना क्या, इस फिल्म का ये गीत आपने सुना उदित नारायण की आवाज में। संगीत निर्देशन किया था जतिन ललित ने और गीत लिखा था समीर ने।

खिलाड़ी फिल्म का ये गीत आपने सुना अभिजीत और अलका याग्निक की आवाजों में। संगीत निर्देशन किया था जतिन ललित ने और गीत लिखा था अनवर सागर ने।

गुजारिश फिल्म का, क्षमा करें श्रोताओं, गजनी फिल्म का ये गीत आपने सुना जावेद अली और सोनू निगम की आवाजों में। गीत लिखा था प्रसून जोशी ने और संगीत निर्देशन किया था AR रहमान।

गरम मसाला फिल्म का ये गीत आपने सुना सोनू निगम की आवाज़ में। और इसी के साथ ही श्रोताओं, फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM 102.4 MHz पर। दिन के 11 बजने ही वाले हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। और इसके ठीक तुरंत बाद यानी 11:05 पर सुनना न भूलें कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर इंडोनेशिया जा रहे हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस यात्रा से दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी।
1: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकर्ता जाएंगे। भारत इस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के जीर्णोद्धार के प्रयासों में सहयोग कर रहा है, जो दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित करता है। जकार्ता से संदीपन दासगुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। उनकी यात्रा से भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। भारत स्विट्जरलैंड के जेनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन ने आज से 8 जुलाई तक इस सत्र का आयोजन किया है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में भाग लेंगे। मंत्रालय ने बताया है कि सहकार से समृद्धि लक्ष्य के तहत इस समारोह का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर श्री शाह कई प्रमुख परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। इनमें 232 अनाज भंडारण गोदाम का उद्घाटन, सहकार वन तथा टिश्यू कल्चर केंद्र का भूमि पूजन, राष्ट्रीय सहकारिता डेटाबेस के तीसरे चरण की शुरुआत और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के दुग्ध आपूर्ति समीक्षा डैशबोर्ड पोर्टल का शुभारंभ शामिल है। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। मंदिर को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर बैठक में चर्चा होगी। आंध्र प्रदेश में अमरावती स्थित सचिवालय कार्यालय आज से कर्मचारियों के लिए 3 दिन के विशेष गहन पुनरीक्षण शिविर का आयोजन करेगा। इसका उद्घाटन मुख्य सचिव जी साई प्रसाद और राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी विवेक यादव करेंगे। इस शिविर में मतदाताओं के ऑनलाइन जनगणना प्रपत्र जमा करने, नए मतदाताओं के नामांकन, मृत मतदाताओं के नाम हटाने और अन्य मतदाता विवरण में सुधार किए जाएंगे। कर्मचारियों को मतदाता विवरण, नई तस्वीर, ईपीआईसी कार्ड, आधार कार्ड और आवासीय प्रमाण पत्र साथ लाना होगा। समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से कोलकाता में विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। ये कार्यक्रम डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के 2 वर्षीय आधिकारिक समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री ने एक आलेख में कहा है कि डॉ मुखर्जी का जीवन अखंड भारत के लिए उनकी अटल प्रतिबद्धता का प्रमाण है। गृह मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉ मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक और राष्ट्र की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक थे। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। फीफा में 5 बार के विश्व चैंपियन ब्राजील की राउंड 16 में कल रात नॉर्वे से 2-1 से हार के कुछ क्षणों बाद ही उन्होंने ये घोषणा की। फीफा विश्व कप के एक अन्य मैच में आज इंग्लैंड ने

0: good.
1: हमारे दिवाकालीन सभा के कार्यक्रमों की शुरुआत में नमस्कार जमशेदपुर कार्यक्रम के साथ हाजिर हैं हम। स्वागत है आप सभी श्रोताओं का इस कार्यक्रम में और आज कार्यक्रम में आपके साथ मैं हूं आपकी रेडियो सखी श्रीति। नमस्कार साथियों, हर रोज की तरह हमने आज भी अपने इस कार्यक्रम में शामिल किए हैं दिन विशेष की कुछ बातें, हमारे जिले की कुछ महत्वपूर्ण खबरें, रोचक जानकारियों के साथ गीत संगीत का मनोरंजन। तो चलिए शुरू करें अपना आज का

दोस्तों, नए आविष्कार इंसानी मेहनत को कम करते हैं, काम को तेज़ी से पूरा करने में मदद करते हैं। इंटरनेट और कंप्यूटर जैसे आविष्कारों ने दुनिया भर में जानकारी और शिक्षा तक सबकी पहुंच आसान कर दी है। लेकिन किसी भी नए आविष्कार या तकनीक के अपने फ़ायदे और नुकसान दोनों होते हैं। जैसे डिजिटल आविष्कारों और सोशल मीडिया के युग में डेटा लीक और साइबर अपराध का खतरा

लेकिन डिजिटल युग में आधी आबादी का नया डिजिटल अवतार देश की अर्थव्यवस्था की तस्वीर भी बदल रहा है। जो महिलाएं कभी घर की चार दीवारी तक सीमित थीं, वो आज स्मार्टफोन, इंटरनेट और सोशल मीडिया के सहारे सफल उद्यमी बनकर आत्मनिर्भरता और आर्थिक स्वतंत्रता की नई इबारत लिख रही हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स उनके लिए सबसे बड़े बाजार बन चुके हैं, जहां से वे अपने उत्पाद सीधे ग्राहकों तक पहुंचा रही हैं। होम बेस्ड ऑनलाइन बिजनेस के माध्यम से वो न केवल अपनी आय बढ़ा रही हैं, बल्कि दूसरे लोगों के लिए भी रोजगार के अवसर सृजित कर रही हैं। झारखंड से लेकर देश के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक महिलाओं का ये डिजिटल अवतार तेजी से विस्तार पा रहा है। सरकारी योजनाओं, आसान ऋण और बढ़ती डिजिटल साक्षरता ने इस बदलाव को नई गति दी है। ये परिवर्तन केवल आर्थिक स्वावलंबन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि महिलाओं के आत्मविश्वास, निर्णय क्षमता और सामाजिक सम्मान को भी नई ऊंचाइयां दे रहा है।

साथियों, विश्व जूनोसिस दिवस हर साल आज ही के दिन मनाया जाता है। ये दिन जूनोसिस यानी जानवरों से इंसानों में फैलने वाली बीमारियों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए महत्वपूर्ण है। रेबीज, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू जैसी बीमारियां जूनोटिक संक्रमण के उदाहरण हैं, जो इंसानी जीवन के लिए खतरनाक हो सकती हैं। 6 जुलाई 1885 को लुई पाश्चर ने पहला रेबीज टीका सफलतापूर्वक लगाया था, इसीलिए इस दिन को उनकी याद में मनाया जाता है। विश्व जूनोसिस दिवस का उद्देश्य स्वच्छता, टीकाकरण और पशु चिकित्सा सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करना है, ताकि इन बीमारियों को रोका जा सके। जनता को जागरूक करना, पालतू और जंगली जानवरों की सही देखभाल और सतर्कता ही इस चुनौती का सबसे प्रभावी उपाय है। साथियों, हम और आप बखूबी वाकिफ हैं इस बात से कि इंसानों और जानवरों की दोस्ती सदियों पुरानी है। बस थोड़ी सी बुद्धिमानी, सतर्कता, सही समय पर टीकाकरण और देखभाल इंसानों और जानवरों की दोस्ती को हमेशा

हाथी मेरे साथी। जी हाँ श्रोताओं, इसी फिल्म का गाना अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज़ में। संगीतबद्ध किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और गीत लिखा था आनंद बख्शी ने।

साथियों, आज विश्व ग्रामीण दिवस भी मनाया जा रहा है। इस दिन का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के विकास, गरीबी उन्मूलन और वहां के लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने पर ध्यान केंद्रित करना है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में ग्रामीण विकास का सीधा संबंध आर्थिक प्रगति से है। इस दिन सरकार और अलग अलग संस्थाएं जागरूकता कार्यक्रम, कार्यशालाएं और योजनाएं चलाकर लोगों को स्वावलंबी बनाने के लिए प्रेरित करती हैं। स्वच्छ जल, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, रोजगार के अवसर और टिकाऊ खेती ग्रामीण विकास के मुख्य आधार हैं। ग्रामीण क्षेत्रों का सशक्तिकरण ही समग्र राष्ट्रीय विकास की नींव है, ये हमें याद रखना होगा। साथियों, आज भी जब शहर के शोर शराबे से मन ऊब जाता है तो लोग सुकून की तलाश में गांव का रुख करते हैं। फिर चाहे वो मैदानी क्षेत्र का कोई अपना गांव हो या पहाड़ों में बसा हुआ कोई छोटा सा सुदूर ग्रामीण इलाका, जहाँ की मिट्टी में घुली हुई अपनी ही लोक परंपराओं और लोक संस्कृति से सराबोर खान पान, गीत संगीत और लोक नृत्य की खुशबू बस मन मोह लेती है।

मन्ना डे और लता मंगेशकर की आवाज़ों में मधुमती फिल्म का गाना अभी आप सुन रहे थे। संगीत सलिल चौधरी का था और गीत लिखा था शैलेंद्र ने।

श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक महान राष्ट्रवादी नेता, शिक्षाविद और भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे। उनका जन्म 6 जुलाई 1901 को कोलकाता में हुआ था। वे कलकत्ता विश्वविद्यालय के सबसे युवा कुलपति बने और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने में अग्रणी भूमिका निभाई उन्होंने। स्वतंत्रता के बाद वे पंडित नेहरू के मंत्रिमंडल में भी शामिल हुए, लेकिन कश्मीर नीति से असहमति के चलते उन्होंने इस्तीफा देकर भारतीय जनसंघ की स्थापना की। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक देश एक संविधान का नारा दिया और कश्मीर में अनुच्छेद 370 का विरोध किया। उनका निधन 23 जून 1953 को हुआ। वे आज भी राष्ट्रवाद और एकता के प्रतीक हैं। महान राष्ट्रवादी नेता, शिक्षाविद और भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी को हम नमन करते हैं।

केसरी टू। जी हाँ श्रोताओं, इसी फिल्म का गाना अभी आप सुन रहे थे, कमल हीर, मनमोहन वारिस और संगतार की आवाजों में। संगीतबद्ध किया था संगतार और शाश्वत सचदेव ने, गीतकार थे शाद कामिल और सुखविंदर अमृत। और साथियों, अब नमस्कार जमशेदपुर कार्यक्रम में वक्त है एक छोटे से अंतराल का। अंतराल के बाद दोबारा कार्यक्रम लेकर हाजिर होंगे, तो सुनते रहिए आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र FM के 102.4 MHz पर।

0: अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: मन की बात, प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
3: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली, अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
2: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें। मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
3: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।

दोस्तों, अंतराल के बाद स्वागत है एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में। और आज कार्यक्रम के साथ मैं हूं आपकी रेडियो सखी श्रीति। तो श्रोताओं, दलाई लामा तिब्बत के सर्वोच्च आध्यात्मिक नेता हैं, जिनका असली नाम तेनजिंग ग्यात्सो है। उनका जन्म 6 जुलाई 1935 को तिब्बत के ताकस्तेर गाँव में हुआ था। वे 14वें दलाई लामा हैं और विश्व भर में शांति, करुणा और अहिंसा के संदेशवाहक के रूप में जाने जाते हैं। चीन के तिब्बत पर कब्जे के बाद उन्होंने भारत में शरण ली और धर्मशाला में तिब्बती सरकार इन एक्साइल की स्थापना की। 1989 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दलाई लामा का संपूर्ण जीवन मानवीय मूल्यों और सह अस्तित्व का प्रतीक है।

श्रेया घोषाल और कुणाल गांजावाला की आवाज़ों में साया फिल्म का गाना अभी आप सुन रहे थे, अनु मलिक के संगीत निर्देशन में। गीत लिखा था सईद कादरी ने।

जगजीवन राम भारतीय राजनीति के महान नेता और समाज सुधारक थे। उनका जन्म 5 अप्रैल 1908 को बिहार के आरा जिले में हुआ था। उन्हें प्यार से बाबूजी कहा जाता था। वे दलित समुदाय की आवाज़ बने और सामाजिक समानता के लिए आजीवन संघर्ष करते रहे। जगजीवन राम ने आज़ादी के आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाई और स्वतंत्र भारत में कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों का दायित्व संभाला। वे 1977 में उप प्रधानमंत्री भी बने। उनका निधन आज ही के दिन 6 जुलाई 1986 को हुआ। उनका जीवन सामाजिक न्याय, समानता और निष्कलंक सार्वजनिक जीवन का प्रतीक है। आज उनकी पुण्यतिथि पर हम उन्हें याद कर रहे हैं और जगजीवन राम जी को शत शत नमन करते हैं।

धीरूभाई अंबानी भारत के महान उद्योगपति और रिलायंस इंडस्ट्रीज के संस्थापक थे। उनका जन्म 28 दिसंबर 1932 को जूनागढ़ गुजरात में हुआ था। उन्होंने छोटे स्तर से कारोबार शुरू कर उसे भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल किया। धीरूभाई ने भारतीय उद्योग जगत में नई सोच और बड़ा विजन लाया। उनका निधन आज ही के दिन 6 जुलाई 2002 को हुआ था। वे आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा है।

लक फिल्म का टाइटल ट्रैक अभी आप सुन रहे थे सुखविंदर सिंह और सत्या हिंदुजा की आवाज़ों में। संगीत सलीम सुलेमान का था और गीत लिखा था शब्बीर अहमद ने।

और दोस्तों, जिले में बढ़ते मलेरिया संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने पोटका, मुसाबनी, डुमरिया, घाटशिला और आसपास के प्रभावित क्षेत्रों में विशेष अभियान तेज कर दिया है। युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है मलेरिया की रोकथाम को लेकर।

एरिया के पुष्ट मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। ऐसे में शहरी क्षेत्रों में मच्छरों के प्रजनन स्थलों को समाप्त करने, जल जमाव रोकने और संवेदनशील इलाकों में नियमित फॉगिंग और कीटनाशक छिड़काव सुनिश्चित किया जा रहा है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अपील है कि लगातार बुखार, कपकपी, तेज सिर दर्द, उल्टी और बेहोशी जैसे लक्षण होने पर तुरंत सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में मलेरिया की निःशुल्क जाँच कराएं। MGM सदर अस्पताल और सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में जांच और दवा की निशुल्क व्यवस्था उपलब्ध है।

साथियों, हर साल लाखों भारतीय एक साझा उद्देश्य के साथ एकजुट होते हैं, पेड़ लगाना और हरित भविष्य में योगदान देना। वन महोत्सव के नाम से जाना जाने वाला ये राष्ट्रव्यापी अभियान, जिसे वन उत्सव या वृक्षों का त्यौहार भी कहा जाता है, भारत के सबसे महत्वपूर्ण पर्यावरण उत्सवों में से एक बन गया है। ये सिर्फ वृक्षारोपण अभियान से कहीं अधिक है, बल्कि ये जैव विविधता को बनाए रखने, जलवायु परिवर्तन से निपटने, जल संरक्षण और आजीविका को सहारा देने में वनों की महत्वपूर्ण भूमिका की याद दिलाता है। भारत को बढ़ते तापमान, वायु प्रदूषण, जैव विविधता की हानि और भूमि क्षरण जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में वन महोत्सव व्यक्तियों, स्कूलों, व्यवसायों और समुदायों के लिए आगे आने और रचनात्मक और सार्थक कार्रवाई करने का एक अवसर प्रस्तुत करता है, जो समय की मांग भी है। वन महोत्सव, जिसे अक्सर वृक्षों का त्यौहार कहा जाता है, भारत का वार्षिक वृक्षारोपण उत्सव है, जो वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। वन महोत्सव शब्द दो संस्कृत शब्दों से मिलकर बना है, वन जिसका अर्थ होता है जंगल और महोत्सव यानी भव्योत्सव। इस महोत्सव की शुरुआत सबसे पहले 1950 में तत्कालीन केंद्रीय कृषि एवं खाद्य मंत्री K.M. मुंशी द्वारा बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने और पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में वनों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए की गई थी। प्रत्येक वर्ष जुलाई के पहले सप्ताह में मनाया जाने वाला वन महोत्सव नागरिकों, शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी निकायों, गैर सरकारी संगठनों और निगमों को वृक्षारोपण करने और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक साथ लाता है। पिछले 76 वर्षों में वन महोत्सव भारत में वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण और पारिस्थितिकी बहाली के लिए सबसे बड़े जन आंदोलनों में से एक बन गया है, जो लाखों लोगों को हरित आवरण बढ़ाने और अधिक टिकाऊ भविष्य के निर्माण में योगदान करने के लिए प्रेरित करता है।

वन और वर्षा का संबंध एक दूसरे के पूरक और अटूट रिश्तों में से एक है। वन बादलों को आकर्षित करके वर्षा लाते हैं और वर्षा का जल वनों को हरा भरा और पोषित रखता है। पेड़ अपनी जड़ों से पानी सोखते हैं और वाष्पीकरण के जरिए उसे हवा में छोड़ते हैं। ये वायुमंडल में नमी बढ़ाता है और बादल बनाने में मदद करता है। घने जंगल गर्मी सोखते हैं और तापमान को कम भी करते हैं, जिससे बादलों के बरसने के लिए अनुकूल स्थिति बनती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि विशाल वन वातावरण में वायुदाब को कम करते हैं, जो नम हवाओं को समुद्र से खींचकर बारिश लाता है। वनों के पनपने और जीवित रहने के लिए पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है और वर्षा जल इसका मुख्य स्रोत है।

अभिनेत्री फिल्म का गाना अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीतबद्ध किया हुआ गाना था और गीत लिखा था आनंद बख्शी।

दोस्तों, रणवीर सिंह बॉलीवुड के सबसे ऊर्जावान और प्रतिभाशाली अभिनेताओं में से एक हैं। आज उनका जन्मदिन है। 6 जुलाई 1985 को मुंबई में उनका जन्म हुआ। रणवीर ने 2010 में फिल्म बैंड बाजा बारात से धमाकेदार डेब्यू किया और अपनी बेहतरीन अदाकारी से दर्शकों का दिल जीत लिया। उन्होंने रामलीला, बाजीराव मस्तानी, पद्मावत और गली बॉय जैसी सुपरहिट फिल्मों में यादगार किरदार निभाए हैं। रणवीर अपनी अनोखी फैशन शैली, उत्साही व्यक्तित्व और दमदार अभिनय के लिए जाने जाते हैं। खास तौर पर वे आज के युवाओं के लिए जुनून और कड़ी मेहनत का प्रतीक हैं। रणवीर को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाओं के साथ आइए आपको सुनवाते हैं उनकी अभिनीत पहली फिल्म वर्ष 2010 में आई थी, जो बैंड बाजा बारात का ये गाना।

बेनी दयाल और हिमानी कपूर की आवाज़ों में बैंड बाजा बारात फिल्म का गाना अभी आप सुन रहे थे। संगीतबद्ध किया था सलीम सुलेमान ने और गीत लिखा था अमिताभ भट्टाचार्य ने। और इसी के साथ आज का नमस्कार जमशेदपुर कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। दीजिए अपनी रेडियो सखी श्रीति को इजाज़त। नमस्कार।

0: good.
1: नमस्कार, जमशेदपुर कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है ये, FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 12 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में सुनिएगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर इंडोनेशिया जा रहे हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस यात्रा से दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी।
1: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा।

0: जाएगा। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकार्ता जाएंगे। भारत इस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के जीर्णोद्धार के प्रयासों में सहयोग कर रहा है, जो दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित करता है। जकार्ता से संदीपन दासगुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीषा।
1: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। उनकी यात्रा से भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन ने आज से 8 जुलाई तक इस सत्र का आयोजन किया है। निर्वाचन आयोग ने बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों के उपचुनावों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। नामांकन पत्र 13 जुलाई तक भरे जाएंगे और 14 जुलाई को नामांकन पत्रों की जांच होगी। मतदान 30 जुलाई को होगा। बिहार में बांकीपुर सीट पर उपचुनाव मौजूदा सांसद नितिन नवीन के इस्तीफे के कारण हो रहा है। गुजरात में मंजलपुर विधानसभा सीट योगेश भाई नारंदास पटेल के निधन के कारण तथा मध्य प्रदेश में राजेंद्र भारती की अयोग्यता के कारण दतिया सीट खाली हुई थी। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। मंदिर को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर बैठक में चर्चा होगी। समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से कोलकाता में विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। ये कार्यक्रम डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के 2 वर्षीय आधिकारिक समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री ने एक आलेख में कहा कि डॉ. मुखर्जी का जीवन अखंड भारत के लिए उनकी अटल प्रतिबद्धता का प्रमाण है। गृहमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉ. मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक और राष्ट्र की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक थे। रूस ने आज सुबह यूक्रेन की राजधानी कीव पर बैलिस्टिक मिसाइल हमला किया। ये हमला तुर्की में होने वाले महत्वपूर्ण नाटो शिखर सम्मेलन से एक दिन पहले हुआ है, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शामिल होने की उम्मीद है। यूक्रेन की वायुसेना ने कहा है कि रूस ने हमले में बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कल चेतावनी दी थी कि खुफिया जानकारी से संकेत मिले हैं कि रूस बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। फीफा विश्व कप में आज इंग्लैंड ने मेक्सिको को 3-2 से हरा दिया और क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 7 विकेट से पराजित किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

गलियों के निशान पड़े, भूल कर ही सही, एक बार तू मेरी गलियों का रुख करे। इन आँखों को कब से ये आस है, नहीं है कहीं भी तू, कहीं भी नहीं है तू, पर मेरे ख्वाबों में तू मेरे आसपास है।

कहते हैं जुबां अगर खामोश भी रहे तब भी दिलों की सदाएं दिलों तक पहुंच जाती हैं। कुछ एहसासों को बयां करने के लिए अल्फाजों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अब जिसका जिक्र ना हो मगर जिसके गीतों से ज़िंदगी गुलजार हो, जिसके ख्वाबों की खुमारी में नींदें बेजार हो, उससे भला कोई बात कोई एहसास कैसे छुप सकता है। ज़िंदगी में कुछ दर्द पाले जाते हैं क्योंकि अगर ये दर्द ना हो तो ज़िंदगी ज़िंदगी ना हो। दर्द मोहब्बत भी एक ऐसा ही दर्द है।

ये ज़िंदगी ज़िंदगी ना होती अगर तुम ना होते। यूँ तो कमी नहीं थी नज़ारों के ज़माने में, मगर इनमें इतनी दिलकशी ना होती अगर तुम ना होते। अगर ना बिछड़ते तुमसे तो कहाँ जान पाते कि मिलन से बढ़ के तुम्हारी जुदाई है। एक सदी सी लंबी ज़िंदगी हमने तुम्हारी याद में बिताई है।

जहाँ धरती आसमान के सिरे मिल जाते हों, जहाँ शब्दों की ज़रूरत न पड़े और तन्हाई की भी धड़कन ही गूंजती हो, जहाँ होश ना हो और बेहोशी भी ना हो, आवाज़ों में जहाँ सुर खुल जाते हों, इश्क के एक ऐसे मकाम पर आकर मिल, दिलों की तमाम बेताबियाँ, बेबाकियाँ और दास्तान इश्क लेकर मिल।

और इसी गाने के साथ आज का भावगीत कार्यक्रम अब बस यहीं तक। जिन फिल्मों के गाने आज आपने इस कार्यक्रम में सुने वो फिल्में थीं वेकअप सिड, खामोशी, अगर तुम ना होते और बंटी और बबली। आवाज़ें थीं इन गानों के लिए कविता सेठ, कविता कृष्णमूर्ति, लता मंगेशकर, किशोर कुमार, सोनू निगम और महालक्ष्मी अय्यर की। संगीतकार थे अमित त्रिवेदी, जतिन ललित, आर डी बर्मन और शंकर एहसान लॉय। गीतकार थे जावेद अख्तर, मजरू सुल्तानपुरी, गुलशन बावरा और गुलजार। आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है ये FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारा अगला कार्यक्रम है शास्त्रीय संगीत का, सुनवाएंगे बस।

0: पुनः प्रसारण विशेष। कुछ कहानियाँ केवल सुनी नहीं जाती, वे मन में उतरकर प्रेरणा बन जाती हैं। काली माटी की मिट्टी से आधुनिक भारत के स्वप्निल नगर तक की यात्रा, इस्पात की चमक, संस्कृति की सुगंध, विज्ञान का विश्वास, खेलों का उत्साह और इंसानियत की अनुपम पहचान। यदि आप इस अद्भुत राष्ट्रीय प्रस्तुति को सुनने से चूक गए हों या एक बार फिर उस गौरवपूर्ण यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हों, तो अवश्य सुनिए इस्पात, संस्कृति और सपनों का शहर जमशेदपुर की बहुरंगी पहचान। ये विशेष रेडियो रूपक गत 5 जुलाई को रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में देश भर के आकाशवाणी केंद्रों से प्रसारित किया गया था। अब इसका विशेष पुनः प्रसारण होगा बुधवार 8 जुलाई 2026 शाम 4 बजे आकाशवाणी जमशेदपुर के प्राइमरी चैनल FM 102.4 MHz पर। आइए सुनिए उस शहर की प्रेरक गाथा जहां इस्पात केवल कारखानों में नहीं बल्कि लोगों के सपनों और हौसलों में भी ढलता है। आकाशवाणी जमशेदपुर, आपके अपने शहर की आवाज।
1: आकाशवाणी जमशेदपुर के युववाणी कार्यक्रम में आज FM के 102.4 MHz पर शाम 5 से 5:30 तक मैं क्षमाश्री
2: और मैं सरितम ला रहे हैं सफल गाथा जगजीवन रामा की, चर्चा वित्त साक्षरता की आवश्यकता पर और कार्यस्थल पर महिलाओं के सम्मान पर। तो सुनिएगा जरूर।

आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है ये एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 12:30 हो चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। शास्त्रीय संगीत के आज के इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं पंडित राजन मिश्रा और पंडित साजन मिश्रा का ख्याल गायन राग मुल्तानी में।

राग मुल्तानी में पंडित राजन मिश्रा और पंडित साजन मिश्रा का ख्याल गायन अभी आप सुन रहे थे। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है ये, FM के 102.4 MHz पर। दिन का 1 बजने को है। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली और रांची केंद्रों से समाचारों का प्रसारण होगा। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियंतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के

के सेवन सहित वैश्विक चुनौतियों से निपटने की समूह की क्षमता को मजबूत किया है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के पांचवें स्थापना दिवस समारोह में कहा कि सबको साथ लेकर चलना ही सहकारिता है। उन्होंने कहा कि सहकारिता मंत्रालय राज्यों की मदद करने के लिए है। श्री शाह ने कहा कि कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कई क्रांतिकारी कार्य किए गए हैं। उन्होंने कहा कि आज सभी सहकारी समितियों का डेटा एक जगह उपलब्ध है। श्री शाह ने कहा कि 9 प्रमुख राष्ट्रीय स्तर की सहकारी समिति बनाई गई है।

नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूजा कुमारी। पहले मुख्य समाचार। सीआईडी ने झारखंड में मानव तस्करी पर रोक लगाने और लापता बच्चों की सुरक्षित बरामदगी के लिए बनाई मजबूत रणनीति। सभी जिलों को एक्शन प्लान लागू करने का निर्देश। पूर्वी सिंहभूम में ब्रेन मलेरिया के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग के अभियान का दिखा असर। जिले में संक्रमण की पॉजिटिविटी दर 10% से घटकर 2.6% हुई। भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान रांची को केंद्र सरकार से नैनो कण संश्लेषण के लिए विकसित अभिनव रिएक्शन वेसल्स प्रोटोटाइप का मिला पेटेंट। जमशेदपुर हत्याकांड में एसआईटी ने डीडी बार संचालक को राजस्थान से किया गिरफ्तार। अब तक कुल 9 अभियुक्तों की हुई गिरफ्तारी। और बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के असर से राज्य में लगातार हो रही बारिश। आज से 9 जुलाई तक सभी 24 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर आज रवाना हुए। रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा से भारत और उन देशों के बीच व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। प्रधानमंत्री की इंडोनेशिया यात्रा से संबंधित पेश है एक रिपोर्ट।

0: मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियंतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। बाली, मेदान, सेमारंग, सुराबाया और जकार्ता के समुदाय सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ भव्य स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। हजारों भारतीय नागरिकों और भारतीय मूल के लोगों के जुटने की उम्मीद है, जो इस यात्रा को गर्व का विषय और अपनी मातृभूमि के साथ संबंध मजबूत करने का अवसर मान रहे हैं। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकार्ता जाएंगे। भारत इस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के जीर्णोद्धार के प्रयासों में सहयोग कर रहा है, जो दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित करता है। जकार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: श्री मोदी इंडोनेशिया से ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। दोनों देशों के बीच रक्षा और सुरक्षा, व्यापार और निवेश, शिक्षा, मोबिलिटी, उभरती प्रौद्योगिकी, खेल और जनसंपर्क पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया में भारत वंशियों से भी मिलेंगे। प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के तीसरे चरण में न्यूजीलैंड के ऑकलैंड जाएंगे। इस यात्रा के दौरान आर्थिक, व्यापार और वाणिज्यिक संबंधों पर विचार विमर्श होगा। झारखंड में मानव तस्करी पर रोक लगाने और लापता लोगों, खासकर बच्चों की सुरक्षित बरामदगी के लिए सीआईडी झारखंड ने मजबूत एक्शन प्लान तैयार किया है। इसे राज्य के सभी जिलों के एसएसपी और एसपी को लागू करने के लिए भेज दिया गया है। एक्शन प्लान का उद्देश्य लापता व्यक्तियों के मामलों में शुरुआती स्तर पर ही गंभीरता से कार्रवाई करना, मानव तस्करी के मामलों को शीघ्र पहचान, पीड़ितों की सुरक्षित बरामदगी और पुनर्वास की प्रक्रिया को मजबूत बनाना है। पूर्वी सिंहभूम में ब्रेन मलेरिया के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग के विशेष अभियान का असर दिखने लगा है। 5 जुलाई की रिपोर्ट के अनुसार जिले में 4,164 लोगों की जांच में 108 मलेरिया संक्रमित मिले और पॉजिटिविटी दर घटकर 2.6% रह गई, जबकि 1 जुलाई को 3,240 संदिग्धों की जांच में 326 मरीज मिले थे और पॉजिटिविटी दर 10.1% थी। 4 दिनों में संक्रमित मरीजों की संख्या में 218 की कमी और पॉजिटिविटी दर में 7.5% अंकों की गिरावट दर्ज की गई है। गोड्डा महिला कॉलेज में पारंपरिक ज्ञान प्रणाली एवं सतत विकास लक्ष्य विषय पर कल 7वां अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार शुरू हुआ। सम्मेलन में अमेरिका, नेपाल और अफ्रीका के प्रोफेसर भी ऑनलाइन जुड़े और अपनी बात रखी। मुख्य अतिथि डॉक्टर फारूक अली ने देश की खाद्य सुरक्षा पर चिंता जताई। वहीं महिला कॉलेज की प्राचार्य प्रोफेसर सुमन लता ने कहा कि पारंपरिक ज्ञान के बिना सतत विकास संभव नहीं है।
2: हमारा जो झारखंड है वो एक तरह से यहाँ का जो जल, जंगल, जमीन और यहाँ की जो दवाएं हैं और मड़वा का खेती है, यहाँ के जो लोग हैं वो सब ये बताता है कि हम लोग सतत विकास में योगदान कर रहे हैं और बिना पारंपरिक ज्ञान के वो नहीं होगा। यहाँ के लोग उस पारंपरिक ज्ञान से विकास में योगदान कर रहे हैं।
1: बीआईटी मिश्रा आज से 10 जुलाई तक इमर्जिंग ट्रेड्स इन स्टेटिस्टिकल एंड मशीन लर्निंग विषय पर 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कर रहा है। इसका उद्देश्य आधुनिक कंप्यूटेशनल और सांख्यिकीय तकनीकों का विश्लेषण कर प्रतिभागियों की सैद्धांतिक समझ और व्यवहारिक कौशल दोनों को विकसित करना है। कार्यशाला में देश विदेश के विशेषज्ञ अत्याधुनिक तकनीकों और उनके वास्तविक दुनिया में अनुप्रयोगों पर विचार रखेंगे। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNewsRanchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। ICAR भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान रांची को केंद्र सरकार से नैनो कण संश्लेषण के लिए विकसित अभिनव रिएक्शन वेसल्स प्रोटोटाइप का डिजाइन पंजीकरण प्राप्त हुआ है। यह पायलट स्तर की रिएक्शन प्रणाली, नैनो उर्वरक, नैनो कीटनाशक और अन्य कृषि नैनो उत्पाद

0: उत्पादों के उत्पादन के लिए विकसित की गई है। संस्थान के निदेशक ने इसे उपलब्धि पर अनुसंधान दल को बधाई दी है। झारखंड समेत समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर राजधानी रांची में भी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। संस्कृति मंत्रालय कोलकाता में विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री शामिल होंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दोपहर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती समारोह में शामिल होने के लिए कोलकाता पहुंचेंगे। वे न्यू टाउन स्थित इको पार्क जाएंगे, जहां वे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125 फीट ऊंची प्रतिमा के शिलान्यास समारोह में भाग लेंगे। दोपहर बाद भवानीपुर स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पैतृक निवास पर आयोजित कार्यक्रम में अमित शाह उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करके श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: जमशेदपुर में हिमांशु सिंह हत्याकांड में एसआईटी ने डीडी बार संचालक नीरज सिंह को राजस्थान से लौटते समय गिरफ्तार किया है। इस मामले में डीडी बार के मैनेजर विजय महानंद सहित अमित लोहार और लखिंदर को भी गिरफ्तार किया गया है। अब तक कुल 9 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। वही मुख्य आरोपी विश्वनाथ मंडल की तलाश जारी है। रामगढ़ जिले के भुरकुंडा ओपी क्षेत्र में गैंगस्टर प्रिंस खान के सदस्य के साथ आज तड़के पुलिस की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में अपराधी शिवराम उर्फ शिवा घायल हो गया। रामगढ़ पुलिस अधीक्षक मुकेश लुनायत ने बताया कि शिवराम उर्फ शिवा प्रिंस खान गिरोह से जुड़ा हुआ है और पुलिस को इसकी लंबे समय से तलाश थी।
2: के निवासी अपराध कर्मी शिवराज उर्फ शिवा कुछ संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्त है। यह हाल फिलहाल में ही जेल से बाहर निकल कर आया है। इसी क्रम में रांची और धनबाद पुलिस के माध्यम से भी सूचना प्राप्त हुई कि यह किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में है।
3: संयुक्त छापेमारी में अपराध कर्मी शिवराज उर्फ शिवा को हिरासत में लिया गया।
0: घरेलू शेयर बाजार में सेंसेक्स 494 अंक बढ़कर 78,258 पर और निफ्टी 149 अंक बढ़कर 24,419 पर कारोबार कर रहा है। राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,37,500 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,45,000 रुपए प्रति किलो है। बंगाल की खाड़ी में बने डीप डिप्रेशन के असर से राज्य में लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज से 9 जुलाई तक सभी 24 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, लातेहार, लोहरदगा, गुमला और रांची समेत 8 जिलों में भारी बारिश, तेज हवा, वज्रपात और जल भराव की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों से खुले स्थानों, पेड़ों और बिजली के खंभों के पास जाने से बचने तथा किसानों को सतर्कता बरतने की सलाह दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सीआईडी ने झारखंड में मानव तस्करी पर रोक लगाने और लापता बच्चों की सुरक्षित बरामदगी के लिए बनाई मजबूत रणनीति। सभी जिलों को एक्शन प्लान लागू करने का निर्देश। पूर्वी सिंहभूम में ब्रेन मलेरिया के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग के अभियान का दिखा असर। जिले में संक्रमण की पॉजिटिविटी दर 10% से घटकर 2.6% हुई। भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान रांची को केंद्र सरकार से नैनो कण संश्लेषण के लिए विकसित अभिनव रिएक्शन वेसल्स प्रोटोटाइप का मिला पेटेंट। जमशेदपुर हत्याकांड में एसआईटी ने डीडी बार संचालक को राजस्थान से किया गिरफ्तार। अब तक कुल 9 अभियुक्तों की हुई गिरफ्तारी। और बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के असर से राज्य में लगातार हो रही बारिश। आज से 9 जुलाई तक सभी 24 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

आकाशवाणी के दिल्ली और रांची केंद्रों से समाचारों का प्रसारण हो रहा था। अभी एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र, और इस समय आप हमारी दिवाकालीन सभा

0: नमस्कार जमशेदपुर। नमस्कार जमशेदपुर का एक अलग अंदाज,
1: ज्ञान विज्ञान
2: इतिहास के पन्नों से,
1: सेहत और बॉलीवुड की बातें,
0: मौसम का मिजाज,
1: अपने शहर की खबरें,
2: बातों मुलाकातों के साथ
0: सुरीला मनोरंजन
1: और भी बहुत कुछ।
0: आप सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में
2: दिन के 11:05 से 12 तक
1: आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से।
0: नमस्कार जमशेदपुर।
3: सुनिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश, हर मंगलवार रात 10 से 11 तक FM के 102.4 MHz पर। और हाँ, अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवाने के लिए हमें कॉल करें हर बुधवार दोपहर 12:30 से 1 के बीच। हमारा फोन नंबर है 0657-296-0445। हेलो आपकी फरमाइश, संगीत वही जो आप चाहें।
4: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
5: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
4: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
5: अब घर दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
4: डायल कीजिए 8700014242।
5: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
0: पुनः प्रसारण विशेष, कुछ कहानियाँ केवल सुनी नहीं जाती, वे मन में उतर कर प्रेरणा बन जाती हैं। काली माटी की मिट्टी से आधुनिक भारत के स्वप्निल नगर तक की यात्रा, इस्पात की चमक, संस्कृति की सुगंध, विज्ञान का विश्वास, खेलों का उत्साह और इंसानियत की अनुपम पहचान। यदि आप इस अद्भुत राष्ट्रीय प्रस्तुति को सुनने से चूक गए हो या एक बार फिर उस गौरवपूर्ण यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हो, तो अवश्य सुनिए इस्पात संस्कृति और सपनों का शहर जमशेदपुर की बहुरंगी पहचान। ये विशेष रेडियो रूपक गत 5 जुलाई को रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में देश भर के आकाशवाणी केंद्रों से प्रसारित किया गया था। अब इसका विशेष पुनः प्रसारण होगा बुधवार 8 जुलाई 2026 शाम 4 आकाशवाणी जमशेदपुर के प्राइमरी चैनल FM 102.4 MHz पर। आइए सुनिए उस शहर की प्रेरक गाथा जहां इस्पात केवल कारखानों में नहीं बल्कि लोगों के सपनों और हौसलों में भी ढलता है। आकाशवाणी जमशेदपुर, आपके अपने शहर की आवाज।
6: हेलो डॉक्टर,
7: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम।
6: हेलो डॉक्टर,
7: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 से FM 102.4 MHz पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-296-0445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657-296-0445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ।
6: हेलो डॉक्टर,
8: आकाशवाणी जमशेदपुर के युववाणी कार्यक्रम में आज FM के 102.4 MHz पर शाम 5 से 5:30 तक मैं क्षमाश्री
9: और मैं सरितम ला रहे हैं सफल गाथा जगजीवन रामा की चर्चा, वित्त साक्षरता की आवश्यकता पर और कार्यस्थल पर महिलाओं के सम्मान पर, तो सुनिएगा जरूर।

कुछ आवश्यक संदेशों के बाद हाजिर हैं हम कार्यक्रम फिल्म संगीत के साथ। स्वागत है इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का, और इस संगीतमय सफर के हम सफर मैं हूं आपकी रेडियो ज़की श्रीति। नमस्कार साथियों,

श्रोताओं, अत्यंत दुखी मन से हम आपको बताना चाह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की लोक कला पंडवानी को देश और दुनिया में पहचान दिलाने वाली पद्म विभूषण डॉक्टर तीजन बाई का निधन हो गया है। वो 70 वर्ष की थी। एम्स रायपुर के अनुसार तीजन बाई ने रविवार सुबह करीब 3:15 पर अंतिम सांस ली। वो पिछले कुछ समय से बीमार थी और अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। छत्तीसगढ़ के अटारी गांव में जन्मी तीजन बाई ने कम उम्र में ही पंडवानी गायन शुरू कर दिया था। महाभारत की कथाओं को अपनी दमदार आवाज, अभिनय और अनूठी प्रस्तुति के साथ मंच पर जीवंत करने की उनकी शैली ने इस लोक कला को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। अपने लंबे कलात्मक सफर में उन्होंने देश और विदेश में अनेक प्रस्तुतियां दी। भारतीय लोक कला में उनके योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। भारतीय लोक कला में उनके योगदान के लिए हम उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए नमन करते हैं।

राजधानी एक्सप्रेस फिल्म का ये प्रार्थना गीत अभी आप सुन रहे थे मिलीजुली आवाज़ों में। आइए अब आपको फिल्म संगीत कार्यक्रम का अगला गाना सुनवाते हैं रांझना फिल्म से। आवाज़ें हैं सुखविंदर सिंह और साथियों की। ए आर रहमान का संगीतबद्ध किया हुआ गाना है। गीत लिखा है इरशाद कामिल ने।

अभी आप सुन रहे थे सोनू निगम की आवाज़ में अग्निपथ फिल्म का गाना। अजय अतुल का संगीत निर्देशन था, गीत लिखा था अमिताभ भट्टाचार्य ने। आइए अब आपको सुनवाते हैं अगला गाना सुर फिल्म से। महालक्ष्मी अय्यर की आवाज़ में है ये गाना, MM क्रीम का संगीत निर्देशन है और निदा फाजली का लिखा हुआ गीत।

1920 एविल रिटर्न्स फिल्म का गाना अभी आप सुन रहे थे महालक्ष्मी अय्यर की आवाज़ में। चिरंतन भट्ट का संगीत निर्देशन था और शब्द रचना थी शकील आजमी की। आइए अब आपको सुनवाते हैं हमारी अधूरी कहानी फिल्म का टाइटल ट्रैक अरिजीत सिंह की आवाज़ में। रश्मि सिंह विराग मिश्रा का लिखा हुआ गीत है, संगीतबद्ध किया है जीत गांगुली ने।

0: कंज्यूमर प्रोटेक्शन प्रायोरिटीज। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज दिल्ली।
1: In Ukraine, at least 10 people were killed and 46 others were injured after Russia launched a ballistic missile attack on the capital Kiev this morning. This came a day before a key NATO summit in Turkey, which US President Donald Trump is expected to attend. Ukraine's Air Force said Russia used ballistic missiles, cruise missiles and drones in the attack. England stormed into the FIFA World Cup quarterfinals with a dramatic 3-2 victory over Mexico at the Azteca Stadium in Mexico City today. In another match, Brazil's veteran player Neymar Jr. announced his retirement from international football after the 5-time world champions suffered a stunning 2-1 defeat against Norway in FIFA World Cup round of 16 last night. For Brazil, the defeat marked a 7th consecutive World Cup knockout loss to European opposition. In Wimbledon tennis, Serbia's Novak Djokovic defeated Roman Safiulin of Russia to reach the men's singles quarterfinals last night. Djokovic will next face either Felix Auger-Aliassime or Alejandro Davidovich Fokina in the quarterfinals. In another encounter, Naomi Osaka produced one of the biggest upsets of Wimbledon 2026, defeating world number one Aryna Sabalenka 6-2, 7-6 to reach her first quarterfinal. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi embarks on 6-day visit to Indonesia, Australia and New Zealand, says it will strengthen India's Act East policy as well as outlook towards free and open Indo-Pacific. Minister for Cooperation Amit Shah says cooperative movement is entering a new phase of expansion through reforms, digitization and professional management. Heavy rain affects normal life in Mumbai metropolitan region. Traffic disrupted on Mumbai Pune Expressway due to landslides. At least 10 people killed and over 46 injured in Kiev after Russia launches ballistic missile attack. England storm into FIFA World Cup quarterfinals with dramatic 3-2 victory over Mexico. And in Wimbledon tennis, Novak Djokovic beats Roman Safiulin of Russia to reach men's singles quarterfinals. Naomi Osaka also reaches women's singles quarterfinals by defeating world number one Aryna Sabalenka. With that, we end the midday news.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना। उन्होंने कहा, यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और मजबूत होगा। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से सहकारिता आंदोलन विस्तार के नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सरकार ने कहा, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड आभा से जोड़े गए। मुंबई में तेज वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त, भूस्खलन से मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर यातायात बाधित, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस के बैलिस्टिक मिसाइल हमले में 10 लोगों की मौत और 46 से ज्यादा लोग घायल। फीफा विश्व कप में इंग्लैंड ने मेक्सिको को रोमांचक मुकाबले में 3-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। और विंबलडन टेनिस में नोवाक जोकोविच पुरुष सिंगल्स और नाओमी ओसाका महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर इंडोनेशिया जा रहे हैं। एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रेमबनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकर्ता जाएंगे। भारत इस यूनेस्को विश्व धरोहर

0: स्थल के जीवनोद्धार के प्रयासों में सहयोग कर रहा है, जो दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित करता है। जकार्ता से संदीपन दासगुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीषा।
1: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। उनकी यात्रा से भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और मजबूत होगा। गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज कहा कि सहकारी आंदोलन सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से विस्तार के नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सहकारिता मंत्रालय के पांचवें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर की 9 प्रमुख सहकारी समिति बनाई गई है।
2: सहकारिता मंत्रालय के इनिशिएटिव से कुल 9 राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली सहकारी समिति बनाकर देश से लेकर ग्राम तक ये 9 क्षेत्रों में सहकारिता मंत्रालय को एक माला में पिरोने का काम हमने किया है।
1: श्री शाह ने किसानों से जैविक कृषि उत्पादों का उत्पादन बढ़ाने और रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का उपयोग कम करने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि सहकारिता मंत्रालय पिछले 5 वर्षों से सहकारिता के माध्यम से समृद्धि के मंत्र का पालन कर रहा है, जिससे मंत्रालय द्वारा लाखों लोगों के जीवन में बदलाव आया है। श्री शाह ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में सहकारी प्रणाली को आधुनिक, पारदर्शी, प्रौद्योगिकी सक्षम तथा प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में सराहनीय कार्य किया गया है।
2: हमने कृषि ऋण, डेयरी, उर्वरक वितरण और ग्रामीण सेवाएं, ये सभी को प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम किया है। सेकेंडरी और टर्सरी क्षेत्रों में भी उसको जोड़ने का काम किया है। भंडारण, उत्पादन, एक्सपोर्ट, जैविक उत्पादन, परंपरागत बीजों का उत्पादन, ज्यादा उत्पादन देने वाले बीजों का निर्माण, डिजिटल सेवाएं, बैंकिंग, मोबिलिटी, लॉजिस्टिक और हरित ऊर्जा, ये सबको एक माला में पिरोने का काम ये 5 साल में किया है।
1: ब्रिक्स देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक आज गुवाहाटी में शुरू हो गई है। 2 दिन की इस बैठक का आयोजन गृह मंत्रालय के अंतर्गत स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने किया है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के महानिदेशक अनुराग गर्ग ने कहा कि ब्रिक्स के विस्तार ने मादक पदार्थों की तस्करी और मादक द्रव्यों के सेवन सहित वैश्विक चुनौतियों से निपटने की समूह की क्षमता को मजबूत किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड, 93 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आभा से जोड़े गए हैं। ये देश की एकीकृत डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति है। आभा आधार कार्ड की तरह 14 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है, जो एक व्यक्ति को व्यापक स्वास्थ्य प्रणाली से सुरक्षित रूप से जोड़ती है। एक रिपोर्ट।
3: यह प्रणाली मरीजों को डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्रदान करती है। इस नेटवर्क के माध्यम से रोगी संपूर्ण चिकित्सा इतिहास के साथ बीमाकर्ताओं, स्वास्थ्य सुविधाओं, डॉक्टरों और अन्य सेवाओं से जुड़ सकते हैं। सरकार का लक्ष्य है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के माध्यम से देश के सभी मरीजों और सभी स्वास्थ्य सुविधाओं को एक ही डिजिटल नेटवर्क से जोड़ा जाए। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए पूर्णतः डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड उपलब्ध कराना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा NEET UG 2026 की आवेदन फीस वापसी के लिए बैंक खाता विवरण अपडेट करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जुलाई कर दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में NTA ने बताया कि जिन उम्मीदवारों ने अपने बैंक खाता विवरण की पुष्टि कर दी है, उनके लिए रिफंड प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब तक केवल 8,29,510 उम्मीदवारों ने ही अपने बैंक विवरण में सुधार या अपडेट किया है। निर्वाचन आयोग ने बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों के उपचुनावों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। नामांकन पत्र 13 जुलाई तक भरे जाएंगे और 14 जुलाई को नामांकन पत्रों की जांच होगी। मतदान 30 जुलाई को होगा। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा की है। ये सीटें राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबराई के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। अधिसूचना कल जारी की जाएगी, जबकि नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। नामांकन पत्रों की जांच 15 जुलाई को होगी, मतदान 24 जुलाई को और मतगणना भी उसी दिन होगी। पुरी में विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा की तैयारी अंतिम चरण में है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी सभी विभागों को वार्षिक उत्सव के लिए सभी व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
4: दुनिया भर में मशहूर पुरी की रथ यात्रा जल्द ही होने वाली है। इसे देखते हुए उड़ीसा सरकार ने पुरी में इस भव्य उत्सव के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक प्रशासनिक इंतजाम किए हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि वे विभागों के बीच बेहतरीन तालमेल और हर इंतजाम को बहुत सावधानी से लागू करके रथ यात्रा का बिना किसी गड़बड़ी सुरक्षित और घटना मुक्त बनाए। आज सुबह पुरी में रथ यात्रा समन्वय समिति की आखिरी बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मांझी ने इस सालाना रथ उत्सव को उड़ीसा के समृद्ध आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का एक स्थायी प्रतीक बताया, जो दुनिया भर से लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। उन्होंने महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सम्मान पर खास जोर दिया और भीड़ प्रबंधन, कई स्तरों वाली सुरक्षा, ट्रैफिक कंट्रोल और दूसरी जरूरी नागरिक सेवाओं की तैयारियों का जायजा लिया। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर। जगन्नाथ
1: इस बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस वर्ष भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए 300 से अधिक विशेष रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी।
5: पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का पावन पर्व है, उसमें 300 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी और आने वाले समय में केरलम में ओनम के फेस्टिवल के उपलक्ष्य में 100 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।
1: महाराष्ट्र के अधिकतर हिस्सों में लगातार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। भूस्खलन से मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर यातायात बाधित है। मुंबई और कोंकण क्षेत्र में बाढ़ और भूस्खलन से इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। सड़क, रेल और हवाई यातायात भी प्रभावित है। पूरे राज्य में अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं। अधिकारियों ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने SDRF में स्थिति की समीक्षा की और सभी अधिकारियों को त्वरित समन्वित कार्रवाई के निर्देश दिए। मुंबई बृहन नगर पालिका की महापौर ऋतु तावड़े ने बताया है कि मोबाइल मैसेज के माध्यम से सरकार समय समय पर अलर्ट जारी कर रही है।
6: बहुत ही बड़ी बारिश और उसके साथ में हवा का वेग जो है और उसी के साथ में समुन्द्र में जो हाई टाइड चल रही है, ये तीनों के वजह से रेड अलर्ट लोगों को दिया जा रहा है। आधे आधे घंटे में हम लोग पूरी इन्फॉर्मेशन मुंबई करके लोगों के मैसेज में भेजने का काम कर रहे हैं। 1916 की नंबर जो है उसको कार्यान्वित किए।
1: उधर गुजरात में पिछले 24 घंटों में मूसलाधार वर्षा हुई है, जिससे सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तेज बारिश के कारण अधिकारियों ने 6 प्रमुख बांधों को हाई अलर्ट पर रखा है। बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। मछुआरों को 9 जुलाई तक अरब सागर में न जाने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भारी वर्षा और कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कहा है कि अगले 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों में से गुजरात, हरियाणा और पंजाब के कुछ भागों के साथ राजस्थान में आगे बढ़ने की संभावना है। वहीं आज असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में तेज वर्षा की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर आज सुबह रूस के बैलिस्टिक मिसाइल हमले में 10 लोग मारे गए और 46 घायल हुए हैं। ये हमला तुर्की में होने वाले महत्वपूर्ण नाटो शिखर सम्मेलन से एक दिन पहले हुआ है, जिसमें अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शामिल होने की उम्मीद है। यूक्रेन की वायुसेना ने कहा है कि रूस ने हमले में बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल किया। पोदोल्स्की जिले में एक आवासीय भवन ढह गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कल चेतावनी दी थी कि खुफिया जानकारी से संकेत मिले हैं कि रूस बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अली खामनेई की अंतिम यात्रा राजधानी तेहरान में दो दिवसीय सार्वजनिक अंतिम दर्शन के बाद शुरू हुई, जिसमें भारी जनसमूह उमड़ पड़ा। खामनेई और युद्ध में मारे गए उनके परिवार के अन्य सदस्यों के ताबूतों को एक ट्रक में ले जाया जा रहा है। फीफा विश्व कप में आज इंग्लैंड ने मेक्सिको को 3-2 से हरा दिया और क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। 5 बार के विश्व चैंपियन ब्राजील की राउंड 16 में कल रात नॉर्वे से 2-1 से हार का सामना करना पड़ा। विंबलडन टेनिस में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने रूस के रोमन सफ्योलिन को हराकर पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। इसके साथ जोकोविच ने ऑल इंग्लैंड क्लब में अपना 106वां सिंगल्स खिताब जीता है। क्वार्टर फाइनल में जोकोविच का सामना फेलिक्स आगर एलियासिमे या एलेजांद्रो डेविडोविच फोकिना से होगा। महिला सिंगल्स में करीना मुखोवा ने अपने करियर में तीसरी बार विंबलडन क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। एक अन्य मुकाबले में नाओमी ओसाका ने आरेना सबालेंका को हराकर ऑल इंग्लैंड क्लब में अपने पहले क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना। उन्होंने कहा, यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और मजबूत होगा। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से सहकारिता आंदोलन विस्तार के नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सरकार ने कहा, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड आभा से जोड़े गए। मुंबई में तेज वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त। मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट। और फीफा विश्व कप, इंग्लैंड ने मेक्सिको को रोमांचक मुकाबले में 3-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से मिड डे न्यूज़ और दोपहर समाचार अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के 2:30 हुए हैं। एक बार फिर से गीत संगीत का सिलसिला यानी फिल्म संगीत का कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं। हम सुनवाएंगे थोड़ी ही देर में

0: पुनः प्रसारण विशेष। कुछ कहानियाँ केवल सुनी नहीं जाती, वे मन में उतर कर प्रेरणा बन जाती हैं। काली माटी की मिट्टी से आधुनिक भारत के स्वप्निल नगर तक की यात्रा, इस्पात की चमक, संस्कृति की सुगंध, विज्ञान का विश्वास, खेलों का उत्साह और इंसानियत की अनुपम पहचान। यदि आप इस अद्भुत राष्ट्रीय प्रस्तुति को सुनने से चूक गए हों या एक बार फिर उस गौरवपूर्ण यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हों, तो अवश्य सुनिए इस्पात, संस्कृति और सपनों का शहर जमशेदपुर की बहुरंगी पहचान। ये विशेष रेडियो रूपक गत 5 जुलाई को रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में देश भर के आकाशवाणी केंद्रों से प्रसारित किया गया था। अब इसका विशेष पुनः प्रसारण होगा बुधवार 8 जुलाई 2026 शाम 4 बजे आकाशवाणी जमशेदपुर के प्राइमरी चैनल FM 102.4 MHz पर। आइए सुनिए उस शहर की प्रेरक गाथा जहां इस्पात केवल कारखानों में नहीं बल्कि लोगों के सपनों और हौसलों में भी ढलता है। आकाशवाणी जमशेदपुर, आपके अपने शहर की आवाज।
1: आकाशवाणी जमशेदपुर के युववाणी कार्यक्रम में आज FM के 102.4 MHz पर शाम 5 से 5:30 तक मैं क्षमाश्री
2: और मैं सरितम ला रहे हैं सफल गाथा जगजीवन रामा की, चर्चा वित्त साक्षरता की आवश्यकता पर और कार्यस्थल पर महिलाओं के सम्मान पर। तो सुनिएगा जरूर।

कुछ आवश्यक संदेश अभी आप सुन रहे थे। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। फिल्म संगीत के कार्यक्रम के साथ हाजिर हैं हम। स्वागत है इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का। कार्यक्रम के साथ मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट श्रीति। नमस्कार साथियों, कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं कला फिल्म के गाने से। सिरिशा भगवतुल्ला की आवाज़ में है ये गाना। शब्द रचना है कौसर मुनीर की और संगीत बद किया है अमित त्रिवेदी ने। आइए सुनते हैं।

अनुराधा पौडवाल और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ों में, निखिल विनय के संगीत निर्देशन में योगेश का लिखा हुआ गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म चोर और चांद से। आइए अब आपको सुनवाते हैं मेरे यार की शादी है फिल्म का ये गाना। संगीत जीत प्रीतम का है, गीत लिखा है जावेद अख्तर ने और आवाज़ है सोनू निगम, अलका याग्निक और उदित नारायण।

0: वर्षों में सहकारी प्रणाली को आधुनिक, पारदर्शी और प्रौद्योगिकी सक्षम और प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में सराहनीय कार्य किया गया है।
1: सहकारिता मंत्रालय के इनिशिएटिव से कुल 9 राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली सहकारी समिति बनाकर देश से लेकर ग्राम तक ये 9 क्षेत्रों में सहकारिता मंत्रालय को एक माला में पिरोने का काम हमने किया है।
0: भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर आज झारखंड सहित पूरे देश में उन्हें याद किया जा रहा है। इस अवसर पर रांची स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने डॉक्टर मुखर्जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके बताए राष्ट्र निर्माण के मार्ग पर चलने का संकल्प दोहराया।
2: पूरा देश डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की 125वीं जयंती मना रहा है। इस बारिश में भी हम ऐसे अपने प्रणेता जिनके मंत्र से हम सब ऊर्जा मिलती है, क्योंकि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुनिया के सबसे यंगेस्ट कुलपति रहे। मात्र 33 साल में कोलकाता विश्वविद्यालय के कुलपति बने और नेशन फर्स्ट, वही भाव हमेशा रहा है।
0: उधर हजारीबाग के सांसद सेवा कार्यालय में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जयंती समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर सांसद मनीष जायसवाल और सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। सांसद जायसवाल ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी का जीवन राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए समर्पित था, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में साकार किया जा रहा।

0: कथित शराब घोटाला मामले में पूर्व वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के बेटे रोहित उरांव आज रांची स्थित ईडी कार्यालय में पूछताछ के लिए उपस्थित हुए हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। इसी मामले में ईडी ने पूर्व मंत्री रामेश्वर उरांव को भी कल पूछताछ के लिए तलब किया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने आज जामताड़ा में बीर बेंदिया फोरलेन पुल का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लेते हुए अधिकारियों को गुणवत्ता के साथ काम जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि इस पुल के बनने से क्षेत्र की कनेक्टिविटी मजबूत होगी और स्थानीय लोगों को आवागमन में बड़ी सुविधा होगी।
1: मैं निरीक्षण करने के लिए आया हूँ। वर्षों पुरानी मांग थी यहाँ। लोग कई बार जब से मैं चुनाव जीता हूँ तब से मांग कर रहे थे कि सर पुल बना दे, लेकिन कुछ टेक्निकल बातें थी। एक हादसा भी हुआ जिसमें 14 लोगों की जान चली गई, तो वो दर्दनाक हादसा था। उस समय हमने कहा था कि नहीं, हम अपने एरिया में जो जान गई उस पर सच्ची श्रद्धांजलि देंगे। पुल सेंक्शन हुआ और 95% पुल बन के तैयार हो गया है।
0: डिजिटल इंडिया अभियान के तहत जमशेदपुर प्रधान डाकघर में स्पीड पोस्ट सेल्फ बुकिंग कियोस्क की शुरुआत हुई है। अब ग्राहक बिना लाइन में लगे पार्सल का वजन पता दर्ज कर यूपीआई या कार्ड से स्वयं ऑनलाइन भुगतान कर सकेंगे। वरीय डाकपाल सुधीर कुमार ने कहा कि इस पहल से डाक सेवाएं अधिक तेज, पारदर्शी और सुविधाजनक बनेंगी।
2: इस मशीन का खास बात है कि कोई भी पब्लिक कस्टमर इसमें आकर स्पीड पोस्ट आर्टिकल बुक कर सकता है। 500 ग्राम तक का आर्टिकल आराम से बुक हो जाएगा। इसमें ऑनलाइन पेमेंट की भी सुविधा उपलब्ध है और 30 सेकंड से 1 मिनट में एक आर्टिकल आराम से बुक हो जाएगा। अलग तरह का सेवा जो हम लोग शुरू किए हैं, इससे ग्राहकों को काफी सुविधा होगी।
0: मौसम। रांची, धनबाद और बोकारो सहित राज्य के 14 जिलों में अगले 3 घंटों में बादल गर्जन और वज्रपात के साथ हल्की से मध्यम दर्जे की वर्षा की संभावना है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने तथा किसानों को खेतों में न जाने की अपील की है। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा।

आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रादेशिक समाचार अभी आप सुन रहे थे। एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 3 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित शैक्षिक कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले सुविचार जो हमें भेजा है यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़ से और विनोद खड़ से जी ने। लिखते हैं,
2: वक्त का काम तो है गुजरना, बुरा है तो सब्र करो, अच्छा है तो शुक्र करो।
1: बहुत सुंदर विचार आपका, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
2: रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से क्लेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू, शुभम और सेजल साहू।
1: और पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन और पराग टेलर।
2: बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता, डिंपल देवांगन और दुर्गा चौक रायगढ़ से गेंदलाल, श्रीवास, संतोष, श्रीवास, शिव कुमारी और रामदुलारी।
1: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा लिखते हैं, सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी।
2: देश एवं विदेश में सुने जाने वाला एकमात्र कार्यक्रम उमंग ही है, जिसे सुनकर मनोरंजन होता है और बहुमूल्य जानकारी का खजाना छिपा होता है। हर आयु के लोगों के लिए इस कार्यक्रम में कुछ न कुछ जरूर होता है।
1: हम ये भी आशा करते हैं कि उमंग कार्यक्रम इसी तरह से आगे भी प्रसारित होगा। उमंग कार्यक्रम में कहानी चिड़िया की बच्ची सुनवाई गई, बेहद पसंद आई, आपका आभार। और अगला संदेश हमें मिला है जिला तहसील ठियोग शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी का।
2: संदेशों के लिए धन्यवाद। और अब जानते हैं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर।
1: तो हमारा पहला प्रश्न था कि भारत को और किन किन नामों से जाना जाता है और इसका संवैधानिक नाम क्या है।
2: इसका उत्तर है साथियों, भारत को इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यवर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष इत्यादि नामों से जाना जाता है, लेकिन इसे संवैधानिक रूप से भारत और इंडिया के नाम से जाना जाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा।
1: हमारा दूसरा प्रश्न था, कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं।
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, कोयला पेड़ों और वनस्पतियों से बना है, पेड़ों और वनस्पतियों में जीवन होता है, इसलिए इसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं।
1: और अब सुनिए हमारा तीसरा प्रश्न, हमने आपसे पूछा था सोने को स्टार डस्ट क्यों कहते हैं।
2: इसका उत्तर है साथियों, सुपरनोवा या बड़े बड़े तारों के टकराने या फटने से जो धूल उत्पन्न हुई उससे सोना बना, इसलिए इसे स्टार डस्ट कहते हैं।
1: और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न जो हमने आपसे पूछा था, हमारा प्रश्न था डायमंड सीड किसे कहते हैं।
2: डायमंड सीड छोटे से प्राकृतिक हीरे को कहते हैं, जिसकी नकल करके कृत्रिम हीरे बनाए जाते हैं।
1: और हमारा अंतिम प्रश्न था, सिलिका और सिलिकॉन में क्या अंतर है।
2: सिलिका से एक विशेष वैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन निकालने पर जो तत्व प्राप्त होता है उसे सिलिकॉन कहते हैं।
1: तो श्रोताओं, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। और अब सुनिए आज का प्रश्न, हमारा आज का प्रश्न है, कंगारू के कितने पैर होते हैं।
2: 8800440559। और हमारी ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़ी अच्छी तरह से प्रश्नोत्तरी में प्रतिभाग किया। आइए अब सुनते हैं उमंग कार्यक्रम का मासिक संस्करण श्रोता संवाद, विषय है मनोदर्पण। स्वागत है आप सभी श्रोता मित्रों का उमंग रेडियो कार्यक्रम के मासिक संस्करण श्रोता संवाद में। मैं हूं आपका मित्र अजीत। नमस्कार श्रोताओं। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि श्रोता संवाद में हम हर महीने चर्चा करते हैं शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार और NCERT की संयुक्त पहलों के बारे में। तो इस क्रम में आज हमारे स्टूडियो में विशेषज्ञ के रूप में उपस्थित हैं प्रोफेसर विनोद कुमार शनवाल। आपको बता दें कि प्रोफेसर विनोद कुमार शनवाल NCERT के शैक्षिक मनोविज्ञान और शिक्षा आधार विभाग में मनोदर्पण प्रकोष्ठ के प्रभारी हैं। तो डॉक्टर साहब, अपने श्रोताओं की ओर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं।
3: ये धन्यवाद, सभी को नमस्कार।
1: श्रोताओं, आज का हमारा विषय बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि आज हम चर्चा करेंगे विशेषकर विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य पर, और साथ ही साथ हमारी चर्चा के केंद्र में रहेंगे शिक्षक और अभिभावक भी। तो डॉक्टर शनवाल, सबसे पहले मेरा अनुरोध है, हमारे श्रोताओं को मनोदर्पण के बारे में कुछ जानकारी दीजिए।
3: जी धन्यवाद। देखिए, मनोदर्पण एक भारत सरकार की आत्मनिर्भर पहल के अंतर्गत शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है
1: जी,
3: और इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं अभिभावकों के मानसिक स्वास्थ्य एवं मनोसामाजिक सहायता उपलब्ध कराने से संबंधित है
1: जी,
3: जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की पहलें हम लोग करते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख जो हमारी पहल है कि हम सुबह 8 बजे से लेकर के शाम के 8 बजे तक 12 घंटे का टेली काउंसलिंग हेल्पलाइन हम अभिभावकों को, विद्यार्थियों को और शिक्षकों को उपलब्ध कराते हैं।
1: जी,
3: हमारी जो टेली हेल्पलाइन है इसका नंबर है 8448440632। 12 घंटे के अंतराल में विद्यार्थी, अभिभावक और शिक्षक कभी भी किसी भी समस्या को लेकर के हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे जो काउंसलर हैं वो 12 घंटे के लिए उपलब्ध रहते हैं। इसके अलावा हमारा जो दूसरा जो कार्यक्रम है वो होता है वेबिनार। वेबिनार में जैसे आपको मैंने बताया कि हमारी काउंसलिंग सर्विसेज है, काउंसलिंग सर्विसेज से जो हमें ट्रेंड्स मिलते हैं, जैसे हमारे शिक्षक साथी या अभिभावक या विद्यार्थियों की जो समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं को लेकर के हम आगे के लिए एक सहयोग सत्र करते हैं। सहयोग सत्र हमारा प्रतिदिन

0: को बुलाते हैं, अलग अलग टॉपिक्स को लेकर के हम डिस्कशन करते हैं, जिससे कि हमारे विद्यार्थियों को किसी प्रकार की समस्या ना हो और जो भी उनके जो कंसर्न्स रहते हैं या जो चैलेंजेस रहते हैं उसका निदान उन्हें समय समय पर मिलता रहे
1: जी।
0: इसके अलावा जो कार्यक्रम रहता है हमारा, जैसे हमने आपको बताया टेली हेल्पलाइन हमारा एक कार्यक्रम है, दूसरा हमारा सहयोग रहता है, तीसरा हमारा परिचर्चा रहता है, इसके अलावा समय समय पर विद्यार्थियों के लिए, अभिभावकों के लिए या हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सब के लिए तनाव प्रबंधन हेतु विभिन्न प्रकार की जो सहायक सामग्री है वो भी हम समय समय पर उपलब्ध कराते हैं
1: जी। डॉक्टर साहब, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी मनोदर्पण के बारे में। मेरा अगला प्रश्न है आपसे, अपने श्रोताओं की ओर से, कि आज के समय में विद्यार्थियों में तनाव और चिंता बढ़ने के प्रमुख कारण क्या क्या हैं, और हम ये भी जानना चाहेंगे कि इनसे निपटने के सरल उपाय आप क्या क्या सुझाना चाहेंगे।
0: जी, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है अजीत जी। प्रमुख जो कारण है आज के समय में विद्यार्थियों में, एक तो प्रतिस्पर्धा बहुत अधिक है
1: जी,
0: जो अत्यधिक प्रतिस्पर्धा है। दूसरा, विद्यार्थी परीक्षा को लेकर के और अपने भविष्य को, करियर संबंधी जो दबाव है उसको भी महसूस करते हैं। एक सोशल मीडिया का काफी प्रभाव इनके ऊपर देखा जाता है, खास करके जो डिजिटल उपकरण है इनका अत्यधिक उपयोग करना, और साथ साथ जिस प्रकार से तेजी से जो हमारा जो शैक्षणिक और सामाजिक जो परिवेश है ये परिवर्तित हो रहा है
1: जी,
0: उसको लेकर के इसमें कुछ प्रकार के मुख्य कारण है। जैसे मैंने आपको बताया कि अत्यधिक प्रतिस्पर्धा, इसके अंदर क्या रहता है कि जो दूसरे विद्यार्थियों से कई बार अभिभावक भी तुलना करते हैं, या जैसे हमने कहा कैरियर से संबंधित कुछ भविष्य में प्रवेश परीक्षाएं हैं या भविष्य को लेकर के चिंता करना, या सोशल मीडिया का जो प्रभाव है उसमें इवन दो आपको बड़ी हैरानी हो गई सुन करके, कुछ विद्यार्थियों में तनाव का कारण ये होता है कि मेरी जो लाइक्स हैं वो कम हो गए हैं, तो उनके जो लाइक्स हैं इस प्रकार की भी चिंता वो बच्चे करते हैं। जो डिजिटल उपकरण है इसके अंदर स्क्रीन टाइम बढ़ता चला जा रहा है, जब ज्यादा डिजिटल उपकरण का इस्तेमाल करते हैं तो उसका इस्तेमाल करने के बाद बच्चों में एकाग्रता की कमी आती है, उनका दिनचर्या प्रभावित होती है, और इसको लेकर के उनका अगले दिन का भी जो कार्यक्रम है, जो कार्यकलाप है वो भी प्रभावित होते हैं। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चीजें रहती हैं, विभिन्न प्रकार के नई तकनीकी आ गई हैं, नई विकल्प आ गए हैं, उनको लेकर के भी कुछ चीजों को समझते हुए विद्यार्थी थोड़ा अधिक समय इस पर लगाते हैं
1: जी।
0: अब इसके बड़े सरल उपाय हो सकते हैं, जैसे सबसे पहले विद्यार्थियों को ये समझना होगा और खास तौर के हमारे अभिभावकों को, विद्यार्थियों को समझाना पड़ेगा या अध्यापक साथियों को भी समझाना पड़ेगा कि तनाव और चिंता चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में होना स्वाभाविक है, इसमें कोई नई बात नहीं है और ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के लिए हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो है नियमित व्यायाम, योग, और बीच बीच में जिसको हम डीप ब्रीदिंग कहते हैं, गहरी श्वास लेकर के इसका भी अगर हम अभ्यास करते हैं, उसके उपरांत अगर हमारे विद्यार्थी पर्याप्त नींद लेते हैं
1: जी,
0: संतुलित आहार इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, और नियमित दिनचर्या बनाए रखना
1: जी,
0: जैसे कई बार उनको कोई लेसन पढ़ना होता है या कोई काम करना होता है उसके बजाय वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर चले गए या फिर चैटिंग करने लग गए, उसमें उनका अधिक समय चला गया, लेसन के लिए समय कम बच गया, तो उनका जो ध्यान भटकता है उसको भी उनको एक नियमित दिनचर्या रखनी पड़ेगी, और उस नियमित दिनचर्या में उनको अपना जो समय है उसको पढ़ाई में, खेल में, बीच बीच में विश्राम में, और सबसे महत्वपूर्ण बात है मनोरंजन के बीच में भी एक संतुलन बनाना पड़ेगा
1: जी। बिल्कुल बिल्कुल,
0: अगर ये कर पाते हैं, इसके अलावा मित्रों से मिलना, परिवार के साथ मिलना, और खास करके जो सकारात्मक जो जुड़ाव है वो बढ़ाना पड़ेगा
1: जी।
0: कई बार क्या होता है कि अगर ये सारी चीजें नॉर्मल चलती हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसा नहीं चलता है तो किसी परामर्शदाता से या किसी मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सहायता लेने में भी
1: जी
0: विद्यार्थी को
1: संकोच
0: किसी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए
1: जी। जी डॉक्टर साहब, आपने बड़ी उपयोगी जानकारी दी। अब आते हैं परीक्षा के मुद्दे पर। अक्सर देखा गया है कि परीक्षा के दिनों में हमारे विद्यार्थी बहुत अधिक तनाव में आ जाते हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा अपने श्रोताओं की ओर से कि परीक्षा के दिनों में खासकर बच्चों पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए अभिभावक और शिक्षक, उनकी भूमिका क्या हो सकती है?
0: देखिए, अभिभावक की और शिक्षक की तो भूमिका हमेशा ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जब हम बात करते हैं विद्यार्थियों की तो विद्यार्थियों के जीवन में अभिभावक का और शिक्षक का एक महत्वपूर्ण रोल रहता है। अब यहाँ पर सबसे पहली बात अभिभावक की क्या है, विद्यार्थी को ध्यान पूर्वक सुनना, जो बात वो कहना चाहते हैं, उनकी जो चिंताएं हैं, उनकी जो शंकाएं हैं।

0: बड़े ध्यान से सुनना और धैर्य पूर्वक सुनना, ये सबसे पहली बात।
1: बिल्कुल, बहुत जरूरी।
0: कई बार ये होता है कि अगर हमारी बात को कोई अच्छे से सुन ले, समझ ले, तो फिर हमें काफी रिलैक्स फील करता है, राहत मिलती है। दूसरी जो चीज रहती है कि हमें बीच बीच में थोड़ा सा एक भावनात्मक समर्थन, या ये कहिएगा कि एक तरीके से मनोबल बढ़ाने के कुछ चीजें भी मिल जाती हैं। जैसे हमें ये बताना पड़ेगा कि विद्यार्थी ये समझे कि परिणाम के ऊपर फोकस नहीं करना है, केवल प्रयास और सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान देना है। देखिए, मैं बड़ी महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूँ कि हमें प्रयास और सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान देना है, परिणाम की बात नहीं करनी है।
1: परिणाम से आपका मतलब रिजल्ट?
0: जी, रिजल्ट से।
1: जी,
0: क्योंकि देखिए, अगर हम सीरियसली प्रयास कर रहे हैं और हम सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान दे रहे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। रिजल्ट कई बार मैटर नहीं करता है।
1: जी हाँ।
0: ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी बच्चे 90% अंक लाए, और अंकों की तो बात ही नहीं करनी चाहिए हमें। क्योंकि देखिए, किसी भी व्यक्ति के सफलता के लिए केवल उसके नंबर ही या उसके मार्क्स ही एक सिंगल पैरामीटर नहीं है।
1: जी।
0: आज के समय में जो हम बात करते हैं, वो बात करते हैं कि किसी भी बालक के सर्वांगीण विकास की, होलिस्टिक डेवलपमेंट की हम बात करते हैं। होलिस्टिक डेवलपमेंट में केवल एक उसकी पढ़ाई की ही शामिल नहीं है, समाज में उनका क्या रोल है, अपने बाकी मित्रों के साथ उसका किस तरह का काम है, या परिवार में क्या भूमिका है, देश के प्रति उनकी क्या चिंता है, तो बहुत सारी जो चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें इसके अंदर शामिल होती हैं। विद्यार्थियों को ये भी कहीं ना कहीं बताना आवश्यक है कि देखिए, हमारे सामने बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो हमारे बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं।
1: बिल्कुल,
0: हमारे बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, हमारे बहुत अच्छे रेसलर्स हैं, हमारे बहुत अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन हैं। उन्होंने पढ़ाई के अलावा दूसरे फील्ड में काम किया और वो आज के समय में एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो विद्यार्थियों को समझना पड़ेगा कि एकेडमिक्स के अलावा भी बहुत सारे फील्ड हमारे पास है। कोई म्यूजिक में अपनी हॉबी ले सकता है, कोई क्रिएटिव एक्टिविटीज में अपनी हॉबी क्रिएट कर सकता है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं। और ये पेरेंट्स को भी समझना पड़ेगा कि केवल और केवल एकेडमिक्स ही नहीं, एकेडमिक्स के अलावा भी बहुत बड़ी दुनिया है।
1: जी।
0: दूसरी जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो बच्चों के ऊपर बहुत अधिक अपेक्षाओं का दबाव ना डालें, बच्चों से हम बहुत अधिक अपेक्षा ना करें, उनको पर्याप्त नींद का हम मौका दें, उनको पौष्टिक भोजन हम करवाएं, और उनको बीच बीच में, जैसे बहुत लंबे समय तक वो पढ़ते तो बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक उनको दे करके कि ठीक है, बहुत लंबा पढ़ लिए, अब थोड़ी देर खेल लीजिए,
1: तो आराम कर लीजिए,
0: आप थोड़ा आराम कर लीजिए। इसके अलावा तनाव प्रबंधन के कुछ सकारात्मक तरीके भी हैं। जैसे मान लीजिए, सुबह उनको थोड़ा सा योग के बारे में बता दिया, या थोड़ा मेडिटेशन कराने की प्रैक्टिस उनको करा दी, या बीच में जहां वो तनाव में महसूस, उनको थोड़ा सा रिक्रिएटिव एक्टिविटीज लाइक कोई म्यूजिक आपने सुना दिया, कोई छोटे मोटे गेम उनको करा दिए। और आज के समय में तो बहुत सारे गेम, को जरूरी नहीं है कि ग्राउंड में खेलने वाले गेम हो, इन हाउस भी गेम बहुत सारे होते हैं। लेकिन मेरा आपसे निवेदन सिर्फ यही रहेगा कि वो गेम जितने भी हों या जो भी चीजें रहें, इलेक्ट्रॉनिक गेम ना होने चाहिए। क्योंकि अगेन क्या होगा कि अगर वो इलेक्ट्रॉनिक गेम होंगे तो फिर दोबारा फिर उसकी भी एक समस्या रहेगी।
1: जी हाँ जी।
0: तो वो गेम जो भी रहें, जैसे लूडो है, सांप सीढ़ी, कुछ भी अपने छोटे छोटे गेम जो हमारे अपने घरों में खेले जा सकते हैं, और बच्चों की भावनाओं को नकारने के बजाय उनकी बात को बड़े पॉजिटिव तरीके से हमको समझना चाहिए।
1: जी, जी।
0: ये कुछ तथ्य या कुछ बिंदु मैंने अभिभावकों की भूमिका के बारे में बताए हैं।
1: जी।
0: और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भावनात्मक प्रबंधन, जैसे कौशल विकसित करना, बहुत सारी छोटी छोटी टेक्निक्स या बहुत छोटी छोटी चीजें हो सकती हैं जो अध्यापक उनको बता सकते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक विद्यार्थी है, वो पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम उनको कहेंगे अच्छा आपने पढ़ाई किया, अब ऐसा करो आप चित्रकला में थोड़ा काम करके देखो, कुछ अपनी बात को कहानी के माध्यम से कुछ रचनात्मक गतिविधि जिसको हम बोलते हैं कि आप ऐसा करिए कि आपको चित्रकला में कुछ काम करिए, कोई कहानी लेखन का काम कर लीजिए, या जिसको हम ग्रुप डिस्कशन कहते हैं, समूह चर्चा, ऐसी गतिविधियों में आप आगे चलें, क्या होता है कि उससे थोड़ा सा उनका फोकस भी रहता है और अपना थोड़ा सा एक तरीके से समय भी उनको मिल जाता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: इसके अलावा देखिए, विद्यार्थियों में कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनको विशेष आवश्यकता रहती है, उनकी बातों को समझना और उनके साथ संवेदनशील होकर के उनकी जो समस्याएं हैं उनकी चिंता करना।
1: जी, बिल्कुल बिल्कुल।
0: इसके अलावा विद्यार्थियों में छोटी छोटी उपलब्धि है उसकी भी सराहना करना, उनको बीच बीच में मोटिवेट करना, अच्छा आपने बहुत अच्छा काम किया। जैसे किसी विद्यार्थी को आपने कोई असाइनमेंट दिया, कोई होमवर्क दिया, उसने करके दिखाया, अरे बहुत अच्छा किया आपने, आप तो इससे भी अच्छा कर सकते हो।
1: हाँ।
0: तो इस तरीके से जो छोटे छोटे जो मोटिवेशंस हैं, छोटी छोटी जो चीजें रहती हैं, इससे उनको काफी एक तरीके से ये मानिए कि उनको बड़ा मोटिवेशन मिलता है

0: मनोबल बढ़ता,
1: मनोबल बढ़ता है
0: जी,
1: और इस तरीके से वो और आगे इसके लिए कोशिश करते हैं। दूसरा, परामर्श की जो सेवाएं हैं उनकी जानकारी देना। हमारे पास जो काउंसलिंग सेवाएं हैं, अन्य जो संसाधन हैं, जो सहायता संसाधन हो सकते हैं, उनकी भी चीजें शेयर करना। ये चीजें यहाँ यहाँ उपलब्ध हैं, आप देख लीजिए, समझ लीजिए। और ये एक जो सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें काम हो सकता है, अध्यापक का और पेरेंट्स यानी कि अभिभावक, अध्यापक और विद्यार्थी, इन तीनों के बीच में एक तारतम्य, एक बहुत अच्छा जो कनेक्शन रहे,
0: तालमेल रहे,
1: तालमेल जितना रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा।
0: तो डॉक्टर साहब, इतनी उपयोगी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा विश्वास है कि हमारे श्रोता जरूर इससे बहुत लाभान्वित होंगे। अब एक विशेष प्रश्न पर मैं आता हूँ, और वो प्रश्न ये है कि मोबाइल फोन, सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेम्स का बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, और इनके संतुलित उपयोग के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे। मूल प्रश्न है इनका संतुलित उपयोग।
1: जी, आपका ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, जो संभावित नकारात्मक प्रभाव इसके हो सकते हैं, सबसे बड़ा जो चिंता और तनाव, क्योंकि लगातार तुलना करते हैं, इसमें भी क्या होता है, उनके लाइक अधिक हो गए, हमारे लाइक कम हो गए, यहाँ भी हमने तुलना कर ली,
0: ऐसा होता
1: उसके
0: है।
1: बाद हम क्या करते हैं, ऑनलाइन किसी भी चीज के ऊपर या सोशल मीडिया में कोई चीज आती है, ऑनलाइन गेम आता है, इवन ऑनलाइन गेम के अंदर तो कई तरह की बहुत सारी खतरनाक चीजें भी होती हैं। अगर आपको जानकारी हो तो, जैसे ये ब्लू वेल टाइप के जो गेम थे, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि उन ऑनलाइन गेम के माध्यम से हमारे विद्यार्थियों को चीट करने की कोशिश करते हैं, उनसे भी बचना चाहिए। दूसरा क्या होता है कि लगातार स्क्रीन को देखने से नींद आने में बाधा उत्पन्न होती है, नींद की क्वालिटी प्रभावित होती है, और क्या होता है कि हमारे जो सामाजिक अलगाव भी बढ़ता है।
0: जी,
1: जैसे एक दूसरे के आमने सामने बैठ करके हम संवाद करते हैं, ऑनलाइन गेमिंग से या ऑनलाइन मोबाइल फोन के प्रयोग से या सोशल मीडिया से या ऑनलाइन बने रहने से विद्यार्थी एक दूसरे से आमने सामने बात करने से बचते हैं, और उनको वो समय नहीं मिल पाता, तो धीरे धीरे क्या होता है कि समाज से भी वो थोड़े से कट जाते हैं, अपने साथियों से अकेलापन आ जाएगा, अपने विद्यार्थियों से, साथियों से, भाई बहन से। और अक्सर आपने देखा होगा कि एक घर में अगर चार लोग हैं तो चार मोबाइल के साथ अलग अलग बैठे हैं, जबकि वो बैठे एक ही घर में हैं, तो उनको मोबाइल को किसी लिमिटेड समय के लिए रख देना चाहिए। और लिमिटेड समय का मतलब ये हुआ कि विद्यार्थियों के लिए स्क्रीन टाइम निर्धारित होना चाहिए, इसके लिए विद्यार्थी के अभिभावक और हमारे अध्यापक ये मिलकर के बातचीत कर सकते हैं कि किस कक्षा के लिए कितने घंटे का मोबाइल का बैन होना चाहिए। खास करके घर में भी बहुत छोटी छोटी चीजें, जैसे हम जब शाम को डिनर करते हैं, रात्रि भोजन जब करते हैं, उस समय भी हम कहते हैं कि अच्छा ठीक है, मोबाइल बंद कर लीजिए, अच्छा अब आधा घंटा हम अपने घर की चर्चा करेंगे, अपने विषयों की चर्चा करेंगे, साथ में खाना खाएंगे, हम नाश्ता साथ में करेंगे, तो इस तरह के जो जो चीजें हैं उसको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। इसके अलावा विद्यार्थियों को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन काम के समय और कितना उपयोग करना इस पर भी नजर रखनी चाहिए। इसके अलावा विद्यार्थियों को खेल में, संगीत में, कला में छोटी छोटी गतिविधि, जैसे मौसम के अनुसार, सर्दी अधिक है तो धूप में कोई एक्टिविटी हो सकती है, गर्मी अधिक है तो घर के अंदर भी कोई एक्टिविटी हो सकती है, सुबह शाम हो सकती है, तो वो भी देख करके हम कर सकते हैं। और बच्चों को ये भी समझाएं कि जो डिजिटल लिटरेसी यानी कि डिजिटल साक्षरता है, ये सिखानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार क्या होता है कि छोटे छोटे जो मैसेज आते हैं, उन मैसेज को लेकर के भी इधर उधर चीजें होती हैं या चर्चाएं होती हैं, उनके बारे में भी बताना चाहिए। इसके अलावा सोने से कम एक घंटा पहले जो डिजिटल स्क्रीन है, स्क्रीन को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि लंबे समय तक अगर वो डिजिटल स्क्रीन को देखेंगे तो उनको नींद आने में समस्या रहेगी और वो अच्छी नींद नहीं ले पाएंगे। परिवार के साथ मिलकर के भी हम बहुत सारे नियम तय कर सकते हैं, जैसे आपको पता है कि हमारे जो परिवेश है, हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो संस्कार है, सो बहुत सारी चीज हम एक दूसरे से सीखते हैं, हम समाज से सीखते हैं, परिवार से सीखते हैं, तो इसके अंदर भी समाज और परिवार की बहुत सारी महत्वपूर्ण जो चीजें हैं वो कवर हो सकती हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: जी
0: जी। तो डॉक्टर साहब, एक और प्रश्न मेरे मन में आता है श्रोताओं की ओर से कि प्रतिस्पर्धा के इस दौर में बच्चों में हीन भावना या नकारात्मकता विकसित हो जाती है। होता यह है कि वे अपनी असफलता को स्वीकार ही नहीं कर पाते, तो हम ये जानना चाहेंगे कि बच्चों में असफलता को स्वीकार करने की क्षमता और सकारात्मक सोच कैसे विकसित की जा सकती है।
1: देखिए, कुछ जो चीजें हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण हैं कि सबसे पहले जो बात हम कर रहे हैं कि जो हमारा विद्यार्थी है उसको किसी भी चीज के सफलता या असफलता के कोई पैरामीटर होते ही नहीं।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: किसी प्रकार का कोई पैरामीटर नहीं होता है।
0: हाँ।
1: एक विद्यार्थी हो सकता है कि पढ़ाई में थोड़ा सा कमजोर हो, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा हो सकता है,
0: हो सकता है,
1: वही पेंटिंग में अच्छा हो सकता है, वो आर्ट में अच्छा हो सकता है, बाकी किसी अन्य विषय में अच्छा हो सकता है
0: जी।
1: तो हमें ये समझना चाहिए कि उस विद्यार्थी का अच्छा स्किल क्या है, उसका बेटर टैलेंट क्या है, उस टैलेंट को हमें पकड़ना है और उस टैलेंट को पकड़ के उसको और आगे उभारना है
0: जी।
1: पकड़ने से मतलब है उसको आइडेंटिफाई करना।
0: हाँ,
1: है
0: बिल्कुल,
1: उसकी पहचान करनी, और पहचान करने के बाद उसी को आगे और निखारना है
0: जी, उसी को।
1: इसके अलावा हमारे बहुत सारे ऐसे प्रयास हो सकते हैं कि केवल परिणाम की बात ना करें, मेहनत और सीखने को महत्व दें। इसके अलावा छोटे छोटे लक्ष्य, बड़े जो कार्य होते हैं उनको छोटे छोटे लक्ष्यों में, छोटे छोटे कार्यों में चरणबद्ध तरीके से हम लेकर के चल सकते हैं। जैसे जो बात आपने कही कि किसी को असफलता भी मान लीजिए होती है।
0: हाँ, होती है।
1: असफलता से एक चीज तो सिद्ध होती है कि हमने कोई प्रयास किया,
0: प्रयास
1: वो सफल नहीं हुआ, लेकिन उसके अंदर जो अच्छाई है वो ये है कि हमें उस गलती से सीखने का एक अवसर मिला
0: जी।
1: तो जब हमें सीखने का एक अवसर मिला तो उस असफलता का हमारे लिए कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं बचा, हमने कुछ सीखा। देखिए, गलती से भी कुछ सीखा ना।
0: हाँ, होता
1: तो,
0: है।
1: तो इसका मतलब क्या हुआ
0: जी?
1: वो भी एक हमारे तरह से एक तरीके से मोटिवेशन का काम वो करता है
0: जी।
1: और मैं पुनः आपके माध्यम से सभी को ये कहना चाहूंगा, देखिए विद्यार्थी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। विद्यार्थी की हर छोटी चीज का ध्यान रखें, उनको एक वॉच करें, उनको ऑब्जर्व करें और उनकी गतिविधि को देखें, उनका समय समय पर मनोबल बढ़ाएं और उनके कुछ विशेष जो काम हैं या विशेष गतिविधि हैं उनको देखें। अगर कोई स्पोर्ट्स में अच्छा करना चाह रहा है तो पेरेंट्स ऐसा ना करें कि उसको स्पोर्ट्स के बजाय किसी दूसरे फील्ड में धकेलने की कोशिश करें। देखिए, विद्यार्थी है, उसका जो रुचि है, रुचि के अनुसार वो अपने विषय चयन करे, विषय के अनुसार वो अपने आगे के जो क्रियाकलाप हैं वो तय करे। हम किसी प्रकार की कोई जबरदस्ती विद्यार्थी के साथ ना करें। अक्सर ऐसा देखा गया है कि पेरेंट्स भी जो चॉइस विद्यार्थियों के बजाय पेरेंट्स की जो चॉइस है जैसे थोप देते हैं, थोपने के बजाय उनको एक अपना इंडिपेंडेंट निर्णय लेने दें। दूसरा, जो वो निर्णय लें उस निर्णय में हमें उनकी सहायता करनी चाहिए, उनको मदद करनी चाहिए। और जो छोटे छोटे जो काम हैं, जैसे किसी ने कोई काम किया तो उसको मनोबल बढ़ाने के लिए उसको शाबाशी देना,
0: प्रोत्साहित करें।
1: इसके अलावा उनको जो एक्टिविटीज हैं, खास करके अगर हम देखें तो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, किसी भी विद्यार्थी का गेम्स का, स्पोर्ट्स का, बाकी चीजों के प्रति भी हमें ध्यान रखें। और हम ये कोशिश ना करें कि विद्यार्थी केवल एक नंबर लाने की मशीन है
0: जी,
1: उसको भी एक ह्यूमन बीइंग समझें और उसके जो भी चीजें चलती हैं, खास करके जो उसकी रुचि के विषय हैं, उनमें भी समय दें। और एक जो चार्ट, ये जो हम कहें टाइम टेबल
0: जी,
1: नियमली हम बनाएं, टाइम टेबल हम एक बनाएं, उस टाइम टेबल में भी हम देखें कि कौन कौन से काम उसके हो सकते हैं, तो टाइम टेबल के अनुसार उसका हम काम करवाएं।
0: तो डॉक्टर साहब, अब मेरा अंतिम प्रश्न होगा आपसे, और वो ये है कि बच्चे या अभिभावक मनोदर्पण से कैसे जुड़ सकते हैं?
1: देखिए, जैसा मैंने आपको कहा कि मनोदर्पण से जुड़ने के लिए हमारी एक हेल्पलाइन है, उसका नंबर मैं पुनः आपको बता देता हूँ
0: जी,
1: 8440442 8448440632। ये हमारी मनोदर्पण का टेली हेल्पलाइन नंबर है, जिसमें अभी सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक 12 घंटे के लिए हमारे काउंसलर्स उपलब्ध होते हैं। कोई भी विद्यार्थी, कोई भी अभिभावक और कोई भी शिक्षक इनसे मदद ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे दूसरी जो एक टेली हेल्पलाइन है, जो टेली मानस की है, वो नंबर भी विद्यार्थी नोट कर सकते हैं, 14416। ये टेली हेल्पलाइन है टेली मानस की, इस पर भी वो अपनी मदद के लिए जा सकते हैं। यहाँ पर स्कूल काउंसलर, मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक उपलब्ध होते हैं
0: जी।
1: और अगर किसी प्रकार का कोई ऐसी बात दिखती है कि उनको कोई समस्या दिखती है, आप हमें

0: पर भी ईमेल कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पर जाकर के विजिट कर सकते हैं, हमारे सहयोग सेशन को वो देख सकते हैं, परिचर्चा सेशन को वो सुन सकते हैं, और एनसीईआरटी के वेबसाइट पर यूट्यूब में भी हमारे सारे के सारे कार्यक्रम उपलब्ध हैं, तो विद्यार्थी इसका अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं।
1: जी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतनी उपयोगी जानकारी देने के लिए, साथ ही साथ इतना अच्छा परामर्श देने के लिए। तो श्रोताओं से मेरा अनुरोध है कि इस प्रसारण को सुनने के बाद आप आज के श्रोता संवाद कार्यक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर भेजें।
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सभी श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।

0: 8448440632 पर और पाएं NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: अभी आपने सुना ये कार्यक्रम, इस पर हम आपसे प्रतिक्रियाओं की अपेक्षा करेंगे, जरूर लिख भेजिएगा।
2: और श्रोताओं, अब इसी के साथ हमारा उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए, कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।
3: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
4: NCERT द्वारा प्रायोजित शैक्षिक कार्यक्रम उमंग अभी आप सुन रहे थे। FM के 102.4 MHz पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र। दिन के 3:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। उपशास्त्रीय संगीत के आज के इस कार्यक्रम में आइए सुने दादरा और टप्पा। कलाकार हैं विदुषी सिद्धेश्वरी देवी।

0: पुनः प्रसारण विशेष। कुछ कहानियाँ केवल सुनी नहीं जाती, वे मन में उतरकर प्रेरणा बन जाती हैं। काली माटी की मिट्टी से आधुनिक भारत के स्वप्निल नगर तक की यात्रा, इस्पात की चमक, संस्कृति की सुगंध, विज्ञान का विश्वास, खेलों का उत्साह और इंसानियत की अनुपम पहचान। यदि आप इस अद्भुत राष्ट्रीय प्रस्तुति को सुनने से चूक गए हों या एक बार फिर उस गौरवपूर्ण यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हों, तो अवश्य सुनिए इस्पात, संस्कृति और सपनों का शहर, जमशेदपुर की बहुरंगी पहचान। ये विशेष रेडियो रूपक गत 5 जुलाई को रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में देश भर के आकाशवाणी केंद्रों से प्रसारित किया गया था। अब इसका विशेष पुनः प्रसारण होगा बुधवार 8 जुलाई 2026 शाम 4 बजे आकाशवाणी जमशेदपुर के प्राइमरी चैनल FM 102.4 MHz पर। आइए सुनिए उस शहर की प्रेरक गाथा, जहां इस्पात केवल कारखानों में नहीं बल्कि लोगों के सपनों और हौसलों में भी ढलता है। आकाशवाणी जमशेदपुर, आपके अपने शहर की आवाज।
1: आकाशवाणी जमशेदपुर के युववाणी कार्यक्रम में आज FM के 102.4 MHz पर शाम 5 से 5:30 तक मैं क्षमाश्री
2: और मैं सरितम ला रहे हैं सफल गाथा जगजीवन रामा की चर्चा, वित्त साक्षरता की आवश्यकता पर और कार्यस्थल पर महिलाओं के सम्मान पर, तो सुनिएगा जरूर।
3: उपशास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं टप्पा। कलाकार हैं विदुषी सिद्धेश्वरी देवी।

0: विदुषी सिद्धेश्वरी देवी के स्वर में दादरा और टप्पा अभी आप सुन रहे थे। इसी के साथ उपशास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है ये FM के 102.4 MHz पर। हमारा अगला कार्यक्रम है लोकगीतों का, सुनवाएंगे थोड़ी ही देर में।
1: पुनः प्रसारण विशेष। कुछ कहानियाँ केवल सुनी नहीं जाती, वे मन में उतरकर प्रेरणा बन जाती हैं। काली माटी की मिट्टी से आधुनिक भारत के स्वप्निल नगर तक की यात्रा, इस्पात की चमक, संस्कृति की सुगंध, विज्ञान का विश्वास, खेलों का उत्साह और इंसानियत की अनुपम पहचान। यदि आप इस अद्भुत राष्ट्रीय प्रस्तुति को सुनने से चूक गए हों या एक बार फिर उस गौरवपूर्ण यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हों, तो अवश्य सुनिए इस्पात, संस्कृति और सपनों का शहर जमशेदपुर की बहुरंगी पहचान। ये विशेष रेडियो रूपक गत 5 जुलाई को रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में देश भर के आकाशवाणी केंद्रों से प्रसारित किया गया था। अब इसका विशेष पुनः प्रसारण होगा बुधवार 8 जुलाई 2026 शाम 4 बजे आकाशवाणी जमशेदपुर के प्राइमरी चैनल FM 102.4 MHz पर। आइए सुनिए उस शहर की प्रेरक गाथा जहां इस्पात केवल कारखानों में नहीं बल्कि लोगों के सपनों और हौसलों में भी ढलता है। आकाशवाणी जमशेदपुर, आपके अपने शहर की आवाज।
2: आकाशवाणी जमशेदपुर के युववाणी कार्यक्रम में आज FM के 102.4 MHz पर शाम 5 से 5:30 तक मैं क्षमाश्री
3: और मैं सरितम ला रहे हैं सफल गाथा जगजीवन रामा की चर्चा, वित्त साक्षरता की आवश्यकता पर और कार्यस्थल पर महिलाओं के सम्मान पर। तो सुनिएगा जरूर।

0: FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र। आइए अब सुनते हैं लोकगीतों का कार्यक्रम।
1: कार्यक्रम झारखंड के लोकगीत में आपका स्वागत है। कार्यक्रम के साथ मैं हूं प्रवीण सेठी। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं संताली लोकगीत से। कलाकार हैं रीना हांसदा और साथी

0: कार्यक्रम झारखंड के लोकगीत के तहत अभी आप सुन रहे थे कलाकार रीना हंसदा और साथियों की आवाज में सांताली लोकगीत। और अब मुझे यानी प्रवीण को दीजिए इजाजत। नमस्ते।
1: अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। सहकारिता मंत्रालय के 5 वर्ष पूरे होने पर नई दिल्ली के भारत मंडप में आयोजित कार्यक्रम का सरायकेला खरसावां जिले में सीधा प्रसारण देखा गया। जिला सहकारिता कार्यालय सहित विभिन्न समितियों के पदाधिकारियों ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह का लाइव संबोधन सुना। इस मुख्य समारोह में जिले की 3 लैंप्स समितियों के प्रतिनिधियों ने भी नई दिल्ली जाकर भाग लिया। रांची में जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा मांडर के करगे गांव में नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। अभियान के तहत ग्रामीणों को एनडीपीएस अधिनियम, नशे के दुष्प्रभाव और ऋण पास तथा सीआईपी के विधिक सहायता क्लिनिकों की जानकारी दी गई। देवघर की मोहनपुर थाना पुलिस ने रेलवे स्टेशन के पास छापेमारी कर अवैध हथियार के साथ 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों ने हाल ही में देवीपुर में हुई 1 हत्या और कई लूट कांडों में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। गिरिडीह की पीरटांड पुलिस ने अपनी पत्नी की हत्या के आरोप में मुन्ना लाल किस्को को गिरफ्तार किया है। डुमरी एसडीपीओ आबिद खान ने बताया कि आरोपी ने अवैध संबंध के शक में 28 जून को अपनी नव विवाहिता पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी थी और शव को नाले के पास छिपा दिया था। कोडरमा के डोमचांच स्थित बैजनाथ प्रसाद स्नेही कॉलेज में आज डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू और विधायक डॉक्टर नीरा यादव शामिल हुए। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधरोपण किया। और पूर्व उप प्रधानमंत्री और स्वतंत्रता सेनानी बाबू जगजीवन राम की पुण्यतिथि पर आज रांची में प्रदेश कांग्रेस के महासचिव सुरेंद्र राम सहित कई नेताओं ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा।

मुख्य समाचार अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 4:02 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा। परिक्रमा कार्यक्रम के तहत आइए आज सुनते हैं चर्चित लेखिका शेफाली एम योगेंद्र की पुस्तक अनचार्टेड स्पेसेस के बारे में। बातचीत कर रहे हैं राजीव तिवारी।

0: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ राजीव और आज के इस विशेष कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ चर्चित लेखिका शेफाली एम योगेंद्र, जिनकी पुस्तक अनचार्टेड स्पेसेज पाठकों के बीच अपनी संवेदनशीलता, कल्पनाशीलता और गहरे मानवीय दृष्टिकोण के कारण चर्चा में है। तो चलिए हम सीधे लेखिका शेफाली के साथ जुड़ते हैं और उनसे उनकी पुस्तक पर बातचीत करते हैं।
1: नमस्कार श्रोताओं, अभी हमारे साथ एक बहुत ही विशेष मेहमान हमारे साथ जुड़ी हुई है। इनसे हम लोग आगे कुछ देर इनकी किताब के बारे में बातचीत करेंगे और इनसे जानेंगे कि इनकी ये जो किताब है जिसका नाम है अनचार्टेड स्पेसेस, क्या कुछ खास है। तो इस किताब की राइटर शेफाली योगेंद्र जी का सबसे पहले हमारे कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है।
2: नमस्ते राजीव।
1: शेफाली जी, सबसे पहले तो आप अपने बारे में कुछ बताएं।
2: जरूर। मैं ना बुंदेलखंड क्षेत्र की पली बड़ी हूँ और इसका मतलब है कि मेरी हिंदी थोड़ी खिचड़ी है, कभी तत्सम है, कभी उर्दू है और कभी कभी उसमें अंग्रेजी भी मिली हुई है। तो मैं आपके श्रोताओं से क्षमा चाहती हूँ कि मैं इस खिचड़ी भाषा में ही आपसे बात करूँगी। तो जैसा मैंने कहा, मैं बुंदेलखंड क्षेत्र में पली बड़ी हूँ और मैंने स्कूल के बाद लखनऊ जाकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। उस समय मेरा कॉलेज इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी काफी नया था। तो जब मैंने अपनी डिग्री खत्म की, मैं अपने कॉलेज से IIM अहमदाबाद जाने वाली पहली इंसान थी। उसके बाद जब मैंने वहाँ अपनी पढ़ाई खत्म की 2 साल के बाद, उसके बाद कुछ समय मैंने एक उपभोक्ता सामान कंपनी में काम किया, लेकिन मुझे ज्यादा मजा नहीं आया उसमें। मुझे ये समझ है कि जो लोग खाने का और डिटर्जेंट का और मॉइस्चराइजर का व्यापार करते हैं, वो हमारी जिंदगी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, लेकिन मेरे लिए वो इंटरेस्टिंग नहीं था। तो उसके बाद मैंने वो कंपनी छोड़कर HCL ज्वाइन किया। HCL, जैसा कि आप जानते हैं, IT सेक्टर की बड़ी कंपनी है। क्योंकि वो कंपनी उस समय काफी तेजी से बढ़ रही थी, मेरे जैसे लोग, इंजीनियरिंग और उसके बाद मैनेजमेंट पढ़े हुए लोगों को वहाँ काफी बेहतरीन मौके मिलते थे। तो मैंने बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत आकर्षक काम किया जिसमें मेरी बढ़त भी हुई और जिसमें मैं असल में कुछ कंट्रीब्यूशन कर पाई, क्योंकि मेरी पढ़ाई लिखाई जो थी वही था मेरे पास, मैंने पहले कभी काम किया नहीं था। लेकिन उस समय मैं बात कर रही हूँ मिड 1990s की, उस समय ज्यादा कुछ करने के लिए हमारे शहरों में, ऐसा नहीं है कि कुछ करने के लिए नहीं था, लेकिन ट्रांसपोर्ट मुश्किल था, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना नहीं था। अगर आप बस में ना जाए, ऑटो में जाए, काफी पैसे लगते थे, काफी समय लगता था। तो फिर मैंने अपने आसपास ढूंढकर फ्रेंच और फिर जर्मन भाषाएं सीखने शुरू कर दी, क्योंकि मेरे पास जब वीकेंड में टाइम होता था तो मैं दूसरी भाषाएं पढ़ती थी, मुझे दिलचस्पी है दूसरी भाषाओं में। क्योंकि मैं ये भाषाएं बोलती थी, जब HCL स्विट्जरलैंड में एक नई शाखा खोलना चाहता था, उन्होंने मुझे वहां कंट्री मैनेजर के रूप में भेजा। मैं 25-26 साल की थी, तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा मौका था। और मैं आपके श्रोताओं को सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि जब दुनिया में अपने काम पर और अपनी जिंदगी में ऐसे अवसर आते हैं जहां हमें डर लगता है अंदर से, लेकिन हमें एक्साइटमेंट भी होता है, उत्सुकता भी होती है कि जाके देखें तो क्या पॉसिबल है, तो हमेशा अपने डर के बावजूद चले जाना चाहिए। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मुंह के बल गिरेंगे, फेल हो जाएंगे, लेकिन अगर नहीं गए तो सारी जिंदगी ये सोचेंगे कि अरे यार गए नहीं, चले जाते तो अच्छा होता, पता चलता क्या हुआ। मैं काफी यंग थी, मुझे ज्यादा पता भी नहीं था, तो मैं चली गई। वहां जाके एक आभास इस चीज का हुआ कि इंडिया में अगर आप हमारे देश में अगर आप पढ़े लिखे हैं और आप किसी बड़ी कंपनी में काम करते हैं, तो अगर आप यंग लड़की या महिला भी है तो आपकी अपॉर्चुनिटीज बहुत है। हमारे यहाँ आप देखिए, इंडिया में बैंकिंग में कितनी सारी सीईओज महिलाएं हैं, कितनी सारी मिनिस्टर, सीनियर सिविल सर्वेंट सब महिलाएं हैं। स्विट्जरलैंड में ये विचारधारा थोड़ी कम है। तो मैं कंट्री मैनेजर थी वहाँ, और जितनी भी महिलाओं को मैं, लड़कियों को अपनी उम्र की मिलती थी, वो सब लेट्स जस्ट से वो मैनेजमेंट में काम नहीं कर रही थी। तो मैंने अपनी कंपनी से कहा कि देखिए, अगर आपको यहाँ पर सफलता चाहिए तो आप ये काम किसी और को दे दीजिए। और इस तरह उन्होंने मुझे यहाँ इंग्लैंड में, यूरोपियन हेडक्वार्टर था, वहां भेज दिया और तब से मैं इंग्लैंड में रह रही।

साथ काम किया और इस सारे काम की वजह से मैंने बहुत लोगों के अलग अलग दृष्टिकोण के बारे में सीखा और इस बीच में मैंने कैम्ब्रिज जाकर एक मास्टर्स डिग्री की टेक्नोलॉजी पॉलिसी प्रौद्योगिकी नीति आप कह सकते हैं और फिर पीएचडी की डिसीजन मेकिंग में मैंने ये पढ़ा उसमें कि लोग जब कोई निर्णय करते हैं तो उनकी क्या उनका दिमाग क्या चीजें सोचता है और उनकी कुछ चीजें कॉन्शियस दिमाग की होती हैं कुछ चीजें अंतरिम होती हैं और हम किसी को बता भी नहीं सकते कि ये हमने क्यों किया। तो मैंने वो पढ़ाई की और मुझे वो मेरा पीएचडी का टॉपिक रहा है। सो जब मैं ये सब चीजें एक साथ सोचती हूँ तो पिछले 10 सालों में जब मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे मैंने काम किया है इन सब अनुभवों ने मुझे प्रभावी डायरेक्टर बनने में बहुत मदद की है।

0: साथ काम करने का और साथ में यूरोप में और यूके में खासकर यूरोपियन कई फॉर्म्स के साथ काम करने का। तो ये जो बुक है वो लिखने का जो ख्याल होती है वो बुक लिखने का ख्याल कैसे आया?
1: जब मैं पहली बार 2016 में बोर्ड डायरेक्टर बनी थी तो मैं सोचती थी जब 10 साल हो जाएंगे ना तो एक किताब लिखूंगी।
0: अच्छा,
1: जी। सब मजाक में कहते हैं कि हमारे फ्रेंड्स जो अच्छी कहानियां सुनाते हैं हम उनसे कहते हैं तुम किताब क्यों नहीं लिखते, अक्सर कहते हैं लोग एक दूसरे से। तो मैं अपने आप से कहती थी चलिए 10 साल बाद एक किताब लिखूंगी, देखूंगी मैंने क्या क्या सीखा। लेकिन 2024 में मेरी एक सहेली है, उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं बोर्ड पर काम करना शुरू करना चाहती हूँ, मैं कैसे शुरू करूँ अब। मुझे समझ नहीं आया कि मैं उनको ऐसा रामबाण क्या जवाब दे दूं जिससे वो सफल रहे इस अपनी अपने क्वेस्ट में, क्योंकि जैसा कि मैंने डिस्क्राइब किया अभी आपको पहले बताया मेरा करियर बहुत अपारंपरिक है। मैंने लोगों की तरह बड़ी कंपनी के अंदर काम नहीं किया, मैंने हमेशा बाहर से एडवाइजर की तरह कंसल्टेंट की तरह काम किया। तो जब आप मेरा सीवी पढ़ें मेरा बायोडेटा पढ़ें तो लोगों के दूसरे लोगों के बायोडेटा जैसा नहीं है, मैंने काफी पापड़ बेले हैं और मेरा वो रास्ता सबके लिए नहीं है। तो मैंने सोचा तो मैं अपनी सहेली के सवाल का जवाब कैसे दूं, मैंने सोचना शुरू किया। फिर मैंने सोचा कि मुझे दुनिया भर में कई डायरेक्टर्स को मैं जानती हूँ उनसे क्यों ना बात करूं। तो फिर मैंने ऐसे करते करते 60-70-80 डायरेक्टर्स से साक्षात्कार किया, बातें की, उन्होंने मुझे काफी सारी सलाह दी और उनकी सलाह उनके एक्सपीरियंसेस उनके अनुभव उनकी वार्निंग्स उन्होंने चेतावनी भी दी कि कई बार डिस्प्यूट होता है, लड़ाई होती है, डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, ऑल काइंड्स सब ये सब चीजें होती हैं, बट मैंने उसको पुस्तक का मेरी किताब का पहला हिस्सा बना दिया। तो किताब जो है मेनली तीन हिस्सों में है, पहले हिस्से में हम ये सब बात करते हैं, फिर उसके बाद जो दूसरा हिस्सा है उसमें मैंने पृष्ठभूमि बांधी है। हमारा काम डायरेक्टर्स का काम ये है कि हम जिन व्यवसायों में काम करते हैं उनको अधिकतर सफल बनाएं, और वो करने में आपको ये भी सोचना पड़ता है कि बेतहाशा पैसा तो नहीं है, जो पैसा है इस काम में ऐसा लगाएं जिससे ज्यादा मुनाफा हो, और ये करने के लिए काफी दूरदर्शिता की जरूरत होती है और हम चुनौतियों के बारे में भी सोचते हैं। मैंने तीन चीजों के बारे में मेनली किताब में बीच में लिखा है, वो है टेक्नोलॉजी, जियोपॉलिटिक्स और जलवायु परिवर्तन। ये तीनों चीजें जो हैं चुनौतियां हैं हमारे सामने और ये अच्छे अवसर भी हैं नई चीजें बनाने के लिए, ये सब हमें प्रभावित कर रहे हैं। लेकिन जब ये तीनों एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं तो ये जो चुनौतियां हमारे सामने रखते हैं वो काफी कठिन और जटिल हो सकती हैं। तो दूसरा जो किताब का हिस्सा है वो इनके बारे में है, और मैं क्यों कह रही हूँ कि जटिल चुनौतियां होती हैं तो मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। फरवरी के अंत में दो देशों ने ईरान पर हमला किया, हम जून में है, तकरीबन 4 महीने निकल गए हैं। उसका प्रभाव पेट्रोल का दाम, एलपीजी का दाम, खाद का दाम और अब खाने की कीमतें, एनर्जी या ऊर्जा की कीमतें, परिवहन या ट्रांसपोर्ट की कीमतें और सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। यही कहना चाहती हूँ मैं कि टेक्नोलॉजी, जियोपॉलिटिक्स और क्लाइमेट चेंज तीनों मिलजुल कर जब एक साथ काम करते हैं तो चुनौतियां जो है बहुत क्लिष्ट हो जाती है और लोग हताश हो जाते हैं। लेकिन हताश नहीं होना चाहिए, यही हमारे बोर्ड्स का काम है, ताकि दो तीन स्टेप आगे सोचें, दूरदर्शी तरीके से सोचें। पॉसिबल है कि हम एडवांस में सोच सकते हैं कि अगर ये हुआ तो हम कैसे रिएक्ट करेंगे। तो पुस्तक मेरी किताब का जो दूसरा भाग है वो इन भरते विषयों के बारे में बात करता है। और तीसरे हिस्से में मैंने इस बारे में लिखा है कि बोर्ड्स को क्या बात करनी चाहिए और आसपास किस तरह के लोग होने चाहिए। उसका कहने का मतलब है नॉर्मली होगा कि बोर्ड आएंगे और देखेंगे अच्छा हमने ये रेगुलेटर को ये बता दिया है, ये रिपोर्ट कर दिया है, मार्केट को ये कह दिया है, ये मार्केट रिलीज कर दी है, अब हम घर जाते हैं। ये हमारा काम नहीं है, हमारा काम है ये जो बढ़ती हुई चुनौतियां हैं इनका सामना करने के लिए हम अपने व्यवसाय को कैसे तैयार करें। सो वो बिल्कुल अलग तरह की चर्चा है, अलग तरह का कार्यक्रम है, और उस पर ठीक निर्णय लेने के लिए जो लोग 40 साल काम करके रिटायर हो रहे हैं वो शायद लोग नहीं है। अगर हम अपने भविष्य के लिए

शेफाली जी, अब थोड़ी आपकी किताब पर आते हैं। ये जो किताब है अनचार्टेड स्पेसेस, इसके बारे में कुछ बताएं। और जितना आपका अच्छा खासा अनुभव है बड़ी बड़ी कंपनियों के

0: कर रहे हैं तो हमारे पास भविष्य दिखना चाहिए ना हमें, तो हमें अलग तरह के लोगों की जरूरत है। दूसरी चीज ये है कि इंडिया में भी ये है और यहाँ भी है इसी तरह कि ज्यादातर जो बोर्ड्स हैं उसमें महिलाओं को बहुत जगह नहीं दी जाती है, युवाओं को भी जगह नहीं दी जाती है। जब आप इन लोगों को शामिल नहीं करेंगे जो दुनिया की आधी पॉपुलेशन है और आधी से ज्यादा पॉपुलेशन अगर आप युवाओं को महिलाओं के साथ सम्मिलित करके गिने, तो आप जो कॉन्वर्सेशन, आपकी जो बातचीत हो रही है वो किस काम की है, उनका पर्सपेक्टिव कौन बताएगा आपको, राइट? तो वो तीसरा पार्ट है किताब का। और इन डिफरेंट ये जो तीन भाग है किताब के, इसमें मैंने अपनी जो मेरी नॉलेज है, मेरा जो जान है, मेरी जो जान पहचान है अपने कल्चर से, मैंने उसको इस्तेमाल किया है। तो जिस भाग में मैं टेक्नोलॉजी और जियो पॉलिटिक्स की बात करती हूँ और उनकी कॉम्प्लेक्सिटी और उनकी कठिनाई की, उस विषय की कठिनाई के बारे में वार्निंग देना चाहती हूँ रीडर को, वहां मैंने हितोपदेश से एक श्लोक इस्तेमाल किया है। तो मैं हर भाग को इंट्रोड्यूस करने के लिए मैंने हितोपदेश और भगवद गीता के जो अप्रोप्रिएट श्लोक है वहां पे लिखे हैं, उनको ट्रांसलेट किया है और कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड किया है। तो मैं सोचती हूँ कि जो मेरे पाठक हैं उनको डिफरेंट हर भाग में एक डिफरेंट फ्लेवर मिलेगा। पहले वो जानेंगे बोर्ड कैसे काम करते हैं, फिर इस समय हमारे सामने क्या चुनौतियां हैं, और तीसरे हिस्से में इन चुनौतियों का सामना करने के लिए क्या बदलना पड़ेगा।
1: जी शेफाली जी, आपने चुनौतियों की बात की, आपने किताब में चुनौतियों की बात की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने, बट किताब लिखना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। इस किताब को लिखने के लिए क्या कुछ चैलेंजेस फेस करना पड़ा, किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा आपको?
0: हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, जब आप किसी से भी बात करेंगे ना, उन्होंने अगर फिक्शन नहीं लिखी है, स्टोरीज नहीं लिखी है, नॉन फिक्शन लिखा है, बिजनेस के बारे में किताब लिखी है, वो आपको बताएंगे कि एक किताब, इस तरह की एक किताब, एक या दो मुख्य विचारों से शुरू होती है। फिर जब आप उनके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, शोध करना, रिसर्च करना शुरू करते हैं, तो आपके विचार विकसित भी होते हैं और बदलते भी हैं। जब ये बदलाव आना शुरू होता है, अगर आप जिद्दी या बंद दिमाग वाले हैं, तो ये जो बदलाव है इससे निपटना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है लोगों के लिए। अपने आप को ये कहना कि शायद मैं गलत थी, क्योंकि ये जो मैं शोध कर रही हूँ और ये जो रिसर्च पेपर्स मुझे बता रहे हैं, मेरा शुरुआत जिस विचार से मैंने किया था वो गलत था, विचार था। बहुत सारे लोग जो है यहीं पे हार मार के बैठ जाते हैं, उनकी किताबें कभी नहीं पब्लिश होती हैं क्योंकि वो खत्म नहीं करते। दूसरी चीज ये है कि मैं इस तरह की नॉन फिक्शन या बिजनेस की किताब दावे या अपनी मति के बारे में, अपनी ओपिनियन के साथ नहीं लिख सकती, मुझे प्रमाण देना पड़ेगा। उसका मतलब ये है कि आपको बहुत अच्छे शोध की जरूरत है, आपको जाके देखना चाहिए कि ये बातें किसने और डिस्कस की हैं, उन्होंने क्या पाया, उन्होंने अपनी रिसर्च की, उनकी क्या खोज में निकला, उनके क्या निष्कर्ष निकले। अगर आपका अनुसंधान में अच्छा ट्रेनिंग या प्रशिक्षण नहीं है तो ये एक कठिनाई हो सकती है, लेकिन कई बार लोग रिसर्च एसोसिएट्स को अपने साथ जोड़ लेते हैं और उनसे कहते हैं भाई तुम मेरे लिए ये काम कर दो, तो वो उसको भी आप हैंडल कर सकते हैं। तीसरी चीज ये है कि जब आप प्रकाशक आपका होता है, जैसे मेरे प्रकाशक हैं, वो आपको एक समय की सीमा देते हैं, डेडलाइन देते हैं, अगर आप उस समय की सीमा का सम्मान नहीं कर सकते तो आपकी किताब जो है वो थोड़ी पाठकों तक पहुंचने में तकलीफ होगी, क्योंकि एक किताब को पाठकों तक पहुंचाने में बहुत लोग शामिल होते हैं। कोई जना एडिटिंग करता है, कोई जना आपका कवर डिजाइन करता है, फिर आप प्रूफ रीडिंग करते हैं कि उसमें गलतियां और मिसस्पेलिंग, मिस्टेक और ये सब ना रह जाए, फिर लेआउट होता है कि आप इस तरह, आपकी जब हम किताब खोलते हैं तो ऐसा लगना चाहिए अरे वाह अच्छा अच्छी किताब है, उसमें जगह है पढ़ने की, कई बार अक्षर पास पास होते हैं, वो सब चीजें डिस्कस करी जाती है। तो ये काफी लोगों को चुनौतीपूर्ण हो सकता है, बिकॉज हमें फिनिश प्रोडक्ट जो आखिर में किताब है वो देखने की आदत है, हम कभी नहीं सोचते कि इसको बनाने में क्या गया, वो बहुत बड़ा चैलेंज होता है कई लोगों के लिए। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं बहुत भाग्यशाली थी कि जब मैं किताब पर रिसर्च कर रही थी और लिख रही थी, बहुत लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, बहुत सारे लोगों ने मेरे ड्राफ्ट पढ़े, स्पेलिंग मिस्टेक्स चेक की, मेरे साथ कुछ डिबेट, आप समझ लीजिए थोड़ा वाद विवाद करके मेरे पॉइंट्स को फाइन ट्यून करने में मदद की। तो हर

0: इस चुनौती का एक जवाब है, हमें अपने आस पास हमारा जो परिवार है, हमारे जो मित्र मंडल है, उनसे भी बात करने मौका मिलता है। और किताब लिखना एक बहुत अच्छा मौका है एक्चुअली। आप किसी को बोलते हैं मैं किताब लिख रही हूँ, वो इमीडिएटली आपसे पूछते हैं मैं क्या करूँ तुम्हारे को मदद करने के लिए।
1: शेफाली जी, ये तो किताब के सामने, लिखने के सामने जो चुनौतियां थी, क्या कुछ पाठकों के लिए इस किताब में और क्या कुछ आपने चाहा है जो किताब में दिए हैं?
0: सो देखिए, एक लेखक के रूप में मेरा लक्ष्य ये है कि हमारे पाठक हमारी दुनिया के बारे में जब सोचते हैं तो उसको एक जुड़ी हुई इकाई के रूप में सोचें। जैसा कि मैं पहले कह रही थी, टेक्नोलॉजी और जियोपॉलिटिक्स और जलवायु परिवर्तन, ये अलग अलग चीजें नहीं है, ये मिली जुली चीजें हैं और ये एक साथ जब मिलजुल जाती हैं तो हमारी चुनौतियां बढ़ जाती हैं। इंजीनियरिंग में इसको सिस्टम्स थिंकिंग कहते हैं। मेरी इच्छा ये है कि जब लोग किताब पढ़ें तो वो ये देखें कि एक कहानी अगर मैंने टेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में लिखी है, उसके जैसी एक और कहानी जियोपॉलिटिक्स में भी है, लेकिन उन दोनों को जोड़ के उनसे निष्कर्ष निकालना या किसी नई चीज का समाधान ढूंढना, वो काम पाठकों को खुद करना पड़ेगा। लेकिन मैं ये देखती हूँ, मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है अब तक कि मैंने तो किताब लिखती जो लिखती, लेकिन हर पाठक उस किताब को अपने खुद के दृष्टिकोण से पढ़ेगा। कुछ लोगों को जियोपॉलिटिक्स पढ़ने में मजा आ रहा है, कुछ लोगों को टेक्नोलॉजी पढ़ने में मजा आ रहा है, कुछ लोग बोर्ड्स में क्या होता है वो पढ़ के बड़े खुश हैं, और अब तक कई लोगों ने किताब पढ़ भी ली है तो मैं देखती हूँ लोगों ने क्या रिव्यूज लिखे हैं। कुछ लोगों ने कहा उन्होंने किताब को एक से ज्यादा बार पढ़ा है क्योंकि उन्हें क्लिष्ट लगी किताब। तो इसलिए मुझे लगता है कि हर जने ने एक अलग किताब पढ़ी है अपने दृष्टिकोण से। इससे मुझे ये लगता है कि मैं उन्हें दुनिया के जो ये डिफरेंट हिस्से हैं उनको दिखाने में कुछ हद तक सफल रही हूँ। तो मेरी उम्मीद ये है कि पाठक ये देखेंगे ये हिस्से आपस में एक साथ कैसे जुड़ते हैं, और जब ये जुड़ते हैं तो बेहतरी करने के और हमारे खुद के बेहतर होने के अवसर जो पैदा करते हैं, जो अपॉर्चुनिटीज हैं, उनकी ओर ध्यान दें, rather than challenges से हताश होकर बैठ जाएं।

0: शेफाली जी, फ्यूचर कोई प्लानिंग हो, कोई प्रोजेक्ट हो किसी नए बुक के लिए, तो कुछ उसके बारे में बताए क्या कुछ फ्यूचर प्लान है।
1: तो मुझे राजनीति में काफी दिलचस्पी है, आपके श्रोता अब तक समझ गए होंगे। ये जो दो चीजें हैं ये हमारे भविष्य को आकार देंगी, और मैंने किताब में भी ये लिखा है कि दुनिया के 60% युवा ग्लोबल साउथ में रहते हैं, और हम सबको आने वाली पीढ़ियों को समझने की जरूरत है। मेरी तरफ से मेरा प्रयत्न ये रहा है कि मैं समझने की कोशिश करूं, तो मैं पिछले 14 साल में भारत में पढ़ाती हूं, लेकिन हम देख रहे हैं अपनी क्लास में भी जैसे जैसे AI का इस्तेमाल बढ़ता है, जो हमारी जो युवा पीढ़ी है उनको क्रिटिकल थिंकिंग की बहुत जरूरत है। दूसरी बात ये है कि ग्लोबल साउथ को डेवलपमेंट फाइनेंसिंग भी चाहिए, और ये इसके बारे में भी मैंने किताब में लिखा है, लेकिन दुनिया की अधिकांश संपत्ति 80% संपत्ति ग्लोबल नॉर्थ में है। जब आप ये दोनों चीजें एक साथ जोड़कर सोचते हैं तो एक नया सवाल उठता है कि ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि हमारा भविष्य अगर इन सारे कारकों, इन सारे फैक्टर्स के साथ जुड़ने से बनेगा, हमारे भविष्य को आकार दिया जाएगा, तो काफी कठिन सवालों का हमें सामना करना पड़ेगा, हम छुप नहीं सकते उसे। तो मेरी उम्मीद ये है कि अगर मैं जब भी दूसरी किताब लिखूं तो ये विषय हमारी युवा पीढ़ियां, अधिकांश संपत्ति ग्लोबल नॉर्थ में होना, डेवलपमेंट फाइनेंसिंग, और एक भविष्य जिसमें सर्वे भवन्तु सुखिनः की आकांक्षा पूरी हो, मैं इन विषयों की जांच करने की कोशिश करूंगी।
0: बहुत बहुत शुक्रिया शेफाली जी, आपने हमें समय दिया, और जिस तरह से आपने जियोपॉलिटिक्स और क्लाइमेट चेंज की बात की, तो निसंदेह उस पर पूरी दुनिया की नजर है, और आपकी ये किताब पर भी, अनचार्टेड स्पेसेस पर भी। तो इस किताब के लिए सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आगामी फ्यूचर के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की यह बातचीत आपको पसंद आई होगी और आप भी इस पुस्तक को पढ़ने के लिए प्रेरित होंगे। इसी के साथ मुझे यानी राजीव को इस कार्यक्रम से दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे परिक्रमा कार्यक्रम के तहत चर्चित लेखिका शेफाली एम योगेंद्र की पुस्तक अनचार्टेड स्पेसेस के बारे में। इनसे बातचीत कर रहे थे राजीव तिवारी। आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है ये FM के 102.4 MHz पर। हमारा अगला कार्यक्रम है फिल्म संगीत का, सुनिएगा थोड़ी ही देर में।

आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत कार्यक्रम फिल्म संगीत। आज इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ मीरा शर्मा। सबसे पहले स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।

घोषाल की आवाजों में आपने सुना कृष फिल्म का ये गीत। गीत के बोल इब्राहिम अश्क ने लिखे थे और धुन बनाई थी राजेश रोशन ने। श्रोताओं, इस वक्त आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत।

रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। इस फिल्म का ये गीत आपने सुना, श्रेया घोषाल की आवाज़ थी, संगीत था प्रीतम का, और इस गीत के बोल लिखे थे अमिताभ भट्टाचार्य ने।

0: जिगर सरैया, प्रिया सरैया और साथियों की आवाजों में आपने सुना फिल्म शुद्ध देसी रोमांस का ये गीत। बोल लिखे थे जयदीप साहिनी ने और संगीत सचिन जिगर ने बनाई थी।
1: हेलो डॉक्टर,
2: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम।
1: हेलो डॉक्टर,
2: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-2960-445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657-2960-445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ।
1: हेलो डॉक्टर।

0: कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में आपने सुना फिल्म अकेले हम अकेले तुम का ये गीत। बोल लिखे थे मजरूह सुल्तानपुरी ने और संगीत अनु मलिक ने बनाई थी। और श्रोताओ, इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.4 MHz पर। शाम के 5 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र
1: अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज खेलगांव स्थित टिकैत ओमराव सिंह शूटिंग रेंज का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान खेल परिसर के रखरखाव की बदहाल स्थिति पर उन्होंने कड़ी नाराजगी जताई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं और अत्याधुनिक उपकरण उपलब्ध कराए जाएं। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने आज रामगढ़ के पदरातू में विस्थापितों की समस्याओं को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक की। ग्रामीणों ने भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के तहत लंबित मुआवजे और पुनर्वास की मांग उठाई। वित्त मंत्री ने विस्थापन को राज्य की सबसे बड़ी समस्या बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार इस मुद्दे को लेकर पूरी तरह संवेदनशील है। लोहरदगा स्थित डायट चिरे में आज से पलाश बहुभाषी शिक्षा कार्यक्रम के तहत 4 दिवसीय जिला स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण का शुभारंभ हुआ। 9 जुलाई तक चलने वाले इस शिविर का उद्घाटन अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी सीमा लकड़ा ने किया। प्रशिक्षण में जिले के 50 शिक्षक भाग ले रहे हैं। गुमला में भाजपा ने आज जिला अध्यक्ष सागर उरांव के नेतृत्व में डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती मनाई। इस अवसर पर पार्टी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के साथ ही पिछले पखवाड़े से चल रहे स्मृति दिवस कार्यक्रमों का समापन हुआ। साहिबगंज में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के माय भारत अभियान के तहत आज डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में वक्ताओं ने डॉ मुखर्जी को महान राष्ट्र नायक बताते हुए युवाओं से उनके जीवन से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। और लोहरदगा के उपायुक्त संदीप कुमार मीणा और पुलिस अधीक्षक सादिक अनवर ने आज परिसदन के समीप नवनिर्मित इंडोर स्टेडियम और आधुनिक जिम का संयुक्त रूप से लोकार्पण किया। उपायुक्त ने शेष कार्यों को समय पर पूरा करने और परिसर के नियमित साफ सफाई के निर्देश दिए। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
0: ये अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रसारित समाचार मुख्यांश। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 MHz पर। शाम के 5:02 हुए हैं। आइए सुनते हैं हमारे युवा साथियों का दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

0: नमस्कार।
1: शुभ संध्या साथियों, मैं क्षमाश्री
0: और मैं सरितम आज के युववाणी कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। आज 6 जुलाई के दिन हमारे देश के एक समर्पित राजनेता और स्वतंत्रता सेनानी श्री जगजीवन राम के पुण्यतिथि पर हम उन्हें सत सत नमन करते हैं। दोस्तों, जगजीवन जी का जन्म 5 अप्रैल 1908 को बिहार के

0: इलाहाबाद जिले के चंदवा नामक एक छोटे से गांव में हुआ था। पिता से उन्हें मानवीय मूल्यों और सूझबूझ विरासत में मिली।
1: जी हाँ, जीवन विभिन्न समस्याओं से भरे रहने पर भी उन्होंने उनका डटकर सामना किया। वे जीवन पर्यंत राष्ट्र सेवा और सामाजिक न्याय के लिए समर्पित रहे। साथियों, क्या आप जानते हैं बाबू जगजीवन राम जी को प्यार से बाबू कहा जाता था। वे एक बहादुर स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने भारत की आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
0: हाँ, आपने सही कहा। बाबू जगजीवन राम महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन से अत्यधिक प्रेरित थे। इसी प्रेरणा से उन्होंने सत्याग्रह में भाग लिया और 1940 में पहली बार गिरफ्तार हुए।
1: बाबू जगजीवन राम का आजादी का जुनून ऐसा था कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में उनकी सक्रियता देख अंग्रेजों ने उन्हें पुनः गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले 1934 में जब ब्रिटिश सरकार ने बिना भारतीयों की मर्जी के दूसरे देश को विश्व युद्ध में झोंका, तो उन्होंने विरोध में पूरे मंत्रिमंडल के साथ इस्तीफा दे दिया। उनका मानना था कि आजादी की लड़ाई में हर वर्ग शामिल हो, इसलिए उन्होंने ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस लीग जैसे संगठनों के जरिए दलित वर्गों को इस संघर्ष से जोड़ा। पता है सरितम, स्वतंत्रता से पहले 1946 में वे अंतरिम सरकार में श्रम मंत्री के रूप में शामिल हुए। उस समय कैबिनेट के वे सबसे युवा मंत्री थे। इसके बाद वे लगभग 33 से 35 वर्षों तक केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य रहे, जो भारतीय संसद के इतिहास में एक रिकॉर्ड है।
0: जी हाँ, और विभिन्न मंत्रालयों को संभालते हुए देश और समाज के लिए उन्होंने कई कार्य किए। श्रम मंत्री के रूप में उन्होंने श्रमिकों की सुरक्षा के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम और औद्योगिक विवाद अधिनियम और विवाद संदाय अधिनियम जैसे महत्वपूर्ण कानून बनाए। उन्होंने कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम और भविष्य निधि अधिनियम लागू कर देश में सामाजिक सुरक्षा की नींव रखी। साथ ही खाद्य एवं कृषि मंत्री के रूप में उन्होंने भीषण सूखे का सामना किया और भारत में हरित क्रांति को सफल बनाने में मुख्य भूमिका निभाई। उन्होंने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को दुरुस्त किया ताकि गरीबों को उचित मूल्य पर अनाज मिल सके और देश का खदान के मामले में आत्मनिर्भर बन सके।
1: बिल्कुल, और रक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने 1971 के युद्ध में भारत का शानदार नेतृत्व किया, जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का जन्म हुआ। संचार मंत्री रहते हुए उन्होंने डाक सुविधाओं को दूर दराज के गाँव तक पहुँचाया। साथ ही हवाई परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया, जिससे एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का उदय हुआ। और एक राजनेता होने के तौर पर उनका सबसे बड़ा योगदान था उप प्रधानमंत्री होने पर भी लोकतंत्र की रक्षा के लिए आपातकाल के खिलाफ आवाज उठाना।
0: अंततः आज के ही दिन 6 जुलाई 1986 के दिन इस महान राष्ट्रवादी नेता ने अंतिम सांस ली और एक गौरवशाली अध्याय का अंत हुआ। जगजीवन जी के हौसले को सलामी देते हैं और सुनते हैं ये देशभक्ति गीत।

0: आपने सुना ये गीत फिल्म योद्धा से, जिसके बोल लिखे थे मनोज मुंताशिर ने, संगीत दिया था तनिष्क बागची और आवाज थी बी पराग की।
1: बाबू जगजीवन राम जैसे व्यक्तित्व का सम्मान आज हर कोई करता है। उन्होंने एक राजनेता के तौर पर हर संभव कार्य किया। ऐसे ही हमारे देश की महिलाएं भी हर क्षेत्र में अपना योगदान दे रही हैं। 2017 से 18 में वो जो भागीदारी सिर्फ 23.3% थी, वो 23 से 24 में बढ़कर 42% पहुंच गई है।
0: बिल्कुल, सिर्फ संख्या ही नहीं, अर्थव्यवस्था में हमारा योगदान भी बढ़ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत की जीडीपी में महिलाओं का योगदान अब 30 से 32% तक है।
1: सही कहा। और सरितम, हमें उस बिना वेतन वाले काम को भी नहीं भूलना चाहिए जो महिलाएं घर पर करती हैं। SBI की एक रिसर्च कहती है, इस अवैतनिक घरेलू काम की कीमत देश की जीडीपी का लगभग 7.5% है। वाकई ये काम एकदम सच है, ये बात एकदम सच है। लेकिन क्या सरितम, ऐसा नहीं लगता कि कार्यस्थल पर आज भी महिलाओं के लिए राह उतनी आसान नहीं है?
0: हाँ क्षमा, मेरे मन की बात कह दी। आज भी भारत में महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले औसत रूप से 20 से 30% कम वेतन मिलता है और सीनियर मैनेजमेंट और लीडरशिप रोल्स में भी हमारी संख्या अभी सिर्फ 18% के आसपास ही है। और सबसे बड़ी समस्या तो मदरहुड पेनल्टी की है। कई बार इंटरव्यू के दौरान भी महिलाओं से उनके निजी जीवन और गर्भावस्था के बारे में सवाल पूछे जाते हैं, जो कि पूरी तरह गलत है। और कई बार महिलाओं को कम चुनौतीपूर्ण काम सौंपे जाते हैं या उन्हें कम सक्षम मान लिया जाता है। योग्य होने के बावजूद महिलाओं को वरिष्ठ नेतृत्व पदों तक पहुँचने से रोका जाता है। परंतु मुझे तो सबसे दुखदायी उन घटनाओं का लगता है जिसमें कार्यस्थल पर मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। पर अच्छी बात यह है कि हमारा कानून हमें बहुत सुरक्षा और सम्मान देता है। जैसे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के तहत महिलाओं को 12 की जगह 26 हफ्तों की सवैतनिक छुट्टी का अधिकार है। अगर कोई एम्प्लॉयर इस दौरान नौकरी से निकालता है तो उसके खिलाफ

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: कानून की बात चल ही रही है तो पॉश एक्ट 2013 को कैसे भूल सकते हैं। जिस भी संस्थान में 10 से ज्यादा कर्मचारी हैं, वहाँ एक इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी होना जरूरी है। अगर कोई वहाँ यौन उत्पीड़न का शिकार होता है तो उसे महीने के भीतर लिखित शिकायत दे दी जाती है। कानून तो अपनी जगह है सरितम, लेकिन समाज और आम लोगों का योगदान भी बहुत जरूरी है। जब तक घर के लोग दोहरी जिम्मेदारी में हाथ नहीं बटाएंगे और ऑफिस में सहयोगी साथ नहीं देंगे, तब तक बदलाव अधूरा है। कई एनजीओ और गुलाबी गैंग जैसे सामाजिक संगठन भी महिलाओं के हक के लिए जमीनी स्तर पर लड़ रहे हैं। कॉलेजों में छात्र पैरालीगल वॉलंटियर्स बनकर महिलाओं के अधिकार और उनके सम्मान को के लिए सबको जागरूक कर रहे हैं। सरितम, सुनते हैं कार्यस्थल पर कामकाजी महिलाओं के प्रति सम्मान पर युवाओं की क्या सोच है।
4: नमस्कार, हमारे साथ हैं पूजा शर्मा जो अभी टाटा स्टील में कार्यरत हैं। आइए उनसे जानते हैं कि वो महिलाओं के सम्मान पर क्या सोच रखती हैं। तो मैम, आपके अनुसार कार्यस्थल पर सम्मान का क्या मतलब है?
5: मेरे लिए सम्मान का मतलब है हर व्यक्ति की राय को बराबर महत्व देना, महिला हो या पुरुष, काम के आधार पर तारीफ करना, आलोचना करना और प्रमोशन देना, मजाक के नाम पर पर्सनल कमेंट ना करना भी सम्मान का ही रूप है।
4: बहुत बहुत धन्यवाद मैम। दूसरा प्रश्न मैं करूंगी कि क्या आपको लगता है आज भी कार्यस्थल पर महिलाओं को बराबरी का दर्जा मिला है? अगर है तो क्यों, और अगर नहीं तो क्यों?
5: देखा जाए तो पहले के मुकाबले बहुत बदलाव आया है। आज महिलाएं सीईओ हैं, लीडर हैं, सब बन रही हैं, लेकिन अभी भी कुछ जगहों पर यह काम लड़कियों का नहीं है या शादी के बाद छोड़ देंगी, ऐसी सोच दिख रही है। जो 100% बराबरी अभी बाकी है। कार्यक्रम में सुरक्षा और आरंभ को लेकर कंपनी ने कई कदम उठाए हैं।
4: बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बस एक आखिरी प्रश्न है कि टीम में मजाक मस्ती होती है और इसी के नाम पर बहुत टिप्पणियां भी की जाती हैं, तो आप इसको कैसे हैंडल करती हैं?
5: मैं तुरंत टोकती हूँ, कहती हूँ भाई ये जोक नहीं, डिसरेस्पेक्ट है। माहौल हल्का रखना जरूरी है, पर किसी की इज्जत की कीमत पर कभी नहीं।
4: बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपके समय के लिए।
6: वाकई जब सरकार, समाज और हम खुद जागरूक होंगे तभी सही मायने में महिलाओं का सम्मान होगा। आखिर देश तभी उड़ सकता है जब उसके दोनों पंख, पुरुष और महिला, बराबर मजबूत हों। महिलाओं के सम्मान और जज्बे से पूर्ण सुनते हैं ये गीत।

0: अरे सरितम, कार्यस्थल से याद आया, तुम्हारी पहली कमाई कितनी थी?
1: मेरी पहली कमाई तो मात्र 100 रुपए थी।
0: और तुमने उसका क्या किया?
1: मैंने उससे एक किताब खरीदा था जो अब भी मेरे पास है।
0: अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो मतलब शायद तुम्हें वित्तीय साक्षरता का अर्थ पता होगा।
1: वित्तीय साक्षरता मतलब?
0: देखो, वित्तीय साक्षरता का सीधा और सरल अर्थ होता है अपने पैसों को समझदारी से संभालना। ये आपको सिखाता है कि कमाई को कैसे खर्च करें, कहाँ बचाएं, कैसे अपने भविष्य को सुरक्षित करें।
1: अच्छा, ऐसे में तो इसके कई फायदे होंगे।
0: हाँ, जैसे कर्ज के जाल से बचना, अपने बड़े लक्ष्य जैसे कि आगे की पढ़ाई या अपना अपार्टमेंट ले पाना। और तुम्हें ये भी पता चलता है कि तुम्हारे पैसे कहाँ जा रहे हैं। साथ ही बैंक, म्यूचुअल फंड्स या सरकारी स्कीम्स में पैसे डालकर उसे आने वाले समय के लिए बचाने की समझ भी बढ़ती है।
1: हाँ, और साथ ही बीमारी और नौकरी छूटने जैसे इमरजेंसी के लिए हमारे पास हमेशा पैसे अलग से तैयार रहते हैं। क्षमाश्री, आप अपने वित्त साक्षरता के लिए कहाँ से नॉलेज लेती हैं?
0: देखो सरितम, मैं तो अधिकतर किताबें पढ़ती हूँ, साथ ही पॉडकास्ट, वीडियोस, ये सारे साधन काफी सहायक हैं। और काफी ऑनलाइन कोर्सेज भी होते हैं। तो सरितम, तुम अपने पैसे कैसे संभालती हो?
1: मैं तो अधिकतर पैसों को अलग अलग जरूरत के हिसाब से बांट के रखती हूँ, ताकि सभी जरूरतें पूरी भी हो और चिंता भी कम हो। पर इसके अलावा भी कई तरीके हैं, जैसे 50-30-20, यानी कि अपने कमाई के या पैसे के 50% को जरूरतों पर, 30% को इच्छाओं पर खर्च करें और 20% अनिवार्य रूप से बचाएं।
0: और साथ ही सरितम, हर महीने खर्च करने से पहले अपनी बचत राशि को अलग निकाल दो। अपनी एक इमरजेंसी फंड भी बना सकती हो, जिसमें 3 से 6 महीने के खर्च के बराबर राशि को किसी भी सुरक्षित सेविंग अकाउंट में तुम रख सकती हो।
1: दोस्तों, साथ ही आप क्रेडिट कार्ड के जाल से बचें। इसका इस्तेमाल तभी करें जब आप महीने के अंत में पूरा बिल चुका सके और जितनी जल्दी हो सके SIP एवं म्यूचुअल फंड में निवेश करें, ताकि आप कंपाउंडिंग का लाभ उठा पाएं। तो

0: बहुत हो गई वित्तीय साक्षरता की बातें, आइए चलते हैं समसामयिक खबरों की ओर। आज का अधिकतम तापमान है 30 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान है 26 डिग्री सेल्सियस। भारी बारिश की संभावना है तथा खेल जगत में कई बड़े इतिहास रचे गए। फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड ने मेजबान मेक्सिको को 3-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली। एक अन्य रोमांचक मुकाबले में नॉर्वे ने ब्राजील को 2-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली। और इंग्लैंड मेक्सिको के मैच में तो जूड बेलिंगहैम ने 98 सेकेंड में 2 गोल मारकर इतिहास ही रच दिया। इसी के साथ साथ दुख की बात ये हुई कि ब्राज़ील के नेमार ने रिटायरमेंट की घोषणा की। उनके फैंस इस बात से काफ़ी दुखी हैं। भारतीय क्रिकेट की बात करूं तो क्रिकेट टीम के युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी T20 इंटरनेशनल डेब्यू करने कल डेब्यू किया। कैप नंबर 122 पाकर वे इतने खुश हुए कि खुशी से रो पड़े। दूसरी तरफ ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेट से इंग्लैंड को हराकर जबरदस्त जीत हासिल की। इसके साथ मैं क्षमाश्री और सरितम
1: आपसे विदा लेते हैं, दोबारा मिलेंगे जरूर।
0: तब तक के लिए बारिश का मजा लें, भुट्टे और गरम गरम चाय पकौड़ियाँ खाएं और अपना ख्याल रखें। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5:30 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारे श्रमिक बंधुओं का दैनिक कार्यक्रम कल कारखाने।

कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रमिक भाइयों को मालती का नमस्कार। श्रमिक श्रोताओं, आधे घंटे के इस कल कारखाने कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम आपको बताएं कि आज विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जा रहा है। विश्व जूनोसिस दिवस हर वर्ष 6 जुलाई को मनाया जाता है। जूनोसिस ऐसी बीमारियों के प्रति जागरूक करने के लिए मनाया जाता है जो संक्रमण की बीमारी है। साफ शब्दों में कहें तो यह बीमारी जानवरों से मनुष्यों में और मनुष्य से जानवरों में फैलती है। जब यह बीमारी मनुष्य से जानवरों में फैलती है तो उसे रिवर्स जूनोसिस कहते हैं। श्रोताओं, हमें पशु पक्षियों से प्यार तो होता है, खासकर वैसे पालतू जैसे गाय, भैंस, बकरी, बिल्ली और मछलियों को तो हम पालते भी हैं और इसका ख्याल भी रखते हैं, लेकिन इन जानवरों के संग में रहने में बहुत सी सावधानियां भी रखनी पड़ती हैं। ये संक्रमित क्योंकि अगर इन्हें सावधानी से न रखा जाए तो ये संक्रमित हो सकते हैं और फिर आप में भी वो संक्रमण आ सकता है। इसलिए संक्रमण बीमारी के प्रति जागरूक करने के लिए ही हर वर्ष आज के दिन को मनाया जाता है। जूनोसिस के रोगजनक बैक्टीरिया, वायरस या परजीवी हो सकते हैं जो या तो सीधे या भोजन से या हवा के माध्यम से मनुष्य में या मनुष्य से जानवर में फैल सकते हैं। जूनोसिस वायरस में HIV, इवोला वायरस, बर्ड फ्लू, वॉर्म आदि बीमारियां हैं। जूनोटिक बीमारी के खिलाफ पहला टीकाकरण 6 जुलाई 1885 को लुई पाश्चर द्वारा विकसित किया गया था। तभी से यह दिवस लोगों को जागरूक करने के रूप में जाना जाने लगा। इन्होंने रेविज वायरस के खिलाफ पहला टीका सफलतापूर्वक प्रकाशित किया था। जूनोसिस रोग की रोकथाम और नियंत्रण के लिए अलग अलग तरीके हैं। कृषि क्षेत्र में जानवरों की देखभाल के लिए सुरक्षित और उपयुक्त दिशा निर्देश जैसी कुछ प्रथाएं खाद्य जनित जूनोटिक रोग की संभावना को कम करने में मदद कर सकती है। स्वच्छ पेयजल और अपशिष्ट हटाने के मानकों के साथ साथ प्राकृतिक वातावरण में सतही जल की सुरक्षा भी ऐसी बीमारी के प्रसार को रोकने के प्रभावी तरीके हो सकते हैं। उचित स्वच्छता बनाए रखना, जानवरों के संपर्क में आने के बाद हाथ धोना जूनोटिक रोगों के सामुदायिक प्रसार को कम कर देता है। अतः साफ सफाई का उचित ध्यान रखें। अगर आप किसी पालतू के साथ रह रहे हैं तो अपने पेट के का पूरा ध्यान रखें, टीकाकरण अवश्य कराएं और उन्हें भी साफ सुथरे ढंग से रखें। सही तरीका अपनाकर आप संक्रमित होने से बच सकते हैं।

फिल्म स्वातन का ये गीत था। आवाज किशोर कुमार की थी, शब्द रचना सावन कुमार की और संगीत था उषा खन्ना का। और आइए श्रोताओं, अब आपको हम जानकारी देते हैं ई श्रम कार्ड निबंधन से संबंधित। ई श्रम कार्ड निबंधन और इसके लाभ विषय पर बता रहे हैं राज

देश के असंगठित एवं ग्रामीण क्षेत्र के श्रमिकों के कल्याण हेतु ई श्रम कार्ड योजना की शुरुआत 26 अगस्त 2021 को की है। इस महत्वपूर्ण योजना के तहत असंगठित एवं ग्रामीण क्षेत्र के श्रम शक्ति अपना निबंधन करा सकते हैं। इस योजना के तहत भारत सरकार NDUW जिसको नेशनल डाटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स नामक डाटाबेस तैयार कर रही है, ताकि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को पूरे देश में एक विशिष्ट पहचान संख्या जो 12 डिजिट का है, जिसे हम यूनिवर्सल अकाउंट नंबर कहते हैं, जारी किया जा सके। अब ई श्रम कार्ड के तहत हम पंजीकरण क्यों करेंगे, इस पर श्रम शक्ति को बताना आवश्यक है। पहला उद्देश्य यह है कि देश के असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करना चाहती है भारत सरकार। दूसरा यह है कि यह डाटाबेस असंगठित श्रम शक्ति के लिए नीति और कार्यक्रम बनाने में सरकार की सहायता करेगी। तीसरा यह है कि जो अनौपचारिक क्षेत्र से औपचारिक क्षेत्र में श्रमिकों की आवाजाही है और इसके विपरीत उनके व्यवसाय, कौशल विकास, रोजगार आदि पर नजर रखने के लिए इस तरह का पंजीकरण जरूरी है। चौथा यह है कि जो प्रवासी श्रमिक हैं, उनको ट्रैक करने और उन्हें अधिक से अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए यह पंजीकरण आवश्यक समझा जा रहा है। पांचवा यह है कि इस डाटाबेस के द्वारा केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, राज्य सरकारों द्वारा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को लागू करना तथा इमरजेंसी एवं राष्ट्रीय आपदा की स्थिति में जो निबंधित श्रम शक्ति हैं, उनको आवश्यक सहायता प्रदान करना। और छठा यह है कि जो नेशनल डेटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स है, के तहत जो भी श्रमिक पंजीकृत किए जाते हैं, वे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ भारत के बैंकों के माध्यम से ले सके। अब हम ई श्रम कार्ड में निबंधन के लिए योग्यता क्या है, इस पर चर्चा करते हैं। इसके लिए श्रमिकों का उम्र 16 से 59 वर्ष के होने चाहिए, चाहे वह महिला हो या पुरुष। दूसरा यह है कि वह आयकर दाता नहीं होना चाहिए, किसी तरह का कोई इनकम टैक्स नहीं दें। तीसरा यह है कि उनका इम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में या इम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस में कोई अंशदान उनका नहीं कटना चाहिए, कहीं वह रोजगार में नहीं जुड़े हुए हों। और चौथा यह है कि वह असंगठित श्रेणी में काम करता हो। असंगठित श्रमिक में कौन कौन से कैटेगरी के श्रमिक आते हैं, यह जानना बहुत जरूरी है। इसके तहत घरेलू कामगार, जिसको हम डोमेस्टिक वर्कर बोलते हैं, गली में फेरा लगाने वाले श्रमिक, ठेला खोमचा लगाने वाले, मध्यान्ह भोजन कर्मकार, सिर पर बोझा ढोने वाले, ईंट भट्टा में काम करने वाले श्रमिक, धोबी हुआ, मोची हुआ, कूड़ा चुनने वाले, रिक्शा चालक, ग्रामीण भूमिहीन श्रमिक, कृषि श्रमिक, निर्माण कर्मकार, हथकरघा कर्मकार, दृश्य श्रव्य कर्मकार, आंगनवाड़ी सेविका, मनरेगा कर्मी, जल सहिया, स्वास्थ्य कर्मी, पारा शिक्षक, ड्राइवर, कूली, रेजा, फल एवं सब्जी विक्रेता, सेल्स बॉय, सेल्स गर्ल, निजी दुकानों में काम करने वाले नौकर, दर्जी, मिठाई बनाने वाले कारीगर या बेचने वाले, बढ़ई, होटल के नौकर, वेटर, इलेक्ट्रीशियन, पेंटर, प्लम्बर, पत्थर तोड़ने वाले खदान मजदूर, मछुआरा, चरवाहा, मूर्तिकार, सफाई कर्मी, पंचर बनाने वाले, ब्यूटी पार्लर की वर्कर, नाई, वेल्डिंग वाला, सभी पशुपालक दूध बेचने वाले हों, वार्ड बॉय, मंदिर के पुजारी, पेपर का होकर आदि, ये सभी असंगठित श्रेणी के श्रमिक कहलाते हैं। अब आइए ई श्रम कार्ड प्राप्त करने के लिए हम कहाँ निबंधन करेंगे, इसकी जानकारी मैं देता हूँ। इसके तहत श्रम जगत के लोग जो श्रमिक हैं, वे

अपना निबंधन प्रज्ञा केंद्र या लोक सेवा केंद्र या CSC जिसको बोलते हैं कॉमन सर्विस सेंटर या CSP भी बोला जाता है कस्टमर सर्विस पॉइंट में निशुल्क निबंधन कराया जा सकता है। इसमें किसी तरह का कोई फीस नहीं लगती है और इसका फीस का वहन भारत सरकार स्वयं करती है। अपने मोबाइल से भी ई श्रम पोर्टल के माध्यम निबंधन किया जा सकता है और आवेदन के लिए क्या क्या जरूरी दस्तावेज आपको लेकर के जाना होगा इसकी मैं जानकारी देना चाहता हूँ। पहला है आपका आधार कार्ड लेकर के जाएं, आधार नंबर होना बहुत जरूरी है। दूसरा है अपना आधार के साथ जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर तथा तीसरा है आपका बैंक का सारा डिटेल जो है बैंक खाता नंबर IFSC कोड ब्रांच का नाम बैंक का नाम आदि सब देना जरूरी होगा। आइए इस योजना के तहत अगर हम निबंधन कराते हैं अगर हम ई श्रम कार्ड बना लेंगे तो इसका क्या लाभ हमको जो है भविष्य में मिलेगा इस पर चर्चा करते हैं। पहला लाभ यह है कि निबंधित लाभुक का सामान्य मृत्यु होने पर 1,00,000 रुपया प्रदान किया जाता है उनके नॉमिनी को जो है यह लाभ सरकार जो है प्रदान करेगी। दूसरा लाभ यह है दुर्घटना से अगर किसी निबंधित श्रमिक का मृत्यु हो जाता है तो परिवार के सदस्यों को 2,00,000 रुपया की आर्थिक सहायता केंद्र सरकार करेगी और अगर मान लिया पूर्ण विकलांगता की स्थिति आ जाती है एक्सीडेंट के बाद तो 2,00,000 रुपया दिया जाता है और आंशिक विकलांगता की स्थिति में सरकार 1,00,000 रुपये का आर्थिक सहायता लाभुक को प्रदान करेगी। तीसरा है चिकित्सा सहायता योजना। इसके तहत निबंधित श्रमिक को सरकार चिकित्सा हेतु अधिकतम 25,000 रुपये का आर्थिक सहायता प्रदान करती है। चौथा है प्रसूति सहायता योजना। इस योजना के तहत निबंधित महिला श्रमिकों को 2 बार माँ बनने पर प्रति बच्चे 15,000 का भुगतान जो है एकमुश्त किया जाता है। यह लाभ 2 बच्चों तक ही दिया जाता है। पांचवा है श्रमिक कार्ड धारकों को अभी सरकार 500 रुपये उनके खाते में आर्थिक सहायता के रूप में भेज रही है। यह राशि उनको 4 महीने तक कुल 2,000 रुपया प्रदान किया जाएगा। छठा है पेंशन लाभ। इस योजना के तहत ई श्रम कार्डधारियों को सरकार 3,000 रुपया जो है पुरुष श्रमिकों को पेंशन दे रही है तथा महिलाओं को 1,500 रुपये दिए जाने का प्रावधान। सातवां है छात्रवृत्ति सहायता योजना। निबंधित असंगठित श्रमिकों के अधिकतम 2 बच्चों को कक्षा 1 से लेकर इंजीनियरिंग मेडिकल में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को सरकार की ओर से प्रतिमाह छात्रवृत्ति दिए जाने का प्रावधान है। कक्षा 1 से लेकर के 4th तक अगर कोई छात्र है तो उसको 250 रुपया मिलेगा, छात्रा को भी 250 रुपया सरकार देगी। दूसरा है कक्षा 5वीं से 8वीं तक अगर छात्र है तो उसको 500 रुपया प्रदान किया जाएगा वार्षिक छात्रवृत्ति और छात्रा है तो उसको 950 रुपया जो है दिए जाने का प्रावधान है। तीसरा है कक्षा 9वीं अगर छात्र है तो उसको 700 रुपया दिया जाएगा, अगर छात्रा है तो उसको 1,100 रुपया दिए जाने का प्रावधान किया गया है। कक्षा 10वीं में अगर कोई पढ़ रहा है लड़का है तो उसको 1,400 रुपये दिए जाने का प्रावधान है और लड़की अगर है तो उसको 1,800 रुपये दिए जाने का प्रावधान। कक्षा 11वीं से 12वीं तक छात्र को 3,000 रुपया दिए जाने का प्रावधान है और छात्रा को 3,400 रुपये दिए जाने का प्रावधान है। उच्च शिक्षा गैर तकनीकी एवं गैर व्यवसायिक पाठ्यक्रम में कोई अगर लड़का पढ़ रहा है BSc कर रहा है MSc कर रहा है MA कर रहा है BA कर रहा है BCom कर रहा है MCom कर रहा है कोई छात्र है तो उसको 4,000 रुपया जो है सालाना मिलेगा और कोई लड़की है तो उसको भी 4,000 रुपया प्रति वर्ष छात्रवृत्ति के रूप में प्रदान किया जाएगा। अगर कोई इंजीनियरिंग तथा मेडिकल में जो है अध्ययनरत है तो ऐसे छात्र एवं छात्राओं को प्रति वर्ष 8,000 रुपया छात्रवृत्ति देने का प्रावधान इस योजना के तहत किया गया है। इसके लिए भारत सरकार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय टोल फ्री नंबर भी हेल्पलाइन भी जारी किया है। वह नंबर इस तरह है 1433401233899928। आप अपने मोबाइल में जो है वेबसाइट के माध्यम से कंप्यूटर में वेबसाइट के माध्यम से www.eshram.gov.in टाइप करके भी इसके बारे में सारा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब तक भारत में निबंधित श्रमिकों की संख्या कितना है इसके बारे में मैं श्रम शक्ति को जो है बताना चाहता हूँ। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 2 मई 2021 को जो आंकड़ा जारी किया गया है उसके तहत अब तक देश में लगभग 25 करोड़ श्रमिक अपना निबंधन कराकर ई श्रम कार्ड प्राप्त कर चुके हैं और भारत सरकार चाह रही है, उनका टारगेट है भारत सरकार का कि पूरे देश में जो है 38 करोड़ श्रमिकों का निबंधन इस योजना के तहत कराना है। ये सरकार जो है भविष्य के लिए कौन सी योजनाएं
मना

0: रही है। सरकार का क्या विजन और मिशन है, इस पर मैं श्रमिकों को सूचित करना चाहता हूं। भविष्य में केंद्र सरकार असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों को बिना ब्याज के कर्ज देने पर विचार कर रही, ताकि वह रोजगार के क्षेत्र में जुड़ सकें। जो ग्रामीण क्षेत्र में हैं वह गाय पालन कर सकें, मछली पालन कर सकें, सुकर पालन कर सकें, बकरी पालन कर सकें इत्यादि, पंप मशीन खरीद करके खेती बाड़ी में जो है अपना ध्यान दे सकें और रोजगार से जुड़ सकें, छोटा मोटा बिजनेस कर सकें, छोटा मोटा दुकान कर सकें। यह उनका सरकार का उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य यह है कि लाखों लोगों के पास अभी भी जो है हमारे देश में दिहाड़ी मजदूरों के पास उनका घर नहीं है, तो केंद्र सरकार चाह रही है कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उनके तहत उनको आर्थिक सहायता प्रदान किया जाए। अगर आपका रजिस्ट्रेशन इसमें किया गया है तो उसको सरकार को जो है सॉर्ट आउट करने में, उनको ट्रेस करने में, उनको आइडेंटिफाइड करने में, जो है सही टारगेट ग्रुप को पहचानने में सरकार को बहुत सुविधा होगी। सरकार ऐसा योजना बना रही है। और तीसरा है कि अभी भी लाखों करोड़ों श्रमिक जो है भारत में, उनका कोई कौशल नहीं है, कोई स्किल नहीं है, इसलिए उन्हें कोई रोजगार प्राप्त नहीं हो पा रहा। तो सरकार चाह रही है कि श्रमिकों को आइडेंटिफाइड करके उनको उनका हुनर विकसित किया जाए, ताकि उन्हें जो है रोजगार से जोड़ा जा सके। सरकार इस तरह का योजना जो है बना रही है, और इस दिशा में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार बहुत तेजी से काम कर रही है। उनको ट्रेनिंग देने की बात हो रही है, दिया भी जा रहा है, और उनका हुनर विकसित किया जा रहा है। जगह जगह पर ट्रेनिंग सेंटर खोला जा रहा है, ताकि वह भविष्य में जो है अच्छा श्रम शक्ति के रूप में बन करके और भारत का सामाजिक आर्थिक विकास में जो है अपना योगदान दे सके। इसलिए भारत सरकार ने एक नारा दिया है, श्रमेव जयते। और अभी भारत सरकार बहुत संवेदनशील है श्रम शक्ति के विकास में जो है, और दिन रात इसके लिए काम कर रही है।
1: ई श्रम कार्ड निबंधन एवं इसके लाभ, इस विषय पर जानकारी दे रहे थे राजकिशोर गोप। श्रोताओं, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना भारत सरकार द्वारा गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को पोषण के लिए आर्थिक सहायता देने की एक कल्याणकारी योजना है। इसके तहत पहले बच्चे के लिए 5,000 रुपये और दूसरा बच्चा लड़की होने पर 6,000 रुपये की कुल सहायता सीधे बैंक खाते में दी जाती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को मजदूरी की आंशिक क्षतिपूर्ति करना है, ताकि वे गर्भावस्था के दौरान पर्याप्त आराम कर सकें और उन्हें पौष्टिक आहार मिल सके। इससे मातृ मृत्यु दर और कुपोषण को कम करने में मदद मिलेगी। इस योजना के तहत प्रथम जीवित संतान को 5,000 रुपये की राशि 2 किस्तों में दी जाती है। पहली किस्त 1,000 रुपये गर्भावस्था के पंजीकरण पर और दूसरी किस्त प्रसव पूर्व कम से कम एक जांच और बच्चे के जन्म के पंजीकरण पर 4,000 रुपये दी जाती है। यदि दूसरी संतान बालिका है तो 6,000 रुपये की एक मुश्त सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक महिला की उम्र कम से कम 19 वर्ष होनी चाहिए। केंद्र या राज्य सरकार की नियमित महिला कर्मचारी या किसी अन्य कानून के तहत समान लाभ प्राप्त करने वाली महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। गर्भावस्था पर पता चलने के बाद तुरंत ही नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र या आशा कार्यकर्ता से संपर्क कर निःशुल्क पंजीकरण कराएं। इसके लिए माता का आधार कार्ड, बैंक खाता, पासबुक एवं मातृ एवं शिशु संरक्षण कार्ड आवश्यक है। आप ऑनलाइन फॉर्म भी भर सकते हैं। और आइए अब कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवा रहे हैं ये गीत।

फिल्म उजाला का ये गीत था। लता मंगेशकर एवं मन्ना डे की आवाजें थीं। शब्द रचना हसरत जयपुरी की थी और संगीत था शंकर जयकिशन का। श्रोताओं, इस गीत के साथ ही हमारा आज का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। दीजिए मालती को अनुमति। नमस्कार।

हमारे श्रमिक बंधुओं का दैनिक कार्यक्रम कल कारखाने अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 MHz पर। शाम के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। स्थानीय इंडोनेशियाई समुदाय और प्रवासी भारतीय समुदाय ने प्रधानमंत्री मोदी का पारंपरिक भारतीय और इंडोनेशियाई प्रस्तुतियों के साथ भव्य और उत्साहपूर्ण स्वागत किया। प्रधानमंत्री श्री सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता गए हैं। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकार्ता जाएंगे। संदीप दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ 3रे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा है कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से सहकारी आंदोलन एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में श्री शाह ने कहा कि प्रत्येक क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली 5 सहकारी समितियों को मान्यता देने के लिए एक रैंकिंग ढांचा घोषित किया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज राष्ट्रीय राजमार्ग माल परिवहन प्रबंधन लिमिटेड की समीक्षा बैठक की। बैठक में देश भर में बनाए जा रहे बहुमाध्यम माल परिवहन पार्क, रोपवे और राजमार्गों के किनारे यात्रियों के लिए विकसित की जा रही सुविधाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। श्री गडकरी ने कहा कि इससे सड़क, रेल और अन्य परिवहन साधनों के बीच बेहतर संपर्क स्थापित होगा। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि तकनीक आधारित द्विभाषी प्रबंधन शिक्षा से देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच शिक्षा की दूरी कम करने में मदद मिलेगी। नई दिल्ली से भारतीय प्रबंध संस्थान उदयपुर के नए ऑनलाइन द्विभाषी व्यवसाय प्रशासन स्नातक पाठ्यक्रम के उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि द्विभाषी व्यवस्था के कारण भारतीय प्रबंध संस्थानों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचेगा। मौसम विभाग ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। आज असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में तेज बारिश की संभावना है। पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बिजली और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। अगले 3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों से गुजरात, हरियाणा और पंजाब के कुछ भागों के साथ राजस्थान में आगे बढ़ने का अनुमान है। उधर महाराष्ट्र के अधिकतर हिस्सों में लगातार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। मुंबई और कोंकण क्षेत्र में बाढ़ और भूस्खलन से इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं तथा सड़क, रेल और हवाई परिवहन में भारी व्यवधान देखा जा रहा है। पूरे राज्य में अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं।

बाजार का संवेदी सूचकांक आज 521 अंक बढ़कर 78,285 पर बंद हुआ। निफ्टी 160 अंक की बढ़त के साथ 24,430 पर दर्ज हुआ। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में देर रात 12:30 बजे पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। एक अन्य मुकाबले में सुबह 5:30 बजे अमेरिका का सामना बेल्जियम से होगा। इससे पहले इंग्लैंड ने मैक्सिको को और नॉर्वे ने ब्राजील को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: अभी आप आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित अंग्रेजी में समाचार सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM 102.4 MHz पर। शाम के 6:10 हुए हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम झारखंड के लोकगीत।
1: कार्यक्रम झारखंड के लोकगीत में आपका स्वागत है। कार्यक्रम के साथ मैं हूं प्रवीण सेठी। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कुरमाली लोकगीत से। कलाकार हैं पटेल महतो और साथ ही

0: कार्यक्रम झारखंड के लोकगीत के तहत अभी आप सुन रहे थे कलाकार पटेल महतो और साथियों की आवाज में कुरमाली लोकगीत। और अब मुझे यानी प्रवीण को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: कार्यक्रम झारखंड के लोकगीत अभी आप सुन रहे थे।

आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 MHz पर। शाम के 6:20 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित संस्कृत में समाचार।

0: केन्द्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह अद्य अवदत् यत् सहकार आन्दोलनं परिष्कारस्य अंकीकरणस्य व्यावसायिक प्रबन्धनस्य च माध्यमेन विस्तारस्य नूतने चरणे प्रविशति। सहकारिता मंत्रालयस्य पञ्चमं स्थापना दिवसं संबोधयन् श्री शाह अवदत् यत् प्रत्येकस्मिन् क्षेत्रे पञ्चसु उत्तम प्रदर्शन सहकार संस्थानां परिचयं कर्तुं श्रेणी संरचना घोषिता अस्ति। गृहमंत्री श्री शाह सहकारिता मंत्रालयस्य प्रशंसाम् अकरोत् यत् विगत पञ्चवर्षाणि यावत् सहकारस्य माध्यमेन समृद्धेः मंत्रस्य अनुसरणं कृत्वा कोटिशः जनानां जीवनं परिवर्तितमस्ति।
1: हमने कृषि ऋण, डेयरी, उर्वरक वितरण और ग्रामीण सेवाएं, ये सभी को प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम किया है। सेकेंडरी और टर्सरी क्षेत्रों में भी उस

आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से प्रसारित संस्कृत में समाचार अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM 102.4 MHz पर। शाम के 6:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं हमारे किसान बंधुओं का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत।

श्रोता मित्रों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं चर्चा से। चर्चा का विषय है पेड़ लगाओ जीवन बचाओ। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव मनाया जा रहा है। ऐसे में ग्रामीण श्रोता मित्रों, पेड़ लगाओ जीवन बचाओ केवल एक नारा ही नहीं बल्कि पृथ्वी पर स्वस्थ जीवन का मुख्य आधार है। पेड़ हमें ताजी ऑक्सीजन देते हैं, हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं और पर्यावरण को संतुलित रखते हैं। अधिक पेड़ लगाने से प्रदूषण कम होता है, वर्षा होती है और जलवायु परिवर्तन का खतरा टलता है। ग्रामीण भाई बहनों, अगर हम पर्यावरण संरक्षण की बात करें तो पेड़ हमारे जीवन चक्र का सबसे अहम हिस्सा है। इसमें हमें कई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ मिलते हैं। वृक्ष धरती के फेफड़े कहलाते हैं, जो हवा को फिल्टर करके हमें सांस लेने के लिए ताजा ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। पेड़ बादलों को आकर्षित करते हैं और मिट्टी की नमी बनाए रखते हैं, जिससे भूमिगत जल स्तर बढ़ता है और अकाल की स्थिति से बचाव होता है। पेड़ों की जड़ें मिट्टी को कसकर रखती हैं, जिससे बाढ़ और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं का खतरा कम होता है। श्रोता मित्रों, लाखों जीव जंतु और पक्षियों का घर जंगल ही होते हैं, जो हमारी जैव विविधता को बनाए रखते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक वन महोत्सव मनाया जा रहा है। ऐसे में हमारा संकल्प और कुछ जिम्मेदारी भी है। आज के समय में अंधाधुंध पेड़ों की कटाई के कारण पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है। हमें अपने जन्मदिन, शादी या किसी भी शुभ अवसर पर कम से कम एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए और उसकी देखभाल करनी चाहिए। कहने का तात्पर्य है श्रोता मित्रों, पर्यावरण को हरा भरा रखने और धरती को बचाने के लिए पेड़ पौधे लगाने के महत्व को समझना होगा। अंतिम व्यक्ति को इस कार्य में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करनी होगी, क्योंकि वन है तो कल है, यानी हमारा भविष्य है।

श्रोता मित्रों, और अब बात वीबीजी रामजी योजना की। जी हां, ग्रामीण श्रोता मित्रों, वीबीजी रामजी योजना मनरेगा के स्थान पर शुरू की गई एक नई ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है। यह योजना 1 जुलाई 2026 से पूरे देश में लागू हो चुकी है। इसके तहत ग्रामीण परिवारों को साल में 100 दिनों के बजाय 125 दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी और न्यूनतम 300 रुपये प्रतिदिन मजदूरी मिलती है। कहने का मतलब है, योजना के तहत पंजीकृत ग्रामीण परिवारों को हर वर्ष 125 दिनों का कुशल रोजगार सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसमें ग्रामीण श्रमिकों के लिए मजदूरी दरों में औसतन 10% की बढ़ोतरी की गई है, जिससे देश के किसी भी राज्य में दैनिक मजदूरी 300 रुपए से कम नहीं होगी। भ्रष्टाचार रोकने के लिए मजदूरी सीधे लाभार्थियों के बैंक या डाकघर खातों में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती है। यह भी सुनिश्चित किया गया है कि श्रमिकों को 15 दिनों के अंदर मजदूरी का भुगतान कर दिया जाए। इस योजना के सुचारू संचालन के लिए केंद्र सरकार ने हजारों करोड़ रुपए का भारी बजटीय प्रावधान किया है। श्रोता मित्रों, इस योजना का उद्देश्य केवल मजदूरी देना ही नहीं, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में टिकाऊ और

0: स्थायी संपत्तियों जैसे तालाब, सड़क, सिंचाई व्यवस्था का निर्माण करना भी है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको अपने क्षेत्र के ग्राम पंचायत या रोजगार सेवक से संपर्क करना होगा। केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर योजना संबंधी दिशा निर्देश देखे जा सकते हैं। और अब श्रोता मित्रों, रुख करते हैं भेंटवार्ता की ओर। जी हाँ, बाह्य ध्वनि अंकन पर आधारित भेंटवार्ता का प्रथम प्रसारण आज हम सुनने वाले हैं। विषय है वन संरक्षण में वन महोत्सव की भूमिका। इस विषय पर हमें जानकारी दे रहे हैं श्री अविरूप सिन्हा। तो चलिए सुनते हैं।
1: जैसा कि आप जानते हैं कि वन का एक अपना एक अलग महत्व है। मनुष्य की बात करें, पशुओं की बात करें, जीव जंतुओं की बात करें, वनों के बिना किसी की कल्पना नहीं की जा सकती, सब अधूरे हैं। और अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान में काफी विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है। ऐसे में राज्य सरकार की बात करें या केंद्र सरकार की बात करें, वनों के संरक्षण पर लगातार कार्य किए जा रहे हैं, कई योजनाएं चलाई जा रही हैं और भी लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि लोग जो हैं इसके महत्व को समझे। आप जैसे श्रोता मित्रों, आप जानते हैं कि 1 जुलाई से 7 जुलाई तक हम वन महोत्सव मनाते हैं, पर वन महोत्सव मनाने के पीछे क्या कुछ कारण है, क्यों मनाया जाता है और भी बहुत सारी ढेर सारी जानकारियों को हम साझा करने वाले हैं। सारंडा वन प्रमंडल चाईबासा, जहां वन प्रमंडल पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित हैं श्री अविरूप सिन्हा जी, जो इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे ढेर सारी जानकारियों को साझा करने वाले हैं। सर, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, नमस्कार।
2: जी नमस्कार, धन्यवाद।
1: सर, सर्वप्रथम आप बताएं कि 1 जुलाई से 7 जुलाई तक तो वन महोत्सव मनाया जा रहा है, तो वन महोत्सव की शुरुआत 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच होती है और हम सभी जानना चाहते हैं कि मॉनसून के शुरुआत में ही यह दिवस क्यों मनाया जाता है। सर,
2: जैसा कि आप जानते होंगे कि लगभग जैसे ही हमारे आजादी के साथ साथ ही वन महोत्सव का जो पर्व है वो अपने आप में उसके साथ ही शुरू हुआ, तो लगभग हम लोग आजादी के जितने वर्षों से इस वन महोत्सव को मना रहे हैं। इसका महत्व यही है कि जो कम्युनिटी है, जो ओवरऑल जो सोसाइटी जिनके लिए हम लोग संरक्षण का काम करते हैं
1: जी,
2: उनके साथ हम लोग मिलके जैसे ही वर्षा ऋतु का आगमन होता है, हम आम ग्रामीणों के साथ मिलके, जो भी हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके साथ मिलके इसका एक आगमन शुरू कर देते हैं, ताकि आने वाले जो रिमेनिंग मानसून में लोग अपने स्वइच्छा से भी कंजर्वेशन की ओर, मोर प्लांटेशन की ओर अपने भी स्टेप्स ले सके। तो ये एफर्ट है फ्रॉम द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन जनरल कि कम्युनिटी एट लार्ज को हर साल हम लोग एक बार अवेयर कर देते हैं कि ये प्लांटेशन सीजन आ गया है और आप उन इस प्लांटेशन सीजन में एक हिस्सेदार बनकर इसको बड़े पैमाने में इसको प्रोत्साहन दिया जा सके।
1: हाँ, मतलब अपनी सहभागिता सुनिश्चित करे, अंतिम व्यक्ति तक इसमें अपना जो है वो समर्थन दे और अपनी सहभागिता सुनिश्चित करे। सर, सर वन महोत्सव मनाने की परंपरा की शुरुआत कब से हुई और हमें क्या संदेश मिलता है, इस साल क्या संदेश आधारित है, किस विषय पर हम लोग वन महोत्सव मना रहे हैं?
2: हमारा वन महोत्सव हर वर्ष की तरह इस बार भी हम लोग, जैसा कि आपने कहा कि जुलाई के फर्स्ट वीक में हम लोग मना रहे हैं, बट इसको हम लोग इस तक सीमित ना रखें, क्योंकि वन महोत्सव का कोई ऐसा लिमिटेशन नहीं है कि वन वीक सेलिब्रेशन ही रहता है। वन महोत्सव का मूल महत्व यही है कि हम लोग प्रत्येक वर्ष अपने वर्षा ऋतु में आगमन के समय एक परंपरागत तरीके से उसका बिगुल बजाते हैं कि हाँ भाई, हमने मॉनसून में ये प्लांटेशन सीजन स्टार्ट हो गया है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इज जस्ट एक तरह से हम लोग डाकवाहक हैं जो कम्युनिटी एट लार्ज को ये कन्वे कर रहे हैं कि इसका महत्व क्या है, और उसके बाद तो कम्युनिटी के पार्टिसिपेशन से हर, जैसे एक पेड़ माँ के नाम एवं अन्य सरकारी योजनाओं के माध्यम से हम लोग, जैसे जनवन योजना हो या अन्य जो भी सरकारी योजनाएं हैं उनके माध्यम से हम लोग कम्युनिटी पार्टिसिपेशन फॉर फॉरेस्ट्री पर्पसेस या एवेन्यू फॉरेस्ट्री को हम लोग बढ़ावा देने के लिए सरकार निरंतर प्रेरित कर रही है।
1: जी अच्छा सर, जैसा आपने बताया कि एक पेड़ माँ के नाम, जिस तरह से केंद्र सरकार की बात करें, राज्य सरकार की बात करें, तो लगातार वनों के संरक्षण के लिए और वन महोत्सव के जरिए लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जाता है, तो वृक्षों के संरक्षण के लिए क्या क्या नए अभियान की और भी शुरुआत हो रही है, या पुराने अभियानों से क्या कुछ सीख लेने की जरूरत है लोगों को, आम लोगों को सर?
2: इसमें सर्वप्रथम जैसे आपने ये लास्ट क्वेश्चन यही पूछा था कि हम लोगों का ये जो इनिशिएटिव है ये आज का नहीं है।
1: जी जी
2: हमारा जो भी इनिशिएटिव्स रहे हैं वो राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ 1950, लगभग 1950 के टाइम में डॉक्टर के एम मुंशी सर थे हमारे यूनियन में, उस वक्त फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का पार्ट हुआ करता था। तो एक तरह से ये फेस्टिवल ऑफ ट्रीज के रूप में, वन महोत्सव के रूप में इसको स्टार्ट किया गया राइट फ्रॉम द एज ऑफ 1950। तब से लेके अनेकों विभिन्न, जैसे ग्रीन इंडिया मिशन हो गया, नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम हो गए, एट डिफरेंट स्टेज ऑफ टाइम, जैसे 1950 की फॉरेस्ट पॉलिसी थी तो उस वक्त की प्रायोरिटीज पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के हिसाब से हम लोगों ने प्रायोरिटाइज किए, कंजर्वेशन फॉरेस्ट्री, प्रोडक्शन फॉरेस्ट्री साथ में चला। बट 1988 के पॉलिसी के बाद देश का जैसा प्रायोरिटी ऑफ द गवर्नमेंट हुए, नेशनल प्रायोरिटीज के हिसाब से हमारे स्कीम्स भी इवॉल्व करने लगे। झारखंड में भी अगर आप देखें तो समय समय पर, चाहे बिरसा हरित योजना हो या जनवन योजना हो, सरकार के स्तर से फॉरेस्ट में अनेकों स्कीम्स इंप्लीमेंट किए गए। जैसे अभी अगर आप देखें तो झारखंड में अभी भी गवर्नमेंट के स्तर से जनवन योजना का क्रियान्वयन बड़े व्यापक रूप से किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त हम लोग निरंतर देखते हैं कि जैसे कैंपा, बहुत ही महत्वपूर्ण एक एक्ट आया 2016 में, जिसके तहत कैंपा कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन थी, जैसे हम लोग डेवलपमेंट के कारण जो भी वृक्षों का पातन करना पड़ता है या डाइवर्जन करना होता है फॉरेस्ट लैंड को, उसको प्रतिपूरक वन रोपण के रूप में हम लोग कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन को स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन मिलता है। तो ये बहुत एक महत्वपूर्ण स्तर होता है कि जिसमें हम लोगों ने ये प्रयास किया कि ओवरऑल जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन जो है वो प्रायोरिटी में रहे। तो झारखंड में भी उसी तरह से निरंतर हम लोग हर संभव तरीके से, चाहे कम्युनिटी को इन्वॉल्व करके जेएफएमसी मूवमेंट्स के माध्यम से, अन्यथा जो भी पार्टिसिपेटरी प्लांटेशन के माध्यम से, हम लोग हर संभव प्रयास करते रहे हैं कि ये वृक्षारोपण हमारे प्राथमिकता में रहे।
1: जी सर, एक अंतिम प्रश्न है कि जो ग्लोबल वार्मिंग आज के समय में एक चुनौती है, ऐसे में वन महोत्सव इस पर कैसे काम कर रहा है सर?
2: जैसे कि आप जानते हैं कि इंडिया का जो नेशनली डिटरमिंड कंट्रीब्यूशन है, उसके तहत हम लोगों ने ये एक वचनबद्धता दी है कि हम लोग अपने स्तर से, जैसे नेट जीरो का एक टारगेट हम लोगों ने लिया हुआ है और एनडीसीज में भी हम लोगों ने एमिशन रिडक्शन के साथ साथ, तो इसी प्रक्रिया में हमारा जो नेट जो ग्रीन हमारा जो इनफ्लक्स है, जो हम लोग नेट कार्बन जो स्टोरेज के हमारे जो भी एवेन्यूज है, उसमें फॉरेस्ट का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। उसमें अगर आप देखें तो फॉरेस्ट के जो एग्जिस्टिंग स्टॉक्स है, उसको ना सिर्फ हमें कंजर्व करना है, उसका कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के रूप में उसको बढ़ावा देना है, और साथ ही साथ उसके हमारे ये भी हर संभव प्रयास करना है कि उसका जो एडिशनल रेजिलियंस के लिए और एमिशन को जस्ट ट्रैप करने के लिए, तो हमें प्लांटेशंस को भी बढ़ावा देना है। तो इसके लिए हम लोग वचनबद्ध है और आने वाले समय में इसके जो भी हमारे एनडीसीज के अनुरूप हम लोग वृक्षारोपण को और बढ़ावा देना चाहेंगे।
1: जी सर, इतनी अच्छी जानकारी आपने हमारे श्रोताओं के साथ साझा की है। सर अंत में आप हमारे जो श्रोता मित्र इस समय सुन रहे हैं, आप उन्हें क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे?
2: संदेश के रूप में हम लोग यही कहना चाहेंगे कि क्योंकि वन विभाग के जो क्षेत्राधिकार हैं वो लिमिटेड है, ओनली फॉरेस्ट एरियाज या फॉरेस्टेड ज्यूरिसडिक्शन में ज्यादातर हम लोग वृक्षारोपण करते हैं।
1: जी।
2: तो अब जो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट में, जैसे कि आप देखते हैं कि फॉरेस्ट के बाहर, ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट भी, हमारा जो स्कोप ऑफ प्लांटेशन है वो ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट ज्यादा है। फॉरेस्ट को हमें प्रोटेक्ट करना है, वो हमारा प्रायोरिटी है कि जो एग्जिस्टिंग कवर है उसको हम लोग एज फार एज पॉसिबल हम लोग उनको प्रोटेक्ट
1: जी
2: करें, जो भी कंट्री के डेवलपमेंटल प्रायोरिटीज को बैलेंस आउट करते हुए, बट एट द सेम टाइम जहाँ पे हमारा स्कोप है वो
1: जी
2: हमारा एक्चुअल में ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट है, चाहे वो गवर्नमेंट लैंड्स हो चाहे वो रैयत लैंड्स हो,
1: जी
2: जहाँ पे भी लोग, क्योंकि न्यू अमेंडमेंट्स टू द फॉरेस्ट एक्ट के माध्यम से सरकार एक तरह से प्रमोट कर रही है कि आप सिक्योर तरीके से अपने रैयत लैंड्स में, प्राइवेट लैंड्स पे फॉरेस्ट

0: आप रेज करें और उसको प्रमोट करें कि हमारे ग्रीन कवर को वो कंट्रीब्यूट करें, क्योंकि अल्टीमेटली कार्बन फिक्सेशन में सबसे, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में फॉरेस्ट्स का और ट्रीज का ही सबसे बड़ा रोल है. तो ट्री
1: जी
0: आउटसाइड फॉरेस्ट इज अ इमेंस पोटेंशियल एरिया, और साथ ही साथ हम लोग को प्रोटेक्शन के वैल्यूज को मतलब बनाए रखना है, क्योंकि हम लोग एज अ स्टेट झारखंड, हम लोग बहुत सक्सेसफुली फॉरेस्ट को सालों से प्रोटेक्ट किए हैं, और जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के टारगेट्स हैं उसको परिपूर्ण है, हम लोग ऑलमोस्ट हम लोग उसको अचीव करते हैं. तो 33% का अगर फॉरेस्ट कवर एंड ट्री कवर देखा जाए तो स्टेट झारखंड कंप्लीट करता है. तो हम लोगों को ना सिर्फ अपने फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है और नए एरियाज में एक्सपेंशन के लिए कम्युनिटी एट लार्ज को पार्टिसिपेट करना बहुत श्रेयस्कर होगा.
1: बिल्कुल सर। सर, वन महोत्सव के संबंध में इतनी अच्छी जानकारी अपने हमारे ग्रामीण श्रोता मित्रों के साथ साझा की है। हमें उम्मीद है कि इस महोत्सव के पीछे जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य में जितने भी हमारे श्रोता मित्र सुन रहे हैं, वो अपनी सहभागिता अवश्य सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि वन है तो फिर कल है। क्योंकि मनुष्य, वन्य जीव जंतुओं की बात करें, पशु पक्षियों की बात करें, तो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के साथ सबका संबंध है। तो सर, इतनी अच्छी जानकारी आपने हमारे साथ साझा की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: अनेकों धन्यवाद प्रवीण जी, बहुत धन्यवाद.
2: श्रोता मित्रों, बाह्य ध्वनि अंकन पर आधारित भेंटवार्ता का प्रथम प्रसारण अभी आप सुन रहे थे। विषय था वन संरक्षण में वन महोत्सव की भूमिका। इस विषय पर हमें जानकारी दे रहे थे श्री अविरूप सिन्हा जी। और श्रोता मित्रों, बात इस महीने सब्जियों के बुआई की तैयारी के संबंध में। जी हाँ श्रोता मित्रों, जुलाई का महीना बरसात का होता है, इसलिए इस समय भिंडी, लौकी, तुरई, करेला, खीरा और मूली जैसी सब्जियों की बुआई की जा सकती है। इसके अलावा टमाटर, मिर्च, बैंगन और फूलगोभी के पौधों के लिए नर्सरी तैयार करने का सबसे बेहतरीन समय है। ग्रामीण भाई बहनों, चूंकि अब बारिश का मौसम है, इसलिए खेत या क्यारियों में पानी बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए। जल निकासी की अच्छी व्यवस्था करें। खेत की 2 से 3 बार अच्छी जुताई करके मिट्टी को भुरभुरा बना लें। बुआई से पहले खेत में अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद और बेसल डोज जैसे DAP या पोटाश मिलाएं। सब्जियों को समतल जमीन के बजाय उठी हुई क्यारियों पर बोना सबसे अच्छा रहता है। इससे बारिश में जड़ें सड़ती नहीं है। कम समय में अधिक लाभ और बेहतरीन उत्पादन के लिए हमेशा प्रमाणित बीजों का ही चयन करें। श्रोता मित्रों, लौकी, तुरई, करेला जैसे बेल वाली सब्जियों को जमीन पर फैलाने के बजाय मचान या जाल का प्रबंध करें। इससे फलों में सड़न नहीं होती और पैदावार शानदार मिलती है। बारिश के मौसम में फफूंद और कीड़ों का खतरा अधिक होता है। बुआई के समय ही मिट्टी में उचित कीटनाशक और बीज उपचारित अवश्य कर लें।

और अब एक नजर मौसम संबंधी सूचना पर। जी हाँ श्रोता मित्रों, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली और भारत मौसम विज्ञान विभाग के केंद्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावा और इसके आसपास के क्षेत्रों में आसमान में बादल छाए रहेंगे। कुछ जगहों पर बहुत हल्की बारिश हो सकती है, साथ ही गरज चमक और बिजली गिरने की संभावना है। तेज हवाएं चल सकती है जिनकी गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। सप्ताह के दौरान दिन का अधिकतम तापमान 26 से 31 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 19 से 24 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। अगर हम दिनांक 7 जुलाई की बात करें यानी मंगलवार की, तो वर्षा 5 मिलीमीटर होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 91% और न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 66% होने की संभावना है। हवा की दिशा होगी उत्तर से पश्चिम की ओर तथा रफ्तार रहेगी 11.5 किलोमीटर प्रति घंटे। श्रोता मित्रों, मौसम सुझाव के संबंध में एक नजर डाल लेते हैं। धान की नर्सरी यदि 20 से 25 दिन की हो गई हो तो तैयार खेतों में धान की रोपाई शुरू करें। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 20 सेंटीमीटर तथा पौध से पौध की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। उर्वरकों में 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस, 40 किलोग्राम पोटाश और 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर की दर से डालें तथा नील हरित शैवाल एक पैकेट प्रति एकड़ का प्रयोग उन्हीं खेतों में करें जहां पानी खड़ा रहता हो, ताकि मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाई जा सके। जिन किसान भाई बहनों ने धान की पौधशाला लगा ली है, वे बकानी रोग के लिए पौधशाला की

निगरानी करते रहें तथा लक्षण पाए जाने पर कार्बेंडीजम 2.0 ग्राम प्रति लीटर पानी घोलकर छिड़काव करें। धान की पौधशाला में यदि पौधों का रंग पीला पड़ रहा है, लौह तत्व की कमी हो सकती है। पौधों की ऊपरी पत्तियां यदि पीली और नीचे की हरी है तो यह लौह तत्व की कमी दर्शाता है। इसके लिए 0.5% फेरस सल्फेट के साथ 0.25% चूने के घोल का छिड़काव आप अवश्य करें। इस मौसम में किसान भाई बहनों, मक्का फसल की बुआई करें। संकर किस्में AH 421, AH 58 तथा उन्नत किस्में पूसा कंपोजिट 3, पूसा कंपोजिट 4। आपको बता दें, बीज किसी प्रमाणित स्रोत से ही खरीदें। बीज की मात्रा 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 18 से 25 सेंटीमीटर रखें। मक्का में खरपतवार नियंत्रण के लिए एट्राजीन 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर 800 लीटर पानी में घोल कर छिड़काव आसमान साफ होने पर करें। श्रोता मित्रों, इस मौसम सूचना और सुझाव के बाद अंत में हम सुनते हैं कलाकार अंजलि महतो और साथियों की आवाज में कुरमाली लोकगीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे किसान बंधुओं का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के रांची केंद्र से होगा। सुनेंगे चंद विज्ञापन और विचारों के बाद शाम 7 बजे से प्रादेशिक समाचार।

0: भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: बदलो बदलो आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। सहकारिता से समृद्धि मिशन का देशव्यापी जश्न, नई दिल्ली के मुख्य कार्यक्रम में शामिल हुए झारखंड के लैंपस प्रतिनिधि। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जारी किया नया रैंकिंग ढांचा। मुख्यमंत्री ने की खेल और पर्यटन विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा। रांची खेलगांव शूटिंग रेंज का किया औचक निरीक्षण। खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं देने के निर्देश। भाजपा ने 14वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा परिणाम में विसंगतियों का आरोप लगाकर की सीबीआई जांच की मांग। मेंस की तैयारी के लिए मात्र 16 दिनों का समय देने पर जताई आपत्ति। हजारीबाग, चतरा, लातेहार और पलामू में आज भारी से बहुत भारी वर्षा की चेतावनी। रांची और गुमला सहित मध्य भागों में तेज बारिश जारी। और राजधानी रांची में आज से 39वीं राष्ट्रीय अंडर-9 शतरंज चैंपियनशिप शुरू। देश भर से जुड़े 400 से अधिक बाल खिलाड़ी। और अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली के भारत मंडपम में सहकारिता मंत्रालय के 5 वर्ष पूरे होने पर राष्ट्रीय स्तर के भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर सहकारी संस्थाओं को आधुनिक और पारदर्शी बनाने के लिए एक नए रैंकिंग ढांचे की शुरुआत की। श्री शाह ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में सहकारी प्रणाली को आधुनिक, पारदर्शी, प्रौद्योगिकी सक्षम और प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में सराहनीय कार्य किया गया है।
3: सहकारिता मंत्रालय के इनिशिएटिव से कुल 9 राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली सहकारी समिति बनाकर देश से लेकर ग्राम तक ये 9 क्षेत्रों में सहकारिता मंत्रालय को एक माला में पिरोने का काम हमने किया है।
2: इस मुख्य समारोह में झारखंड के सरायकेला खरसावां सहित कई जिलों से लैंप्स प्रतिनिधियों और सहकारिता विभाग के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बच्चों के समग्र विकास और पोषण संबंधी देखभाल के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के समर्पण और सेवा भाव की सराहना की है। उन्होंने कहा कि विकसित और आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव इन्हीं बच्चों पर टिकी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज झारखंड मंत्रालय में अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस दौरान उन्होंने पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद और युवा कार्य विभाग के अद्यतन कार्य प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने विभागीय योजनाओं को गति देने और खेल तथा सांस्कृतिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज खेलगांव स्थित शूटिंग रेंज का औचक निरीक्षण किया। परिसर के रख रखाव की बदहाल स्थिति पर कड़ी नाराजगी जताते हुए उन्होंने अधिकारियों को समयबद्ध कार्य योजना बनाने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने स्वयं राइफल से निशाना साधा और खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं देने की बात कही। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने आज रामगढ़ के पदरातू में विस्थापितों की समस्याओं को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक की। ग्रामीणों ने भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के तहत लंबित मुआवजे और पुनर्वास की मांग उठाई। वित्त मंत्री ने विस्थापन को राज्य की सबसे बड़ी समस्या बताया।
4: सबसे बड़ी समस्या विस्थापन की समस्या। भारतीय जनता पार्टी इस राज्य में अधिक वर्षों तक शासन की। पूंजीपतियों से उनका लगाव रहा, विस्थापितों के साथ उनका कोई लेना देना नहीं। लेकिन सरकार ने काफी गंभीरता से इस विषय को लिया है कि विस्थापित जो हुए हैं उनके सामाजिक आर्थिक सुरक्षा की पूरी जिम्मेवारी हेमंत सोरेन की सरकार लेने वाली।
2: 14वीं जेपीएससी सिविल सेवा पीटी परीक्षा के परिणाम में कथित विसंगतियों को लेकर सियासत तेज हो गई है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने परिणाम को रद्द करते हुए पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है।
5: झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन झारखंड का भविष्य बर्बाद करने वाला आज के दिन में आयोग बन गया है। बड़ा खतरा है। जेपीएससी एग्जामिनेशन क्रिमिनल ऑफेंस छात्रों के साथ जो संबंधित लोग हैं सबके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। ये सरकार छात्रों के सपनों को तोड़ने का काम कर रही है, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है।
2: नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने पाकुड़ जिले में सड़क निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण में अनियमितता और लंबित मुआवजे का मामला उठाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि जांच रिपोर्ट में अधिक भूमि पर कब्जे की पुष्टि के बावजूद रैयतों को वर्षों बाद भी मुआवजा नहीं मिला। श्री मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस मामले में हस्तक्षेप कर निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर आज राजधानी रांची समेत राज्यभर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस कड़ी में कोडरमा के डोमचांच में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू और विधायक डॉ. नीरा यादव शामिल हुई। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधरोपण किया। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने राज्य की वर्तमान कानून व्यवस्था और राजनीतिक विरोधाभास पर गहरी चिंता व्यक्त की।
0: प्रकार से इस राज्य में सरकार चल रही है, ये तो ना तो झारखंड के लिए भला है ना झारखंड के लोगों के लिए भला है। जन विरोधी सरकार है और हम तो बार बार करते आए हैं कि सरकार जनता के भला के लिए काम करने वाली सरकार नहीं है, ये स्वार्थों का गठबंधन है। जहाँ स्वार्थ का गठबंधन होता है वहाँ पर राज्य और जनता का भला नहीं होता।
2: राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की सदस्य आशा लकड़ा ने रांची सर्किट हाउस में अनुसूचित जाति समुदाय से जुड़े 15 मामलों की सुनवाई की। बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर उन्होंने बताया कि रिम्स 2 परियोजना की भूमि और बोकारो के बैधकारों में नियम उल्लंघन के मामलों पर अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गई है। आयोग ने निर्देश दिया है कि जांच पूरी होने तक इन विवादित स्थलों पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न किया जाए।
6: रिम्स 2 की बात ये सरकार का निर्णय है, उनको जो करना है करना चाहिए, लेकिन आयोग के सामने जो विषय सामने आया है इस विषय पर जब तक संज्ञान में है तब तक को यथावत रखे और आगे जब पूरा निर्णय आ जाए सुनवाई का तब वो आगे का कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन विशेष रूप से हम रिम्स का रिव्यू करेंगे और उसमें जो एक्शन टेकन रिपोर्ट वो बना के देंगे, छानबीन करेंगे।
2: बोकारो प्रक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक शैलेंद्र कुमार सिन्हा ने आज धनबाद में वरीय पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने जिले में संगठित अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाने और अपराधियों के नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त करने के कड़े निर्देश दिए। हाल ही में फरार अपराधी प्रिंस खान द्वारा जनप्रतिनिधियों को मिली कथित धमकी के सवाल पर IG ने कहा कि उसके खिलाफ लगातार कानूनी कार्रवाई जारी है।
7: इंक्वायरी मुझे करनी थी पुलिस मुख्यालय के आदेश के आलोक में और जो मैटर रिलेटेड था उसके संदर्भ में हमने SSP साहब को बताया था और उसमें क्या प्रोग्रेस हुआ तो उसी की जानकारी लेनी थी, इसीलिए सारे पुलिस अधीक्षकों के साथ बड़े पुलिस अधीक्षक से हमारी बात हुई। हमारी पूरी टीम उसके पीछे लगी हुई है और काम कर रही है, चाहे उनकी सुरक्षा लेकर हो चाहे और भी कोई कार्रवाई हो।
2: मौसम। राज्य में अगले 5 दिनों तक तेज आंधी बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी है। आज विशेष रूप से हजारीबाग, चतरा, लातेहार और पलामू जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है, जबकि रांची और गुमला सहित कई मध्य जिलों में भी तेज बारिश जारी है। मौसम विभाग ने कल धनबाद सहित उत्तर पूर्वी भागों में भारी वर्षा की चेतावनी देते हुए लोगों को सतर्क रहने को कहा है। राजधानी रांची एक बार फिर राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता की मेजबानी कर रही है। सरला बिरला विश्वविद्यालय परिसर में आज से 39वीं राष्ट्रीय अंडर-9 ओपन एवं गर्ल्स शतरंज चैंपियनशिप की शुरुआत हुई है। 12 जुलाई तक चलने वाली इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में विभिन्न राज्यों से 438 बाल खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। सहकारिता से समृद्धि मिशन का देशव्यापी जश्न। नई दिल्ली के मुख्य कार्यक्रम में शामिल हुए झारखंड के लैंप्स प्रतिनिधि। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जारी किया नया रैंकिंग ढांचा। मुख्यमंत्री ने की खेल और पर्यटन विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा। रांची खेलगांव शूटिंग रेंज का किया औचक निरीक्षण। खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं देने के निर्देश। भाजपा ने 14वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा परिणाम में विसंगतियों का आरोप लगाकर की सीबीआई जांच की मांग। मेंस की तैयारी के लिए मात्र 16 दिनों का समय देने पर

0: बोल बोल के थक गया।
1: क्या हुआ?
0: नया किडबैग चाहिए।
1: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
0: करेक्ट।
1: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले आ गया नया किडबैग।
2: RBI कहता है
3: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
4: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे पश्चिम सिंहभूम जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे चाईबासा संवाददाता।
1: पश्चिमी सिंहभूम जिले में आजादी के बाद स्थापित हुई पहली औद्योगिक इकाई के बंद होने की घोषणा के बाद स्थानीय लोग आंदोलित हैं। यहां झीकपानी स्थित एसीसी की सीमेंट फैक्ट्री, जिसे अडानी ग्रुप ने हाल ही में अधिग्रहित किया है, उसे बंद करने की घोषणा कर दी गई है। इस बात को लेकर स्थानीय मजदूर और पोषक क्षेत्र के ग्रामीण रोजी रोजगार को लेकर चिंतित हैं। जिला प्रशासन एवं राज्य व केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग को लेकर प्रदर्शन और पदयात्राएं भी स्थानीय लोगों ने निकाली और लोगों को अभी भी यह उम्मीद है कि एसीसी अडानी की यह देश की सबसे पुरानी फैक्ट्री फिर से खुल जाएगी।
2: सबका यही विचार है दोबारा से प्लांट सुचारू रूप से चले और खदान भी बढ़िया से चले। सारे लोग का यही विचार है वहाँ फिर से लोगों का जीवन यापन का जो साधन है सुचारू रूप से हो और सारे लोग जमीन देने के लिए भी तैयार है और सब कोई एक मंच में आज इस पदयात्रा के माध्यम से लोगों को यही मैसेज देने के लिए आए हैं। कंपनी को सहयोग करना होगा तो उस कंपनी को सहयोग करेंगे।
1: जिले में बरसात के आरंभ होते ही मलेरिया का प्रकोप बढ़ गया है। जिले के विभिन्न अस्पतालों में मलेरिया से पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग द्वारा मलेरिया जांच से लेकर उसके उपचार की सारी व्यवस्थाएं सदर अस्पताल से लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तक की गई हैं। जल जमाव वाले इलाकों में कीटनाशक के छिड़काव के लिए नगर परिषद इलाकों और ग्रामीण इलाकों में कर्मियों को लगाया गया है। जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर जुझार मांझी ने बताया कि साफ सफाई रखने से मलेरिया जैसी जानलेवा बीमारी से बचा जा सकता है। उन्होंने एक संदेश जारी करते हुए लोगों से मलेरिया से बचाव के लिए कई सुझाव दिए हैं।
3: मलेरिया का प्रसार का अभी सीजन है। गांव में सभी अस्पताल में प्रायः देखा जा रहा है कि मलेरिया से लोग पीड़ित हो रहे हैं। सभी से मैं अनुरोध और आग्रह करता हूं कि जब भी आप सोएं रात में मच्छरदानी लगा के सोएं, अपने घर के अगल बगल जितने भी पानी जमाव है उसको समाप्त करें। मलेरिया रोधी जो छिड़काव IRS होता है अपने घर के अंदर में जरूर कराएं। किसी को बुखार सरदर्द या किसी तरह का मलेरिया का लक्षण अगर नजर आए या महसूस हो आप निकटस्थ स्वास्थ्य केंद्र में जाके जांच और उपचार सुनिश्चित करें। आपके सहयोग से ही पश्चिमी सिंहभूम जिला को मलेरिया मुक्त बनाया जा सकता है। मुझे पुनः आपसे अनुरोध और आग्रह होगा किसी को भी अगर बुखार हो, बदन हाथ में दर्द हो, सिर दर्द हो तो निकटस्थ स्वास्थ्य केंद्र में जाके अपनी जांच और उपचार सुनिश्चित कराएंगे, तभी हम लोग जिले को मलेरिया मुक्त बना पाएंगे। धन्यवाद।
1: जैसा कि आपको मालूम है पश्चिमी सिंहभूम जिला मलेरिया के मामले में रेड जोन माना जाता है, इसलिए इस मौसम में इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग विशेष सतर्कता बरत रहा है। दिलीप बनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा।
0: अभी आप सुन रहे थे पश्चिमी सिंहभूम जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम जिले में आजकल अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 MHz पर। प्रस्तुत है बंगला कार्यक्रम।

0: मन की बात प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
1: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
0: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें, मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
1: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।
2: नमस्कार जमशेदपुर का एक अलग अंदाज,
3: ज्ञान विज्ञान
4: इतिहास के पन्नों से,
3: सेहत और बॉलीवुड की बातें,
2: मौसम का मिजाज,
3: अपने शहर की खबरें,
4: बातों मुलाकातों के साथ
2: सुरीला मनोरंजन
3: और भी बहुत कुछ।
2: आप सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में दिन के 11:05 से 12 बजे तक
4: आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से।
5: नमस्कार जमशेदपुर।
6: हेलो मन भावन, आप सुनेंगे नए अंदाज में मेरे यानी निमिषा के साथ। प्रत्येक रविवार दिन के 11 बजे आकाशवाणी जमशेदपुर के विविध भारती केंद्र से 100.8 मेगाहर्ट्ज पर। आपके फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक बुधवार दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे के बीच। हमारा टेलीफोन नंबर है 2960445 और कोड है 0657। तो आप भी जुड़ जाइए हेलो मनभावन कार्यक्रम से।

आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात के 8 बजे ही प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत।

दोस्तों, सुबह से ही हल्की फुल्की, कभी रुकती कभी थमती और कभी तेज लगातार बारिश हो रही है। तरबतर है धरती और लहलहा रहे हैं पेड़ पौधे, जैसे लगता है उन्हें बहुत सुकून मिला हो तपती गर्मी से। इंतजार था इस बारिश का, सिर्फ पेड़ पौधों को ही नहीं, हमें भी। आइए इस भीगे भीगे मौसम में कुछ सुरीले गीत सुने और आनंद लें इस मौसम का।

मोनाली ठाकुर और मीत ब्रदर्स की आवाजों में आपने सुना बागी फिल्म का ये गीत। कुमार के बोल थे और संगीत था मीत ब्रदर्स का।

मिसमैच्ड सीजन 3, इसी का ये गीत आपने सुना। अनुराग सैकिया, रोमी, अमारभा बनर्जी, वरुण जैन और मधुबंती बाग जी की आवाजें थी। गीत के बोल लिखे थे राजशेखर ने और संगीत

रांझना फिल्म का ये टाइटल ट्रैक आपने सुना, जसविंदर सिंह और सिराज उप्पल की आवाजें थी। इरशाद कामिल ने बोल लिखे थे और संगीत दिया था ए आर रहमान ने।

वाजिद खान, श्रेया घोषाल और साथियों की आवाजों में आपने सुना फिल्म एक था टाइगर का ये गीत। बोल लिखे थे कौसर मुनीर ने और संगीत साजिद वाजिद ने दी थी। कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं फिल्म राधे श्याम का ये गीत। सुनते हैं

0: राधे श्याम फिल्म का ये गीत आपने सुना, मन्नान भारद्वाज और हरजोत कौर की आवाजें थी, कुमार के बोल थे और संगीत था मन्नान भारद्वाज का। श्रोताओं, इस वक्त आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र FM 102.4 MHz पर, सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में बाकी नगमे इन संदेशों के बाद।
1: हेलो मन भावन, आप सुनेंगे नए अंदाज में मेरे यानी निमिषा के साथ। प्रत्येक रविवार दिन के 11 बजे आकाशवाणी जमशेदपुर के विविध भारती केंद्र से 100.8 MHz पर। आपके फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक बुधवार दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे के बीच। हमारा टेलीफोन नंबर है 2960445 और कोड है 0657। तो आप भी जुड़ जाइए हेलो मनभावन कार्यक्रम से।
2: नमस्कार जमशेदपुर का एक अलग अंदाज,
3: ज्ञान विज्ञान
4: इतिहास के पन्नों से,
3: सेहत और बॉलीवुड की बातें,
2: मौसम का मिजाज,
3: अपने शहर की खबरें,
4: बातों मुलाकातों के साथ
2: सुरीला मनोरंजन
3: और भी बहुत कुछ।
2: आप सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में दिन के 11:05 से 12 बजे तक
4: आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से।
5: नमस्कार जमशेदपुर।

अलका याग्निक की आवाज में आपने सुना बंजारन फिल्म का ये गीत। बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने दी थी। और अब कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं फिल्म बाजीराव मस्तानी का ये गीत, जिसे गाया है जावेद बशीर, शादाब फरीदी और अल्तमस फरीदी ने। बोल लिखे हैं AM तुराज ने और संगीत निर्देशन संजय लीला भंसारी का है।

0: फिल्म बाजीराव मस्तानी के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.4 MHz पर। रात के 8:45 होने ही वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के पहले चरण में जकार्ता पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी 125वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी, कहा उनका दृष्टिकोण आधुनिक भारत का मार्गदर्शन करता रहेगा। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार किया। कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित। कल कच्छ, सौराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में तेज बारिश का रेड अलर्ट। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई को अंतिम विदाई देने के लिए तेहरान में बड़ी संख्या में लोग जमा हुए। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 16

0: में पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंधों का स्तर बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पारंपरिक इंडोनेशियाई और भारतीय नृत्य प्रस्तुतियों वाला एक शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह दोनों देशों के बीच गहरे सभ्यतागत और सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाता है। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वार्ता में व्यापार, निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, डिजिटल तकनीक और सांस्कृतिक आदान प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इससे भारत और इंडोनेशिया के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। आकाशवाणी से बात करते हुए भारतीय समुदाय के सदस्यों ने प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर उत्साह व्यक्त किया और भरोसा जताया कि इससे द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे तथा व्यापार और निवेश के लिए नए अवसर सृजित होंगे। जकार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी के विचारों ने आधुनिक भारत को नई दिशा दी।
2: आज देश की धरती, पश्चिम बंगाल की धरती, अपने एक महान सपूत, एक महान देशभक्त, भारत की अखंडता के लिए समर्पित एक युगद्रष्टा को श्रद्धा पूर्वक स्मरण कर रही है। मैं डॉक्टर मुखर्जी की 125वीं जन्म जयंती के अवसर पर उन्हें नमन करता हूं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
0: श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार उनकी जयंती के उपलक्ष्य में 2 वर्ष तक चलने वाला राष्ट्रीय समारोह आयोजित कर रही है। उन्होंने बताया कि ये समारोह पिछले वर्ष 6 जुलाई से शुरू हुआ था और अगले वर्ष 6 जुलाई तक चलेगा। गृहमंत्री ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।
3: श्यामा प्रसाद मुखर्जी अगर न होते तो आज कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं होता। यही वो महापुरुष थे जिन्होंने एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं चल सकते। न केवल वो आंदोलन की शुरुआत की, इसके लिए अपने प्राण भी नौछावर कर दिए।
0: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भोपाल के सतगढ़ी में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉ. अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। आज शाम अयोध्या में हुई बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति का भी फैसला किया है। इसके लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई गई है जो उपयुक्त नामों की सिफारिश करेगी। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
4: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहाँ गुल हो गई, वे कहाँ चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने

0: ने आपको दिखाने के लिए लाया है, हम आपको दिखाएंगे। और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहाँ पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
1: रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस वर्ष भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए 300 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। ये नियमित रूप से चलाई जा रही 800 से अधिक ट्रेनों के अतिरिक्त हैं। नई दिल्ली में श्री वैष्णव ने कहा कि पुरी रेलवे स्टेशन पर 30,000 यात्रियों के लिए अस्थायी व्यवस्था की जाएगी।
2: पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का पावन पर्व है, उसमें 300 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई और आने वाले समय में केरलम में ओनम के फेस्टिवल के उपलक्ष्य में 100 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।
1: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तराखंड के टनकपुर और महाराष्ट्र के नांदेड़ स्थित हजूर साहिब के बीच नई रेल सेवा का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। उन्होंने टनकपुर पीलीभीत रेल सेवा का विस्तार शाहजहांपुर तक करने की भी शुरुआत की। श्री वैष्णव ने कहा कि नई रेल सेवा उत्तराखंड के तराई क्षेत्र के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरा करेगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज राष्ट्रीय राजमार्ग माल परिवहन प्रबंधन लिमिटेड की समीक्षा बैठक की। बैठक में देशभर में बनाए जा रहे बहुमाध्य माल परिवहन पार्क, रोपवे और राजमार्गों के किनारे यात्रियों के लिए विकसित की जा रही सुविधाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। श्री गडकरी ने कहा कि इससे सड़क, रेल और अन्य परिवहन साधनों के बीच बेहतर संपर्क स्थापित होगा। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि तकनीक आधारित द्विभाषी प्रबंधन शिक्षा से देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच शिक्षा की दूरी कम करने में मदद मिलेगी। नई दिल्ली से भारतीय प्रबंध संस्थान उदयपुर के नए ऑनलाइन द्विभाषी व्यवसाय प्रशासन स्नातक पाठ्यक्रम के उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि ये पाठ्यक्रम एक अनूठी पहल है जो सरल और आसानी से समझ में आने वाली भाषा में प्रबंधन शिक्षा उपलब्ध कराएगा।
3: इससे मैनेजमेंट एजुकेशन बाइलिंगुअल होने के कारण सरल भाषा में लोगों तक पहुंचे। उम्मीद करता हूं कि इसमें जो भाषा होगी वो ऐसी रखी जाएगी कि सभी को आसानी से समझ में आए और साथ ही साथ ऑनलाइन होने के कारण काफी व्यापक प्रभाव इसका देखने को मिल सकता है।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। झारखंड से हमारी संवाददाता ने बताया है कि कई शहरी और ग्रामीण इलाकों में जलभराव हो गया है।
4: रांची सहित झारखंड के कई जिलों में पिछले दो दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जल जमाव की स्थिति बन गई है, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं और वज्रपात की आशंका जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और मुंबई गोवा हाईवे पर हुए भूस्खलन का मलबा तुरंत हटाकर यातायात सामान्य करने के निर्देश दिए हैं। एक रिपोर्ट।
5: मुंबई और तटीय महाराष्ट्र के कई इलाकों में आज भी मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी रहा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एसडीआरएफ के अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की। उधर पुणे जिले के मावल तालुका के पाटन गांव में भूस्खलन की चपेट में आने से एक घर दब गया, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई। इस बीच आईएमडी ने मंगलवार के लिए पालघर, रायगढ़ और नासिक और पुणे के घाट क्षेत्र में रेड अलर्ट जारी किया है। नासिक जिले में बादल फटने जैसे भारी बारिश की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। जिले के संवेदनशील इलाकों में स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और कर्नाटक में भी मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, ओडिशा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी अगले 3 से 4 दिन तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। विदेश मंत्री एस जयशंकर कतर की यात्रा समाप्त करने के बाद पश्चिम एशिया यात्रा के दूसरे चरण में बहरीन पहुंच गए हैं। डॉ जयशंकर ने मनामा में बहरीन के विदेश मंत्री डॉ अब्दुल लतीफ बिन राशिद अल जायनी से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने भारतीय समुदाय का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए बहरीन के विदेश मंत्री की सराहना की। ईरान की राजधानी तेहरान में आज सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। खामेनेई और उनके परिवार के सदस्यों का पार्थिव शरीर एक विशेष वाहन पर रखा गया है। इन लोगों की 28 फरवरी को इसराइल और अमेरिका की ओर से किए गए हमलों में मृत्यु हो गई थी। ये शोक शनिवार से शुरू हुआ है और बृहस्पतिवार तक जारी रहेगा। आयतुल्लाह अली खामेनेई को उनके जन्मस्थान मशहद स्थित इमाम रजा की दरगाह में सुपुर्द खाक किया जाएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच लोगों ने भारत सरकार से सहायता की अपील की है। पिछले एक महीने से क्षेत्र में प्रदर्शन जारी है। लोगों ने भारत से दवाइयां और जरूरी खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। पिछले 20 दिन से इस क्षेत्र में राशन और दवाइयों की आपूर्ति रोक दी गई है। बॉम्बे शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 521 अंक बढ़कर 78,285 पर बंद हुआ। निफ्टी 160 अंक की बढ़त के साथ 24,430 पर दर्ज हुआ। जिम्बाब्वे दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम की घोषणा कर दी गई है। भारत 23, 25 और 26 जुलाई में 3 T20 मैच खेलेगा। श्रेयस अय्यर कप्तान और तिलक वर्मा उप कप्तान होंगे। 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी, रिंकू सिंह, प्रिंस यादव, यश ठाकुर और अशोक शर्मा भी टीम में शामिल हैं। फीफा फुटबॉल

0: प्रसारित करेगा। श्रोता स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। आप अपने सवाल #askar के साथ एक्स पर भी पोस्ट कर सकते हैं। भारतीय नौसेना शनिवार को विशाखापट्टनम में प्रोजेक्ट 17A के छठे स्वदेशी स्टील फ्रिगेट युद्धपोत महेंद्रगिरी को अपने बेड़े में शामिल करेगी। इस आधुनिक युद्धपोत की रूपरेखा भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने तैयार किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के पहले चरण में जकार्ता पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी 125वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी। कहा, उनका दृष्टिकोण आधुनिक भारत का मार्गदर्शन करता रहेगा। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार किया। कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित। कल कच्छ, सौराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में तेज बारिश का रेड अलर्ट। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 16 में पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi arrives in Jakarta on the first leg of his three-nation tour to Indonesia, Australia and New Zealand. Prime Minister Modi pays tributes to Dr. Shyama Prasad Mukherjee on his 125th birth anniversary, says his vision continues to guide modern India. Ram Janmabhoomi Tirth Trust accepts resignations of General Secretary Champat Rai and Trust member Dr. Anil Mishra, appointed Krishna Mohan as Interim General Secretary. Heavy downpour affects normal life in Maharashtra, Gujarat and Jharkhand. Red alert issued for heavy rainfall in Kutch, Saurashtra, Madhya Maharashtra and coastal Karnataka tomorrow. Huge crowd gathers in Tehran to bid farewell to Iran's late Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei. And in FIFA World Cup, Portugal to take on Spain in round of 16 match at Arlington in US tonight. Prime Minister Narendra Modi arrived in Jakarta today on the first leg of his high-stake three-nation Indo-Pacific tour to Indonesia, Australia and New Zealand. Upon arrival at the Jakarta airport, Mr. Modi was personally received by Indonesian President Prabowo Subianto. Prime Minister Modi was accorded a grand and enthusiastic welcome from the local Indonesian community and the Indian diaspora. In a social media post, Mr. Modi said that India and Indonesia elevated the relations to a comprehensive strategic partnership in 2018, which has benefited the people. A report from a correspondent from Jakarta covering Prime Minister's visit.
2: A vibrant cultural program featuring traditional Indonesian and Indian dance performances were organized to welcome the Prime Minister, reflecting the deep civilizational and cultural bonds shared by the two countries. Members of the Indian diaspora also greeted him enthusiastically. During the visit, Prime Minister Modi will hold bilateral talks with Indonesian President Prabowo Subianto. The discussions are expected to focus on strengthening cooperation in trade, investment, defense, maritime security, digital technology and cultural exchanges, further reinforcing the comprehensive strategic partnership between India and Indonesia. Speaking to Akashvani, members of the Indian diaspora expressed excitement over the Prime Minister's visit and voiced confidence that it would further strengthen bilateral ties and create new opportunities for trade and investment. Shundipan Dasgupta, Jakarta, Indonesia.
1: Prime Minister Narendra Modi has said that Dr. Shyama Prasad Mukherjee was a great patriot and a visionary dedicated to the integrity of India. In his video message on the occasion of the 125th birth anniversary of Dr. Mukherjee, Mr. Modi said the thought of Dr. Mukherjee is playing a major role in guiding modern India.
3: आज देश की धरती, पश्चिम बंगाल की धरती, अपने एक महान सपूत, एक महान देशभक्त, भारत की अखंडता के लिए समर्पित एक युगद्रष्टा को श्रद्धा पूर्वक स्मरण कर रही है। आज हम उस विचार बीज का गुणगान कर रहे हैं जो आधुनिक भारत को दिशा देने में बड़ी भूमिका निभा रहा है। मैं डॉक्टर मुखर्जी की 125वीं जन्म जयंती के अवसर पर उन्हें नमन करता हूं।

0: नमस्कार, पब्लिक स्पीक में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रत्येक सोमवार हम किसी एक खास विषय पर चर्चा करते हैं। आज का विषय है डिजिटल इंडिया, प्रौद्योगिकी के माध्यम से नागरिकों का सशक्तिकरण। पिछले एक दशक में आधार, यूपीआई, डिजीलॉकर, आयुष्मान भारत, डिजिटल मिशन और सरकारी सेवाओं का ऑनलाइन होना, इन सब ने आम नागरिक के जीवन को सुगम बनाया है। गांव की एक महिला भी अब मोबाइल फोन से अपना बैंक खाता चला रही है। किसान घर बैठे सब्सिडी ले रहा है और विद्यार्थी ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या हर नागरिक डिजिटल रूप से साक्षर है? साइबर ठगी, डेटा सुरक्षा और डिजिटल डिवाइड जैसी चुनौतियों से हम कैसे पार पा सकेंगे? इस विषय पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस विभाग के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नंद कुमार तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में पूर्व राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक डॉक्टर गुलशन राय। आप दोनों मेहमानों का स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: तो जुड़े रहिए हमारे साथ विशेष चर्चा में और जानिए कि कैसे प्रौद्योगिकी एक आदमी को सशक्त बना रही है और डिजिटल सफर में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। श्रोताओं, आपके मन में इस विषय से जुड़ा कोई भी सवाल है

0: आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं, हमें आपकी फोन कॉल्स का इंतजार है। स्टूडियो की फोन लाइंस खुल चुकी हैं, आप हमारे स्टूडियो के फोन नंबर 2331-0481, 2371-7117, 2371-7106 और 2331-4444 पर फोन कर अपने सवाल पूछ सकते हैं। दिल्ली के बाहर के श्रोता, दिल्ली का एसटीडी कोड 011 लगाना ना भूलें। आप अपना प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289-094-044 पर भी भेज सकते हैं। इस नंबर पर केवल संदेश ही भेजें, कॉल ना करें। हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR का इस्तेमाल करते हुए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTS सेवा पर भी उपलब्ध है। तो सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत में नंद कुमार जी आपसे जानना चाहेंगे, पिछले 10 साल में डिजिटल इंडिया का सबसे बड़ा बदलाव आप क्या मानते हैं जिसने सीधे आम नागरिक को फायदा पहुंचाया है?
1: सबसे बड़ा बदलाव यह है कि आज एक कोई भी गृहिणी अथवा कोई भी व्यक्ति जो छोटा व्यवसाय करता है, जो किसान है, वो एक मोबाइल के माध्यम से पैसे ले सकता है, पैसे दे सकता है, बिना किसी कागज और सरकारी दफ्तर गए वो आधार से अपनी आइडेंटिटी प्रूव कर सकता है, किसी भी अपने यार दोस्त साथी से व्हाट्सएप पर बातें कर सकता है, या किसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का म्यूजिक या देश के कल्चरल चीज़ों का यूट्यूब पर लाभ उठा सकता है एट ए रेट जो कि बहुत ही कम है, पूरी दुनिया में सबसे कम रेट पर, और ये सब उसके एक छोटे से हाथ में मोबाइल के माध्यम से। तो अपने आप में एक ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी भारत की रही है कुछ सालों की इस दौरान।
0: बिल्कुल गुलशन राय जी, डिजिटल अरेस्ट, ओटीपी फ्रॉड, फर्जी लोन ऐप जैसी साइबर ठगी बहुत बढ़ गई हैं। एक आम नागरिक को इनसे बचने के लिए तुरंत क्या करना चाहिए?
2: इसके लिए तुरंत तो ये करना चाहिए, देखिए किसी कोई भी सरकारी ऑर्गेनाइजेशन या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन संस्था जो है वो किसी से फोन पे कोई डेटा नहीं मांगते हैं, किसी का अकाउंट नंबर, किसी का क्रेडिट कार्ड नंबर और कोई डिटेल, इसकी जानकारी कोई भी नहीं मांगता है। और सब बैंक्स में बार बार वो एक एडवर्टाइजमेंट करते हैं, सबको मैसेज भेजते हैं, SMS भेजते हैं कि कोई भी जानकारी किसी को मत दीजिए, हम किसी से जानकारी फोन पे और SMS से और व्हाट्सएप द्वारा नहीं मांगते
0: जी।
2: लेकिन फिर भी हमारे यहाँ काफ़ी लोग, आज की डेट में प्रौद्योगिकी का ऐसा प्रभाव पड़ गया है, नए नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल आ गए हैं जिससे वो फेक साइट और फेक कॉल ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देते हैं वो, और पूरा ऐसा सिनेरियो बना देते हैं कि जैसे ये पुलिस का दफ्तर है जिसमें पुलिस कमिश्नर बोल रहा है कि आपका ये होने वाला है, वो होने वाला है। तो उस संदर्भ में आप नागरिकों को और हमारे ये याद रखना चाहिए, जैसा कि सब बैंक्स कहते हैं और जैसे मैं भी कह रहा हूँ, कि कोई भी संस्था इस भारत में किसी से कोई इंफॉर्मेशन वैसे नहीं मांगती है
0: जी।
2: और ऐसा है, इसका एक थम रूल ये है कि अगर आपको कोई कॉल करता है और वो कॉल उसकी आप सुन लेते हैं और उसकी उठा के कॉल कर लेते हैं और आपसे कुछ एक तो परिचय मांगता है तो परिचय मत दीजिए, अपना डिटेल मांगते हैं तो डिटेल मत दीजिए, अगर आपसे कुछ करने के लिए कहता है तो आप उसे कहिए कि मैं थोड़ा सा बिजी हूं और आपका मैं अभी एक मिनट में तुरंत में आपको फोन करता हूं।
0: ठीक है,
2: ऐसे केसेस में रिटर्न कॉल कभी नहीं होती है
0: जी,
2: रिटर्न कॉल नहीं होती,
0: सबसे बड़ी बात।
2: हाँ
0: जी, बिल्कुल।
2: और आज ये पहला एक वो है कि रिटर्न कॉल करें और रिटर्न कॉल में उससे सब पूछे, क्योंकि रिटर्न कॉल करने में पुलिस जो है उसको ट्रेस करने की कोशिश हो जाती है, रिकॉर्ड मिल जाता है, तो उसका रिकॉर्ड मिल जाता है उसका, तो रिटर्न कॉल उसे कहे मैं रिटर्न कॉल करते हैं, आपको एक मिनट दीजिए, कुछ सामान गिर गया है, कुछ थाना है, कुछ भी करके करें और वो रिटर्न कॉल करें, वो बहुत जरूरी है, ये सबसे बड़ा थंब रूल है
0: जी।
2: और किसी को जानकारी मत दीजिए इस बारे में कि मैं कौन हूँ, मैं कौन नहीं हूँ। आजकल बहुत बड़े फ्रॉड हो गए हैं, वो जो ऐप आती है एक जिसमें होता है, जिसमें आप नंबर डालिए आपको बता देता है कौन सा क्या आता है, उसका क्या आता है, और वो आजकल उसमें भी लोग फ्रॉड करते हैं, अपना नाम लिख देते हैं, करते हैं, तो आप उसका जवाब मत दीजिए कहीं हम आपसे आएंगे। और आज जो है दूर संचार विभाग ने, सरकार ने ये क्या किया है कि जब आपको कॉल आती है तो उस पे नाम फ्लैश होता है कि ये कहां से किसका नाम आ रहा है, कौन आ रहा है, वो सब सर्विस प्रोवाइडर उसको स्पैम भी लिखते हैं कि ये फेक कॉल है या ऐसी कॉल है, तो आप पहले तो कॉल को देखें कि कॉल पे किसका नाम आ रहा है और कॉल पे क्या मैसेज आ रहा है। कॉल देखें पहले गौर से जब कॉल आती है तो, उसके बाद अगर फोन आप आपको जान पहचान का नाम नहीं है तो मत उठाइए। अगर आप गलती से उठा लेते हैं तो आप उसे कहिए कि मैं थोड़ी देर में कॉल आपको एक मिनट में कॉल करते हैं। रिटर्न कॉल जब करेंगे तो वो मैच्योर नहीं हो
0: जी। और इस समय हमारे साथ श्रोता जुड़ गए हैं रवि जवालिया हरिद्वार से जुड़े हैं। रवि जी आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, हमारे विशेषज्ञों से क्या सवाल पूछना चाहते हैं?
3: हाँ धन्यवाद सर। सर नमस्कार, मेरा नाम रवि जवालिया है
0: जी। रवि
3: मैं गर्मीपुर हरिद्वार से बोल रहा हूँ
0: जी।
3: जी सबसे पहले तो विशेषज्ञों को भी मेरा नमस्कार सर।
2: नमस्कार। हाँ, नमस्कार रवि जी। हाँ, नमस्कार।
3: हाँ सर मैं जानना चाहता हूँ एक मतलब जो नया युवा है जो मतलब टेक्निक का यूज करना चाहता है वो डिजिटल साक्षर कैसे हो, क्योंकि आजकल ट्रांजेक्शन वगैरह जैसे कि हम सभी जानते हैं कि AI भी है फ्रॉड भी है, तो डिजिटल साक्षर कैसे प्राप्त करें और इसके लिए क्या मतलब स्पेशल कोई नंबर है?
2: देखिए डिजिटल साक्षर के उस संदर्भ में सरकार ने बहुत काम किया है और सरकार की वेबसाइट पे इस बारे में बहुत ज्यादा उसमें काम है। इनकी एक नाइलेट है सरकार की, मिनिस्ट्री ऑफ प्रौद्योगिकी विभाग की एक संस्था है नाइलेट NILIET नाइलेट है, और उस पे उन्होंने काफी कोर्सेस उस पे डिजिटल साक्षरता पे लिख रखे हैं
0: जी।
2: लेकिन डिजिटल साक्षरता आज की डेट में जरूर काम करने के लिए बहुत सिंपल सा है। आप मोबाइल चला लेते हैं, आप स्मार्टफोन चला लेते हैं, आज की डेट में इतने यंग लोग हैं वो सब संभाल लेते हैं, और जो हम जैसे उम्र वाले हैं लोग हम उन्हीं बच्चों से सीखते हैं हमारा मोबाइल कन्फिगर कर दीजिए। तो ये तो एक डिजिटल के बारे में बच्चों को आज यंग जनरेशन को बहुत अच्छी तरीके से मालूम है, पर आपको अगर आपकी इसके एक सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर आपको देखना है तो नाइलेट की साइट पे जाके आप कोर्स देखिए और उनमें काफी मटेरियल है, उस पर काफी इंफॉर्मेशन है, काफी शॉर्ट मॉड्यूल्स है, आप उसमें देखेंगे आपको उसके बारे में पता लगेगा और आप उसमें नाइलेट का नंबर भी होगा और जिसपे आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।
0: बिल्कुल, हमारे जो श्रोता हैं वो नाइलेट पे जाकर साक्षरता प्राप्त कर सकते हैं। और नंद कोरम जी आपसे जानना चाहेंगे UPI आज दुनिया के लिए एक मॉडल बन गया है, ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में डिजिटल पेमेंट को 100% अपनाने के लिए सरकार की अगली क्या प्राथमिकता हो सकती है?
1: UPI दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे सस्ता प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से तकरीबन आज के देश में अगर अंदाज लगाएं तो 1 in every 2 or even 1.2 in every 2 मतलब 50-70% ट्रांजैक्शन पूरी दुनिया का UPI के माध्यम से होता है।
0: बहुत बड़ी बात।
1: और भारत न केवल भारत में बल्कि अन्य कई देशों में उसको व्यवस्थित कर चुका है
0: जी।
1: और एक समय में जो यूरोपियन या US डोमिनेटेड पेमेंट सिस्टम थे उसको हम लोगों ने वहां तक जाकर के उससे बहुत ही सस्ते रूप में बनाया। अब जो उसके ऊपर डेवलपमेंट्स हो रहे हैं कि उसके ऊपर इंश्योरेंस, उसके ऊपर लेंडिंग आपस में जो पीयर टू पीयर मतलब आपस में लेन देन या उधार देना या बैंक का कर्ज देना या जो हमारे देनदारी की सूची बनकर एक साथ पेमेंट हो जाना या क्रेडिट स्कीम्स लाना जो कंपनीज लाती हैं कि ये खरीदो तो ये पाओ या ये वॉलेट में रख लो तो कल वो पाओ, इस तरह की जो छोटे छोटे स्कीम्स हैं वो उसके ऊपर धीरे धीरे बन रहे हैं। यह बड़ी खुशी की बात है कि देश में जो हमारे देश में यह भी एक सच है कि कैपिटल का अभाव है, खास करके जो MSME और छोटे व्यापार करने वाले लोग हैं उनका क्रेडिट हमेशा कमी रहता है, तो उस कैपिटल को सपोर्ट करने के लिए UPI एक बड़ा ही सिबिल और बाकी सारे स्कोर के माध्यम से इजी लेंडिंग कर पाता है। तो धीरे धीरे NBFC का काफी पोर्टफोलियो ग्रो हो रहा है, बैंक्स उस कस्टमर तक पहुंच पा रहे हैं जहां तक कि वो पहले नहीं पहुंच पा रहे थे। तो आने वाला जो समय है अगले 5 सालों में कैपिटल फॉर बिजनेस या इंडिविजुअल्स UPI के माध्यम से आगे बढ़ने की कोशिश,
0: बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं बिहार के सासाराम से अमित उपाध्याय। अमित जी कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
4: जी नमस्कार सभी जितने भी विशेषज्ञ हैं। मेरा ये सवाल था कि जैसे कि एक OTP का जो फ्रॉड बढ़ते जा रहा है बहुत सारे केस में, उसके लिए हम लोग कैसे इसको व्यापक रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग इसको जागरूक अभियान चला सकते हैं क्या, कि इसको क्या हो सकता है? और दूसरी चीज ये मैं एक सुझाव भी था, जितना भी सरकारी विद्यालय है या विश्वविद्यालय है इसमें हम लोग समय समय पर सरकार और उसके के माध्यम से समय समय पर इसको कैसे हम लोग उस पर चर्चा करके ताकि लोगों को जागरूक कर सकते हैं। जी
2: आपका सवाल बहुत ही अहम सवाल है। ओटीपी का फ्रॉड काफी पहले से काफी बढ़ गया है, पर आप ये देखिए कि थोड़ा सा सोचिए कि ओटीपी क्यों आता है और कैसे आता है। ओटीपी जब भी आता है जब आप किसी सर्विस को लेने की कोशिश करते हैं, आप किसी को लॉग इन करते हैं मोबाइल पे, किसी के वेबसाइट पे करते हैं, कोई वेबसाइट करते हैं या कुछ पैसा कुछ करने की कोशिश करते हैं, और वो आपको आपको ये देखने के लिए कि ये सही ट्रांजैक्शंस है आपको ओटीपी भेजते हैं। आपके फोन पे ओटीपी आता है, जो रजिस्टर्ड फोन होता है उनके पास उसी पे ओटीपी आता है। कोई भी ओटीपी तभी आप देखिए जब आपने मांगा हो, कोई सर्विस करने के लिए मांगा हो, आपने कुछ कोशिश की हो। अगर आपने कोई सर्विस नहीं की, आपने सर्विस करने की कोशिश नहीं की, आपकी डिजायर नहीं है, आपकी रिक्वेस्ट नहीं है, तो आप किसी भी ओटीपी को मत रिकॉग्नाइज करिए, मत देखिएगा, आप ओटीपी को लीजिएगा ही नहीं। ऐसे को ओटीपी आता रहता है, अपने आप ही ओटीपी भेजते रहेंगे, उनको आप उस पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। उसी ओटीपी को देखिए जब आप किसी सर्विस को कुछ लेने की कोशिश करते हैं और वो आपको जी जानने के लिए कोशिश करता है कि आप सही आदमी हैं जो कि सर्विस ले रहे हैं, तभी आपको ओटीपी भेजता है। ओटीपी एक माध्यम है आपको आइडेंटिफाई करने का। तो ऐसे कोई बगैर आपके कहे को ओटीपी भेजता है उसको मत लीजिएगा, उसके पे मत ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल मत ध्यान दीजिए।
0: सिंपल सा है, जो आपने मांगा तभी ओटीपी आया, अदरवाइज ओटीपी नहीं आएगा। चलिए एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, मध्य प्रदेश के सागर से विपिन। विपिन आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए क्या सवाल है आपका?
5: सभी को नमस्कार
0: जी।
5: मैं विपिन बात कर रहा हूँ सागर से। सर मेरे दो सवाल हैं। पहला सर मैं ये जानना चाह रहा था, आजकल देखा जाता है सोशल मीडिया पे और अलग अलग जगह कि बहुत सारे ऐप हैं जो आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ाने के लिए कहते हैं कि इसे डाउनलोड करें, आपका इससे एक्सपर्ट जो आपको सलाह देंगे उस हिसाब से आपका क्रेडिट स्कोर ग्रो करेगा, तो ये कैसे हम जाने कि सही या गलत है ऐप हम जो डाउनलोड करें या नहीं करना चाहिए। दूसरा सवाल ये था सर कि जो हेल्पलाइन है 1930 सर, इस पर कॉल करते हैं तो क्या होता है कि हमारा कॉल ऑटोमेटिकली इमरजेंसी नंबर इमरजेंसी कॉल में ट्रांसफर हो जाता है, यानी 112 पर। तो ये नॉर्मल है, ऐसे ही लगता है कॉल कि 1930 पे करते हैं और इमरजेंसी में ट्रांसफर होता है, या फिर ये हेल्पलाइन अलग होती है, कोई प्रॉब्लम चल रही है अभी?
1: मैं पहला सवाल का जवाब देता हूँ। पहले जो आपने कहा कि हम अगर कोई भी प्रश्न मतलब इस तरह से पूछते हैं कि हमारा एक बार आप इनका पहला सवाल जो था
0: एक बार फिर से सवाल करें,
1: फिर से सवाल करेंगे आप?
0: गुड, गया शायद उन्होंने उनका
1: डिस्कनेक्ट
0: हो गया है। लेकिन 1930 के बारे में कुछ?
1: अच्छा, 1930 के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा बाकी श्रोताओं के लिए जो जुड़े हुए हैं कि 1930 और 112 इस तरह से कनेक्टेड है कि कुछ 1930 के कॉल इमरजेंसी कॉल होते हैं, जैसे कि साइबर में इमीडिएट रिलीफ, तो आप 112 से कई बार कोई इमीडिएट कहीं पुलिस की गाड़ी पहुंचानी है, कहीं स्वास्थ्य की गाड़ी पहुंचानी है, तो इमरजेंसी रिलीफ में भी लोग 1930 में लगा देते हैं, या इमरजेंसी कोई एक्शन लेना है, ब्लॉकिंग ऑफ एन अकाउंट, 1930 में ये भी सुविधाएं हैं कि उससे रिलेटेड बैंक का भी एक प्रोसेस है, तो कई बार आपको डायवर्जन ऐसा मिल जाता होगा। ऐसे एज ए पॉलिसी 1930 स्पेसिफिक पर्पस के लिए डेडिकेटेड है, जो साइबर फ्रॉड या अकाउंट फ्रॉड या उस तरह की चीजों के लिए रहता है, न कि दूसरे चीजों के लिए। और जो आपका डिजिटल ऐप वाला क्रेडिट स्कोर का विषय था, सी क्रेडिट स्कोर सिबिल का या अलग बैंकिंग ब्यूरो के डेटा के आधार पर बनता है कि आपने पहले क्या लोन लिया है, आपका लोन में पेमेंट का स्ट्रक्चर कैसा था, आप कितने डिसिप्लिन वे में पे करते चले गए, तो आपके बैंक का ट्रांजैक्शन के आधार पर बनता है। आपके किसी ऐप में कोई एक्टिविटी का स्कोर पर कोई असर नहीं पड़ता, बार बार देखने से या बार बार किसी ऐप में चार बार गेम खेलने से, क्योंकि आपका जो आपने हाउसिंग लोन लिया, आपने मान लीजिए कोई पेमेंट टाइम पर पेमेंट कर दिया, ये फैक्ट्स हैं जिसके आधार पर सिबिल स्कोर बनाता है या अन्य क्रेडिट एजेंसी आपका स्कोर बनाती है। ये सब केवल लोगों को समझाने के लिए कि देखिए साहब एक पॉइंट बढ़ जाएगा, ये बार बार करेंगे तो 5 पॉइंट जुड़ जाएगा, ये सब केवल गुमराह करने का रास्ता है। सिबिल का स्कोर एक साइंटिफिक से पूरे देश में बनाया जाता है, इसके लिए कोई ऐप बिल्कुल भी डाउनलोड ना करें, वो ज्यादातर आपको गुमराह करने के लिए है।
0: बिल्कुल, तो हमारे श्रोताओं को जानकारी मिली होगी। तो जो श्रोता अभी हमसे जुड़े हैं, हम उन्हें बता दें कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक, और आज हम डिजिटल इंडिया प्रौद्योगिकी के माध्यम से नागरिकों का सशक्तिकरण विषय पर चर्चा कर रहे हैं, आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस विभाग के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नंद कुमारम जी और प्रधानमंत्री कार्यालय में पूर्व राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक डॉक्टर गुलशन राय जी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ओडिशा से देश पांडे देशदीप दास जी जुड़ गए हैं। देशदीप दास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या सवाल पूछना चाहेंगे
6: जी? नमस्कार।
0: नमस्कार, नमस्कार जी। नमस्कार
6: जी। कुमारम महोदय और राय महोदय को मेरा सादर नमन।
1: नमस्कार जी।
2: नमस्कार, आपको भी सादर नमन
6: जी। मैं देशदीप दास केंद्रापरा उड़ीसा से बोल रहा हूँ। तो मेरा सवाल है, शिक्षार्थियों को सशक्त बनाने वाली प्रमुख डिजिटल सेवाएं कौन सी है?
1: शिक्षार्थी मतलब विद्यार्थी
0: जी,
1: स्टूडेंट्स
6: जी।
1: तो स्टूडेंट्स के लिए अगर शासकीय गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स बताएं तो जैसे दो है। अगर आप किंडल स्कूल से 12वीं तक में हैं तो दीक्षा एक प्लेटफॉर्म है, इस पर सभी एनसीईआरटी की किताबें अलग अलग भाषाओं में अलग अलग विषयों की बड़े ही डिजिटल और इजी सुगम स्थान तरीके से उपलब्ध होती है। दूसरी, उस पर वीडियो के कोर्सेज बने हुए हैं जो ऑनलाइन उन विषयों से संबंधित, मान लीजिए कोई छठी क्लास का मैथ्स का बच्चा है या कोई सातवीं क्लास का मैथ्स का बच्चा है, तो अगर वो सातवीं पढ़ रहा है और उसे छठी में डाउट है तो बड़ा इंटरकनेक्टेड बड़े ईजी वे में दीक्षा प्लेटफॉर्म उसके माध्यम से, और कई लाख बच्चे इससे जुड़े हुए हैं ऑलरेडी। अगर आप बड़े क्लास में बच्चे हैं, मतलब आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज के या किसी प्रोफेशनल कोर्स में हैं, तो स्वयं करके एक पोर्टल है या NPTEL नाम से जो पोर्टल पहले चलता था, जिस पर कि बड़े हाई लेवल के जो कोर्सेज राइट फ्रॉम आपको उसमें IIT कानपुर या IIT के बड़े MTech मास्टर्स PhD के कोर्स से लेकर के और जो आपके 12th के इंजीनियरिंग के मेडिसिन के IIMs के मैनेजमेंट के ये सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, इवन कमर्शियल चार्टर अकाउंटेंसी वगैरह के। तो ये एक पूरा जूनियर क्लास से लेके सीनियर तक का कोर्सेज है। इसके अलावा बहुत सारे गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस ने, राज्य सरकारों ने अपने अपने भी प्रयास किए हैं। उड़ीसा में आप अगर YouTube पे जाएंगे तो बहुत सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस ने अपने कोर्स को पब्लिक किया है, तो वहां पर भी जाकर के आप सब्जेक्ट वाइज सेशन वाइज ऐसे कोर्सेज का लाभ देखकर ले सकते हैं।
0: नंद कुमारम जी, वरिष्ठ नागरिक और महिलाएं अक्सर डिजिटल सेवाओं से घबराते हैं, उन्हें डिजिटल रूप से साक्षर बनाने के लिए आपके मंत्रालय की क्या विशेष योजना है?
1: दो विषय पर हम लोग विशेष ध्यान देते हैं। एक तो उनका अकाउंट खोलना सबसे बड़ा काम, और उनके हाथ में स्मार्टफोन होना। तो स्मार्टफोन में आज के डेट में भारत में बहुत ही कम दरों पर स्मार्टफोन उपलब्ध हैं, तो इसके रेट्स को भी आप अगर कंपेयर करेंगे, जैसे डेटा बहुत कम रेट पे था तो स्मार्टफोन भी भारत में बहुत ही लो स्तर लो कॉस्ट पर बिक रहा है आजकल, और भारत की PLI स्कीम्स ने बड़ा उसमें कारगर रोल प्ले किया है। अब जहां तक रहा उनके सीखने और व्यवहार की बात, तो लोकल भाषा में कंटेंट उपलब्ध करा करके कि वो जिस भाषा में है, अगर वो तमिल में बात करते हैं, अगर वो हिंदी में बात करते हैं, जिस भी गुजराती में बात करते हैं, तो उस भाषा में आजकल सभी सरकारी वेबसाइट को उपलब्ध कराया गया है। आप भाषणी के माध्यम से या अन्य AI टूल्स के माध्यम से सभी शासकीय पोर्टल्स को उस लोकल भाषा में उपलब्ध कराने का प्रयास है, जिसके माध्यम से आप इजी से उसे समझ सकें। और हेल्पलाइन भी सिटीजन के लिए अलग लागू गया है, जो सीनियर सिटीजन का अलग एक डेस्क है जो उनको फॉलो अप करता है और उनको सपोर्ट देता है, ताकि वो 1930 में तो कर ही सकते हैं, उसके अलावा सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल हेल्पलाइंस भी हैं।
0: एक और श्रोता दिल्ली से जुड़ गए हैं, धर्मवीर। धर्मवीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्या सवाल करना चाहेंगे?
7: धन्यवाद। मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। सर को मेरा नमस्कार। मेरे दो क्वेश्चन है सर
0: जी, बताइए।
7: पहला क्वेश्चन, जैसे कि कीपैड वाला फोन और स्मार्टफोन, अगर कीपैड उसमें भी अगर मैसेज आते हो और वो फोन हमारा बैंक में रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो इसमें अगर गलत बटन दबा देने से कभी इसमें फ्रॉड होने के चांसेस होते हैं, अगर हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर फोन दूसरा है तो? और दूसरा सवाल मेरा ये है, वो मेरा मेन मकसद है सवाल का, कि जैसे आज के समय में टर्शरी क्लास के बच्चों से स्टार्ट होकर देखा जाता है स्कूलों में कंप्यूटर कोर्स कराए जा रहे हैं, प्रैक्टिकली कराए जा रहे हैं, क्यों ना बच्चों को नर्सरी टाइम से बच्चों को ये फ्रॉड के बारे में, स्मार्टफोन के बारे में बताया जाए कि ऐसे गलत नंबर आए तो आपको उसको छूना नहीं है, या जो भी जैसे भी तरीके से बताया जाए, ट्रेनिंग दी जाए, नर्सरी से ही स्टार्ट किया जाए, क्योंकि आपको पता ही है आजकल हर बच्चा शुरू से ही लेके फोन लेके बैठ जाता है और जो फोन हमें नहीं चलाना आता वो बच्चा वो खोल के बैठ जाता है। इसके लिए सरकार को चाहिए कि स्कूलों में भी, ये मेरा सुझाव भी समझ लिया जाए, मेरा क्वेश्चन है कि नर्सरी क्लास से भी बच्चों को इस चीज के लिए ट्रेनिंग देनी जरूरी है।
2: धन्यवाद। आपका जो पहला प्रश्न है कि उसमें स्मार्टफोन और फीचर्स फोन की बात है, देखिए दोनों में बहुत अंतर होता है। स्मार्टफोन फीचर्स फोन जो होता है बहुत सिंपल फोन होता है और उस पर बहुत फीचर्स नहीं होते हैं, लेकिन जो भी मैसेज आते हैं बैंक से आता है या ओटीपी आता है वो सब एसएमएस के द्वारा आते हैं, व्हाट्सएप और किसी उसके द्वारा नहीं आते हैं। तो वो ओटीपी आना या कोई मैसेज आना वो ऐसा ही है जैसे कि एक स्मार्टफोन में आता है। तो अगर आप उस पर कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसका वही इफेक्ट है जो कि स्मार्टफोन के अंदर होता है। तो अगर आपने स्मार्टफोन से किया है या की फोन से की फीचर फोन से किया उसका इफेक्ट सेम है। जहां तक ओटीपी और मैसेजेस का सवाल है उसका दोनों का इफेक्ट सेम ही है, बिल्कुल सेम है, उसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन स्मार्टफोन इसलिए इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, उसमें फीचर्स बहुत कम होते हैं, ऐप नहीं डाउनलोड कर सकते आप, कोई भी ऐप नहीं डाउनलोड कर सकते, और आपको वो जो दूसरी किस्म की जो अटैक्स होते हैं, साइबर अटैक्स साइबर इंसिडेंट्स होते हैं, वो उस फीचर्स फोन पे नहीं होती हैं, वो सब स्मार्टफोन पे होते हैं वो सब। इसलिए दोनों में बहुत अंतर है, कॉस्ट में भी अंतर है, फीचर्स में भी अंतर है और उसका यूटिलिटी का भी अंतर है। लेकिन एक आम नागरिक के पर्पस के लिए अगर आप बैंक से इंटरेक्ट करते हैं, आपका ओटीपी आता है, आप कोई नंबर एक्सेस करते हैं, वो आप फीचर्स फोन पे एक्सेस कर सकते हैं। कुछ चीज़ें आज की डेट में की फीचर्स फोन भी बहुत अच्छे हो गए हैं जिसपे आप वेबसाइट भी देख सकते हैं, अपना ओपन कर सकते हैं, ऐसे भी की फीचर्स फोन हो गए हैं। लेकिन अगर आप दोनों में अंतर मोटा अंतर से आपको मैंने बता दिया है, और की फीचर्स फोन नॉर्मल पर्पज़ के लिए काफ़ी सेफ होता है, स्मार्टफोन में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है और केयरफुल रहना पड़ता है।
0: गुलशन जी, एक और सवाल हमारा है, गाँव का किसान पहली बार जब स्मार्टफोन चलाता है तो उसे साइबर फ्रॉड से बचाने के लिए सबसे जरूरी क्या बातें हो सकती हैं?
2: देखिए, एक तो उसको कहा जाता है कि अपने एंटीवायरस रखना चाहिए
0: जी।
2: एक दूसरी बात यह है कि वो जो भी ऐप डाउनलोड करे वो जितनी जो जरूरत हो और एक ट्रस्टेड सोर्स से ऐप डाउनलोड करे
0: जी।
2: आज कहते हैं कि आप गूगल का प्ले स्टोर है, गूगल से प्ले आप ऐप डाउनलोड करिए, और एप्पल का प्ले स्टोर है वहाँ से डाउनलोड करिए, ऐसे किसी वेबसाइट पे जाके आप ऐप मत डाउनलोड करिए, वो दूसरा सवाल है। और तीसरा सवाल तो वो है कि आपको ऐसे मैसेज आए जो आपने मांगा नहीं है, आपने पूछा नहीं है, उस पर ज़्यादा गौर करने की जरूरत नहीं है।
0: बिल्कुल नंदकुमारम जी, सोशल मीडिया फ्रॉड के बारे में बात करते हैं। फेसबुक व्हाट्सएप पर इन्वेस्टमेंट स्कैम और पार्ट टाइम जॉब के नाम पर ठगी बहुत हो रही है, एक आम गृहिणी इसे कैसे पहचाने?
1: देखिए, ये डिजिटलाइजेशन और इसकी एक अच्छी चीज़ है कि पार्ट टाइम जॉब घर बैठे गृहिणियाँ कर रही हैं और उसका लाभ उठा रही हैं। लेकिन कुछ लोग इस अच्छी चीज़ का दुरुपयोग करने के लिए लालच देकर या कोई काम का गलत चीज़ बताकर उनके अकाउंट्स या कोई फ्रॉड या कुछ पिक्चर्स या कुछ ऐसी चीज़ों में इंगेज होते हैं जो लॉन्ग टर्म में नुकसानदेह होता है। तो जैसा अभी गुलशन राय साहब ने बताया कि आप फिनेंशियल ट्रांजैक्शन और अपने वर्क को समझें अच्छे से कि आप कब उनको ओटीपी दे रहे हैं, कब अपना आइडेंटिटी दे रहे हैं, क्योंकि आइडेंटिटी थेफ्ट भी एक बड़ा कॉमन हो रहा है कि आपसे बात करी, सारे कागज इकट्ठे किए और फिर वो चले गए, या फिर आपसे बैंक अकाउंट मांगा, बोला हाँ साहब कुछ क्रेडिट कर रहे हैं, अब आप ये कर रहे हैं, और उसमें फिर कुछ पैसे क्रेडिट भी कर देते हैं और थोड़े दिनों के बाद उसे ज़्यादा पैसा आपसे फिर निकाल ले जाते हैं। तो इस तरह के समय में ध्यान यह देना चाहिए कि मैं क्या इन्फॉर्मेशन दूं और कैसे दूं। बड़ी छोटी बड़ी अच्छी बात बताई कि मैं कॉल बैक करना, अपना वेबसाइट चेक कराना, और लोगों का रेफरेंस देना, चार लोगों से बात करना कि क्या सच में कोई हमारी दूसरी बहन दूसरी साथी वहां काम करती हैं कि नहीं, सोशल वेरिफिकेशन प्रोसेस करना, इस तरह से कोई ट्रस्टेड माध्यम से ही जॉब करें, क्योंकि कई बार आप जो जॉब कर रहे हैं उस जॉब के पीछे क्या काम हो रहा है ये आपको पता नहीं चलता और आप उसकी जिम्मेवारी या फेस बन जाते हैं। तो काम को ध्यान में रखते हुए इस तरह से काम में जाना चाहिए।
0: बिल्कुल जाना चाहिए। और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, मध्य प्रदेश के पन्ना से हर्षवर्धन पांडे। हर्षवर्धन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
8: हाँ, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो साइबर अपराध है जो चल रहा है, इस पर सरकार द्वारा कभी ये नियम कानून बनाकर रोक लगाई जाएगी कि ऐसे ही चलता रहेगा? जो साइबर फ्रॉड 1930 जो काल है इस पर कभी ये जो काल करते हैं तो कार्रवाई कभी होती है कि नहीं होती है? दूसरा प्रश्न ये है, इसका मुझे उत्तर चाहिए।
1: जी हर्षवर्धन जी, आपका प्रश्न मैं सुनकर के प्रयास करता हूँ। जो विषय है वो जो कहना यह रहता है लोगों का कि 1930 में दो तरह के सवाल आते हैं, या तो कुछ जानकारी

0: जारी के लिए या अकाउंट को ब्लॉक करने के लिए या एक ट्रांजैक्शन रिवर्ट करने के लिए, और कुछ केसेस में वो कानून अपराध में कन्वर्ट करके उस पर केस भी होता है। तो 1930 के बाद वो चला जाता है आपके जो थाना संबंधित जो थाना है जहां पर या तो क्राइम ओरिजिन हो रहा है या जहां पर क्राइम टर्मिनेट हो रहा है, दो तीन तरह के जगहों पर केस रजिस्टर हो सकता है। तो इस तरह के केसेस में वो उस संबंधित थाना में या उस जिले के साइबर थाना अगर कोई चिन्हित हो तो वहां, अन्यथा राज्य के मुख्यालय में भी प्रकरण दर्ज होते हैं, उसको जीरो एफआईआर करके फिर ट्रांसफर करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रकरण दर्ज होते हैं और उस पर कार्रवाई होती है हमारे जो बीएनएसएस और जो न्याय संहिता के क्रम के रेप में, और इसमें बहुत अधिक कार्रवाइयां होती हैं। यह बात जरूर है कि चूंकि केस भी बहुत दर्ज होते हैं तो शायद थोड़ी देरी हो जाती हो।
1: और अंत में आप लोगों से जानना चाहेंगे कि हमारे श्रोताओं को एक वाक्य में अगर जवाब देना हो, डिजिटल रूप से सशक्त नागरिक बनने की सलाह देनी हो तो क्या कहना चाहेंगे?
2: ये बहुत अहम सवाल है
1: जी।
2: डिजिटल रूप सशक्त बनने के लिए आपको, जैसे हमारे एक्सपर्ट श्री नंद कुमार जी ने बोला कि आपको इस टाइप का थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए कि जो चीज इंफॉर्मेशन आप ले रहे हैं वो गलत तो नहीं है, ऐप जो आप डाउनलोड कर रहे हैं गलत तो नहीं है, आप ओटीपी सर्विस मांगी नहीं है वो नहीं करना चाहिए। ज्यादातर आपको ये, जब तक आप चीज कोई एक्सेस मांगते नहीं हैं तब तक कोई जानकारी आपके पास आती है उस पर ध्यान गौर करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा ध्यान करिए, थोड़ा सा सशक्त हो जाइए तो आप डिजिटल ट्रांजेक्शन बहुत आसान है।
0: भारत डिजिटल में दुनिया भर में अग्रणी है और एकाध दो देशों को छोड़ दें तो शायद गिनती के नंबर 3 पे तो हम लोग हैं ही।
1: बिल्कुल,
0: मैं फ्रॉड के डर से डिजिटल में आगे न बढ़ें ऐसा बिल्कुल न सोचें। ये एक नया युग का समय है, नया युग बनता जा रहा है हमारी आंखों के सामने। एआई के माध्यम से, डिजिटलाइजेशन के माध्यम से अपने परिवार, अपने बच्चे, अपने संबंधियों को मजबूत करें और जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स इसके मिल रहे हैं आज और आने वाले समय में उसका पूरा लाभ उठाएं और अपना भविष्य संवारने में इसका इस्तेमाल करें।
1: बिल्कुल, और घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि हम चर्चा को यहीं पर विराम दें। हम अपने सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस विभाग के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नंद कुमारम जी तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में पूर्व राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक डॉक्टर गुलशन राय, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आपका, श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी। आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा इसके बारे में आप अपने सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं, पता है airnsgtalks@gmail.com। कार्यक्रम को दोबारा सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.nic.in पर लॉगिन कर सकते हैं, और साथ ही पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं पर समाप्त होता है। अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे। मुकेश कुमार को दीजिए इजाजत, नमस्कार।

आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम पब्लिक स्पीक अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 MHz पर। रात के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत।

दिन भर की थकन के बाद जब शाम ढलती है तब मन चाहता है थोड़ा सा विश्राम। नींद तो गहरी रात को आती है, लेकिन शाम का वक्त और उस पर बरसात से भीगी वादियां, खुशनुमा मौसम, तो क्यों ना कुछ सुरीले गीत भी सुने। और इस मौसम का भरपूर आनंद ले। तो आइए फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम शुरू करते हैं। आज इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त मीरा शर्मा। स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।

कार्यक्रम फिल्म संगीत का ये पहला नगमा आपने सुना फिल्म आरोप से। किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें थी। माया गोविंद ने बोल लिखे थे और संगीत था भूपेन हजारिका का।

लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में आपने सुनाई सरस्वती चंद्र फिल्म का ये प्यारा सा गीत। इंदिवर ने इस गीत को लिखा था और संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी ने।

फिल्म नई रोशनी का ये गीत आपने सुना, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ थी। बोल लिखे थे राजेंद्र कृष्ण ने और संगीत रवि शंकर शर्मा ने बनाई थी।

हिमालय की गोद में। इस फिल्म का ये गीत आपने सुना, मुकेश की आवाज थी, बोल लिखे थे कमर जलालाबादी ने और संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी ने।

और अब कार्यक्रम फिल्म संगीत का आखिरी नगमा, ये सुनते हैं फिल्म महाराजा से। लता मंगेशकर की आवाज है, शब्द रचना कैफी आजमी के, और संगीत दिया है मदन मोहन ने।

और श्रोताओं, फिल्म महाराजा के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। रात के 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे डागर बंधुओं का ध्रुपद गायन, राग है जय जयवंती।

வந்து

0: शास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम में श्रोताओं, आज आप सुन रहे थे डागर बंधुओं का ध्रुपद गायन, राग था जय जयवंती। ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 MHz पर। रात के 11 बजने ही वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार, पहले हिंदी फिर अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंधों को सुदृढ़ कर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया है, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। आज शाम अयोध्या में हुई बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नियुक्ति का भी फैसला किया है। इसके लिए 3 सदस्य समिति बनाई गई है, जो उपयुक्त नामों की सिफारिश करेगी। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
2: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहां गुल हो गई, वे कहां चली गई। उन सारी वस्तुओं का

0: ईस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है, हम आपको दिखाएंगे। और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहाँ पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
1: ईरान की राजधानी तेहरान में आज सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। खामेनेई और उनके परिवार की 28 फरवरी को इसराइल और अमरीका की ओर से किए गए हमलों में मृत्यु हो गई थी। ये शोक शनिवार से शुरू हुआ है और बृहस्पतिवार तक जारी रहेगा। आयतुल्ला अली खामेनेई को उनके जन्मस्थान मशहद स्थित इमाम रजा की दरगाह में सुपुर्द खाक किया जाएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों के बीच लोगों ने भारत सरकार से सहायता की अपील की है। पिछले एक महीने से क्षेत्र में प्रदर्शन जारी हैं। लोगों ने भारत से दवाइयां और जरूरी खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। पिछले 20 दिनों से इस क्षेत्र में राशन और दवाइयों की आपूर्ति रोक दी गई है। अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चाउना मीन ने आज भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण बीएसआई अरुणाचल प्रदेश क्षेत्रीय केंद्र और जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान के ईटानगर केंद्र के सहयोग से आयोजित वन महोत्सव में भाग लिया। उन्होंने युवा पीढ़ी से अरुणाचल प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों को संरक्षित

अंतर्राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान के ईटानगर केंद्र के सहयोग से आयोजित वन महोत्सव में भाग लिया। उन्होंने युवा पीढ़ी से अरुणाचल प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत